0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आंख में दिक्कत है तो हम आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति, हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को
किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें शौच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिलाकर के पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाई आज मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ ना, वो आप सभी को ये लगेगा कि हर किसी का सपना होता है, हर किसी एक लड़की का सपना होता है, हर एक औरत का सपना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हर एक औरत हर एक लड़की का सपना होता है। ज्यादा पैसे, अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड, नाना, ये सब तो सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता होती है अपनी सुंदरता, और सुंदरता का नाम जहां लिया जाए वो सबसे पहले बात होती है बालों की। बाल सभी के सुंदर होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन एक ख्वाब जरूर होता है कि बाल हम सभी के बड़े हों, लहराते हुए बाल, चमकीले बाल, स्वस्थ बाल। लेकिन उसको पाने के लिए हम कितनी ज्यादा मशक्कत करते हैं, जिनके छोटे होते हैं, पतले होते हैं, काफी कुछ हम अपने बालों की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए रेमेडीज का यूज करने लगते हैं, घर में बनाए हुए नुस्खों को अपनाने लगते हैं, बाहरी चीजों को जो केमिकल युक्त होती हैं उसको हम लेकर के बालों में लगाने लगते हैं, कई ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि महंगे महंगे पार्लर्स में जा कर के, और बहुत सारे अब तो ये हो गया है कि हॉस्पिटल्स में भी होता है, इंजेक्शंस लगाई जाती हैं, और ऐसे ऐसे महंगे ट्रीटमेंट बालों के लिए होते हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बालों के लिए वो नुकसानदायक भी होता है। थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हमारी एज बढ़ने लगती है वो सब का सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजों को अपनाएं
जो हमेशा से साथ रहने वाली है, एवरग्रीन होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। योगशाला में आकर मैं योग के बारे में ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। योगशाला में आकर के योग को अपनाएंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर तो स्वस्थ होता ही होता है, साथ ही साथ हम सुंदर भी बनने लगते हैं। और सुंदरता, जैसा कि अभी मैंने बताया, बालों से, स्त्री की सुंदरता जो होती है वो वाकई में बालों से ही देखी गई है। तो आइए आज कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके बालों को घर बैठे बिना किसी खर्चे के सुंदर, चमकदार, मजबूत और लंबा कर सकता है। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिसे हम अगर नियमित रूप से अपना लेंगे तो हमारे बालों की जड़ों पर यह जाकर के काम करेगा। सबसे पहला आसन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है अधोमुख स्वासन, जो कि सिर की ओर रक्त संचार बढ़ाता है, जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचा करके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा आसन है सर्वांगन यानी शोल्डर स्टैंड, हार्मोन संतुलित करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। तीसरा आसन जो है वो है शीर्षासन, इसे बालों का राजा आसन कहा जाता है। सिर में रक्त का संचार बढ़ता है जिससे बाल लंबे घने बनते रहते हैं। अगला आसन है वज्रासन, पाचन को सुधारता है जिससे पोषक तत्व शरीर को और बालों तक अच्छी तरह पहुंचते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर का व्यायाम करता है, यह तनाव को कम करता है और बालों के लिए आवश्यक ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि अनुलोम विलोम, तनाव कम होगा, बाल झड़ना अपने आप रुकेंगे, बाल बढ़ना अपने आप होंगे। कपालभाति, शरीर से विषैले तत्व निकालता है और बालों में निखार लाता है। भ्रामरी प्राणायाम, दिमाग शांत करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है। साथ ही साथ में जब हमारा दिमाग शांत रहेगा, हार्मोन ठीक होंगे, तो हमारा संतुलित आहार अपने आप से हमारे पूरी बॉडी में काम करेगा। पोषक आहार, योग के साथ साथ हमें पोषक आहार भी लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब मैं आपको 15 मिनट का प्राणायाम रूटीन बालों के लिए बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको बालायम योग यानी नाखून रगड़ना 3 मिनट या आपको सुबह कंटिन्यू करना है। हाथों की चारों उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें, अंगूठों के नाखून ना रगड़ें, धीरे धीरे लगातार अपनी उंगलियों को रगड़ें। इससे सिर की नसों और बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ता है। यह आपको 3 मिनट करना है। दूसरा अधोमुख श्वासन, यह आपको 2 मिनट करना है। जमीन पर झुककर उल्टे वी के आकार में खड़े हो जाएं, सिर को नीचे की ओर रखें और रीढ़ सीधी रहेगी। सिर की ओर रक्त का प्रभाव बढ़ता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अधोमुख श्वासन 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट में यह आसन आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आए आपको यह आसन करना है। तीसरा आता है वज्रासन, जो कि 2 मिनट आपको करना है। घुटनों के बल बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गहरी सांस लें और छोड़ें, जिससे पाचन सुधरता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। वज्रासन, यह आसन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः खाना खाने के बाद में यह आसन जरूर करना चाहिए। चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह आपको 3 मिनट करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नौसिका बंद करें, बाई नौसिका से गहरी सांस लें, फिर दाहिनी नौसिका से छोड़ें। इसी तरह यह क्रम बदल कर करते रहें पूरे 3 मिनट, जिससे तनाव घटता है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। शरीर में ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बालों की नसों में भी ऑक्सीजन पहुंचता है,
जिसके कारण से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। पांचवा आसन है कपालभाति, जो कि हमें 2 मिनट करना है। आराम से बैठें, गहरी सांस लेकर जोर से सांस छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचें, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और हार्मोन जो है वो संतुलित होता है। छठा प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमको 3 मिनट करना है। आंखें बंद करें, कानों को उंगलियों से बंद करें, गहरी सांस लेकर का उच्चारण करें, जैसे मधुमक्खी की ध्वनि होती है। तनाव और चिंता कम होती है, जिससे बाल झड़ना रुकता है। तो कुल मिलाकर के यह 15 मिनट हो गया। आप इसे रोज सुबह खाली पेट या शाम को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, फल, मेवे, दूध, दही, दालें, बीज, ओमेगा 3 वाले फूड्स जरूर से लें। अगर आपने यह नियमित रूप से अपना लिया तो आपके बाल बहुत ज्यादा सुंदर होते जाएंगे और नियमित रूप से आपके बाल जो झड़ते हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगली प्राणायाम और आसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूं, जो अमूमन सभी महिलाओं को, पुरुषों को, यहां तक कि बच्चों को भी अब होने लगा है। ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठना, काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को
दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी श्वास लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्ली, गाय, मुद्रा? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपनी सीरीज में आपको बताया है बिल्ली और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली, गाय, मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों और घुटनों के बल आ जाएं, कलाइयाँ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हुड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है, एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें, बैठें, तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे।
स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है, जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व के शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभ अंकाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ, मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिता।

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स्य, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवा यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्म योग। जो इन्हें जी लेता है, वही सच्चे अर्थ में शिव के करीब पहुंच जाता है।

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों, आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोक कर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो, गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है, माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

है। चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव। अनादि जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ।

शक्तिमाने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है उन्हें? शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। शिव को शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गले में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी गंगा चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: गजल पढ़ी है तुमने आकाश की?
2: हम्म,
1: बहुत अच्छा लिखता है लड़का।
2: क्या लिखता है सुना ना।

भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा?
1: और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन।

गुड मॉर्निंग गोंडा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गोंडा, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और सुनने वालों, उठ जाओ। अगर अभी भी आप बेड के अंदर बैठ के ना स्क्रॉल कर रहे हो तो ये है आपका साइन अपना फ़ोन रखने का और वॉल्यूम बढ़ाने का, क्योंकि आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्जुनती आ चुकी हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में, लेकर के आपके मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एंड ऑफकोर्स जल्दी से बताइए भाई, कौन है जो निकल चुका है घर से अपने काम के लिए और कौन है जो अभी भी बिस्तर की बाहों में अंगड़ाइयां ले रहे हैं और जिनकी सुबह अभी तक नहीं हुई है, जब तक पीछे से पापा आकर 3-4 ताने सुनाने देने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप अपना अपनी बात जरूर बताइएगा और सिटी चेक कर लेते हैं कौन कौन है भाई जो ट्रैफिक में इस वक्त फंसा हुआ है। फिलहाल आज तो मुझे ट्रैफिक कहीं दिखा नहीं और आज इसलिए हम बेहद खुश हैं। ना बड़गांव पुलिस चौकी पे दिखा, ना दुखरनाथ पर दिखा, ना फिर मुझे कल्ला मंडी पे दिखा। और जितना भी मेरा रास्ता था आज बड़ा ही क्लीन था, बट क्या आपका रास्ता भी क्लीन है बताइएगा ज़रूर चैट बॉक्स के अंदर। और इससे पहले कि आपकी चाय ठंडी हो जाए और प्लेलिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उससे पहले आप उठ जाइए, क्योंकि भाई आज भैया मॉर्निंग शो में होने वाली हैं काफ़ी ज़बरदस्त बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्लस धमाकेदार प्लेलिस्ट। सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा। मिलते हैं इस गाने के उस पर, तो द किलर स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके मॉर्निंग का स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं आपका अपना एफएम रेडियो 91.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। पर वक्त हो चला है आज के बेहतरीन से थॉट ऑफ द डे की तरफ चलने का। तो आइए देखते हैं भाई आज का शुभ विचार या फिर कहें तो आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कुछ कहना चाहता है।

हां जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि कभी कभी थकान काम से नहीं, उन बातों से होती है जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते हैं। इसका मतलब आपस में ही बहुत ज्यादा क्लियर है भाई कि क्या कुछ कहना चाहता है। जो बातें हम किसी से कहते नहीं हैं, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बार बार बार बार प्रोसेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और हमें होती है थकान। फिजिकल थकान तो सोकर गुजर जाती है, लेकिन जो इमोशनल वेट होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपकी पीठ पर किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब दौड़ो, जिंदगी की रेस में दौड़ो, और आप उस इमोशनल वेट को लेकर के दिन का काम करते हैं, अपने इमोशंस को संभालते हैं, प्लस अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए थकान बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो भाई, इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि आप इस थॉट को, आप कोई भी बात है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसको रिलीज करना शुरू करें। आप उसे रिलीज़ करें या तो किसी पेपर पे लिख कर, अगर आप किसी को बता सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं तो आप उसे बता सकते हैं, या फिर पेपर पर, या फिर कहीं बोल कर, बहते हुए पानी के सामने अपनी बातों को ज़रूर रिलीज़ करें। फिजिकली थकान जो होती है, जो आप फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, उसे एक बार को ठीक किया जा सकता है कुछ घंटों के आराम के लिए, लेकिन अगर आप इमोशनल वेट को कैरी करते रहते हैं तो ये आपकी थकान फेस पर भी नज़र आती है, आपकी एनर्जी में भी नज़र आती है और बाकी चीज़ों में भी नज़र आती है। भाई, आज का थॉट ऑफ द डे बहुत क्लियर, बहुत साफ है कि कभी कभी थकान उन कामों से नहीं होती बल्कि उन बातों से होती है जिन्हें हम कभी किसी से कह नहीं पाते। तो अगली बार जब ऐसा हो तो कोशिश कीजिएगा उन बातों को रिलीज़ करने की। और आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, और मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट ज़रूर है, ऐसी बात ज़रूर है जिसको वो इमोशनली कैरी करके चल रहे हैं। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं एक बढ़िया सा गाना, ये दिल दीफाना फ्रॉम परदेस फिल्म। एंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग ऑन अपनी आरजीओटी के साथ, बने रहिए, सुनते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

हां जी, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का। हमारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, उनके कुछ पैगाम, कुछ मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स में, तो आइए इसको रीड करते हैं और बताते हैं कि किसने क्या कुछ लिख के भेज दिया है।

0: आज के शो में जो सबसे पहले मैसेज आया था वो आया था सविता दुबे जी का, जो लिख रही हैं सुप्रभात सुप्रभात आपको भी, एंड उसके बाद काफी सारे इमोजीज उन्होंने सेंड किए हैं, थैंक यू सो मच। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू यू एंड जय श्री राम, कैसे हैं आप। उसके बाद सविता जी का ही मैसेज है सॉन्ग को लेकर के, थैंक यू सो मच। एंड दीपांशी तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग टू यू सर, भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। प्रबल जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि दोस्ती का रिश्ता बड़ा खास होता है, झगड़ा हो जाए फिर भी दिल पास होता है, रहते हैं हर फिक्र से दूर हम यारों के साथ, क्योंकि इन पागलों के बिना जीना बकवास होता है। गुड मॉर्निंग छोटा भीम, और क्या हालचाल है, चाय वाय मिला कि नहीं, गुड मॉर्निंग टू यू। और मेरे हालचाल बढ़िया है, मस्त हैं, आप बताइए आपके कैसे हैं। रही बात चाय की तो जी सोचनी पड़ेगी इसकी बात तो मुझे फिलहाल के लिए। प्रबल जी लिख रहे हैं उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो दोस्तों के बिना बीते वो उम्र और जो दोस्तों के साथ गुजरे वो जिंदगी, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है आपने। सविता दुबे जी ने लिखा है सही बात है, ओके फीडबैक दिया है थॉट ऑफ द डे को, और लिखा है कि सही बात कही है, शुभ विचार, बहुत प्यारी, बहुत सही लगी, थैंक यू सो मच सविता दुबे जी। फिलहाल के लिए लिसनर्स आपके मैसेजेस तो हमने रीड कर लिए हैं, और अब वक्त है हमारे कंटेंट की तरफ चलने का, यानी कि आज आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या स्पेशल है आपके लिए मॉर्निंग वाले शो में इस पर बात करने का। तो बताते हैं हम आपको कि आज मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में आपके लिए क्या कुछ लेकर आई हैं आपकी आर्जुनती, लेकिन इस गाने के उस पर तो बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग ओडा, स्टे ट्यून्ड।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की

हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोना में। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 99.6 एफएम, यह गोना शहर की धड़कन पर। आपकी आरजनती मौजूद है आप सभी के साथ, और आज मैं आपके लिए ना एक ऐसे शहर का एग्जांपल लेकर आई हूँ जो भारत में नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम बना रहा है। अब आपने देखा कि हमारी शहर में हर जगह बहुत सारा कूड़ा कचरा इधर उधर दिखाई पड़ जाता है। इवन नगर पालिका बहुत मेहनत कर रही है साफ़ सफाई को लेकर के, लेकिन लोग फिर भी कूड़ा फैलाते हैं, और ऑफ कोर्स ये हमें परेशान भी करता है, न जाने कितनी बीमारियों का कारण भी बनता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा या फिर कभी ऐसा शहर देखा है जहाँ अगर सुबह किसी ने दीवार पर कोई पोस्टर चिपकाया हो तो शाम तक वो गायब हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये केरला के सुल्तान बाथरी शहर की बात है। एक ऐसा शहर जहाँ पर सफाई को लेकर के हर एक इंसान इतना जागरूक है कि वो अपने ही आप काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल्स इस्तेमाल करता दिखाई दे जाता है तो उस पर जुर्माना लग जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पर प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करना ही मना है। इलेक्शंस के दौरान जहाँ आपको हज़ारों पैम्पलेट्स, हज़ारों पोस्टर्स सड़क के दीवारों पर नज़र आ जाते हैं, वहीं पर यह शहर ऐसा है कि अगर रात में किसी ने पोस्टर लगाया है तो 24 घंटे के अंदर उस पोस्टर्स को वहां के लोग हटा देते हैं। इस काम करने के लिए कोई म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर नहीं आता है, नगर पालिका के लोग नहीं आते हैं, वहां के लोग ही इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि रात के 2 बजे से ही वो अपने काम पर लग जाते हैं। सुबह 2 बजे उठकर सबसे पहले वो लगे पोस्टर्स को दीवार पे से उतारते हैं, उसके बाद सफाई करते हैं, देन अगर कहीं का पेंट हट गया है तो उसकी पेंटिंग भी अपने आप ही कर देते हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि कोई आएगा और वो ये काम करेगा, या फिर नगर पालिका के कोई लोग आएंगे, सरकार का कोई इंसान आएगा और वो आकर हमारी दीवारों को, हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो कूड़ा कचरा है, उसको साफ करेंगे। और इसका पूरा क्रेडिट दिया जाता है उनके पूर्व चेयरमैन सीके सहदेवन जी को, जिन्होंने अपनी एक पहल चलाई थी जिसकी वजह से पता नहीं कितने सालों पुरानी बंद पड़ी नालियों को खोल दिया गया था। 30 सालों के आसपास जो नालियाँ बंद थीं उन्हें साफ करके खोल दिया गया, प्लास्टिक की बॉटल्स पे बैन कर दिया गया। जो रात में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते थे लोगों की नज़रों से छुप करके, वहाँ पर सीसीटीवी लगा करके लोगों को

फाइन दिया गया, यहाँ तक ही उन्हें पनिशमेंट भी मिली। ऐसा कर करके धीरे धीरे लोगों ने कूड़ा कचरा फैलाना बंद कर दिया। सड़क पर प्लास्टिक की बॉटल बैन होने की वजह से प्लास्टिक की जगह पर अब कांच की या फिर ग्लास की बॉटल्स इस्तेमाल होने लगी, यानी कि ग्लास और मेटल्स की बॉटल लोग हाथ में लेकर घूमने लगे, और केरल का ये शहर अभी तक का सबसे साफ शहर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सी के सहदेवन जी ने जब ये पहल शुरू की थी, कुछ दिनों बाद वहां की आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुकानदार, घर वाले, यहाँ तक कि आसपास रहने वाले लोगों ने सड़क की सफाई खुद से करना शुरू की, कूड़ा कचरा फेंकना बंद कर दिया। पोस्टर्स जो दीवारों पर लगे थे उन्हें 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाता। प्लास्टिक की बॉटल्स अब इस्तेमाल नहीं होती, वो अपने घर से बॉटल्स लेकर घूमते हैं, और ऐसा कर करके उन्होंने अपने शहर को साफ सुथरा प्लस हरा भरा बना दिया है। हम आपको बता दें, सुल्तान बथौरी केरल का ये शहर टीपू सुल्तान के समय पर गोला बारूद की जगह हुआ करती थी, और वहीं अब ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ और बहुत ही हरा भरा शहर के नाम से जाना जाता है। तो भाई, इस तरह की शहर की कहानियाँ काफ़ी इंस्पायर करती हैं दूसरे स्टेट को, दूसरे राज्य को, दूसरे ज़िलों को, ताकि वो अपने शहर में भी काम कर सकें। हमारे यहाँ पर लोग सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं कि शायद कोई आएगा किसी दिन और हमारे शहर की हालत सुधार देगा, शहर की सफाई हो जाएगी और हम गंदे से निकलकर साफ सुथरे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये किसी की अकेले की बात नहीं होती है, इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। केरल के भले ही पूर्व चेयरमैन सी के सहदेवन जी ने मेहनत की, उनकी पहल थी, लेकिन उनका साथ देने के लिए आम जनता, वहाँ की पब्लिक सामने आई और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आपके आसपास अगर आपको कहीं गंदगी नज़र आए तो कोशिश कीजिएगा उसको साफ करने की, खुद से कुछ कूड़ा कचरा बाहर ना फैलाएं। नगर पालिका के जो ट्रक्स आते हैं आप उनको कूड़ा कचरा दें। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर आप अपने शहर को भी हरा भरा और साफ सुथरा बना सकते हैं, प्लस उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जिस लिस्ट से बाहर अभी तक आपके शहर का नाम है। कैसा लगा आपको ये शहर की कहानी? क्या आपको भी इसने मोटिवेट किया कुछ करने के लिए? और अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंजॉय करते रहिए इस गाने को। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: डिलीशियस
6: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी आर चुनौती और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं? आपको पता है जापान में लोग टेंशन में तो बहुत रहते हैं, यानी उनके पास काम बहुत होता है, उनकी ज़िंदगी में भागदौड़ बहुत होती है, प्लस उनकी लाइफ में रूल्स बहुत होते हैं। हर जगह पर वो अपने रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। और इसके पीछे वजह होती है उनकी कुछ टेक्निक्स की जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो ये बात बताती है कि अगर आप जैपनीज़ टेक्निक को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में वही कामनेस लेकर आते हैं जिसकी बात या फिर जिसके ख्वाब आप देखा करते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं वो जैपनीज़ माइंडसेट जो एंजाइटी को क्योर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं।

सबसे पहले जो पॉइंट है वो है बाबी साबी का। अब आपने सुन के देखा होगा कि भाई ये बाबी साबी किस चिड़िया का नाम है, तो हम आपको बता दें बाबी साबी का मतलब होता है जब हम अक्सर स्ट्रेस लेते हैं तब उन चीज़ों को परफेक्ट, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। बाबी साबी हमें सिखाता है कि अधूरेपन और पुरानी चीज़ों में भी खूबसूरती ढूंढने की कोशिश कीजिए, परफेक्शन के पीछे भागना छोड़िए और वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। ये चीज़ बताती है बाबी साबी कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की परफेक्शन को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं और आप सोचते हैं कि हर एक लम्हा, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसका टेंशन आपको हमेशा रहता है। यहाँ तक कि जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी आप परेशान रहते हैं कि हमने उम्मीद तो परफेक्शन की थी बट हमें परफेक्शन नहीं मिली। तो बाबी साहब हमें सिखाता है कि भाई अगर कोई चीज़ है जो पुरानी हो चुकी है या फिर जो परफेक्ट नहीं है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि वो चीज़ अपने आप में वैसे ही खूबसूरत मानी जाती है। ये पॉइंट था बाबी साहब का। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो है काइज़ेन माइंडसेट। काइज़ेन माइंडसेट सिखाता है एकदम ठीक होने की जल्दी मत करो, हर दिन एक छोटा स्टेप लो, यही एंजाइटी को धीरे धीरे ख़त्म करता है। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ हो रहा हो, कोई सिचुएशन चल रही हो, तो वो ऑल सडन बस चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए और पूरी की पूरी एक साथ ठीक हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप हमेशा आपकी एक जर्नी होती है जो ख़राब से बेहतर, बेहतर से ख़राब तक का सफ़र ऑफकोर्स तय करती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसकी भी एक जर्नी है, अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसकी भी एक जर्नी है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी एक जर्नी है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक जर्नी आपको तय करनी ही होती है। लेकिन जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हर एक चीज़ बस चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा, अगले ही पल सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा हमें चाहिए, तो ये सिर्फ हमारी उम्मीदों को बढ़ाता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं, प्लस जब ये टूटती हैं तो हमें होती है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डर और प्लस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो काइज़ेन माइंडसेट यही सिखाता है कि आप एकदम से सब कुछ ठीक होने की जल्दबाजी ना करें, हमेशा छोटे छोटे कदम लें, हर दिन सुबह उठकर पहला कदम लें और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और यही वो तरीका है जिससे आपकी एंजाइटी ठीक हो सकती है। जब आप परफेक्शन की तलाश करते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में, या फिर बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि आपको परफेक्शन मिल जाए, तो वो कभी नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज़ देखते हैं, कोई इंसान जो आपको अपना वेट लॉस बता रहा हो, अपना करियर सेटअप बता रहा हो, तो प्लीज़ उसकी बातों पर इतना गौर ना फरमाएं। जो 3 महीने का प्रोसेस वो दिखाते हैं वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा 3 साल के करीब होता है और हर दिन आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। ऐसा कर करके आप अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, अपने एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। दूसरे अगर माइंडसेट की बात करें तो जानशिन माइंडसेट प्रेजेंट करता है कि आप प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट का रिग्रेट रखो, ना फ्यूचर का डर, सिर्फ फोकस आज पर होना चाहिए। जी हाँ, ये बात आपको भारत में भी कई लोगों ने कही होगी कि कभी भी भूतकाल या भविष्यकाल में रहने की कोशिश ना करें, हमेशा अपने वर्तमान में रहें, क्योंकि वर्तमान ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहा जाता है, यानी कि एक तरह का गिफ्ट कहा जाता है। अब जो गुजर चुका है उसको ठीक करने की ताकत आपके पास नहीं है, जो आ रहा है उसे रोकने की ताकत आपके पास नहीं है, तो दोनों की टेंशन को लेकर कि आज जो आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो वर्तमान है, उसे क्यों ख़राब करना है। मेनली लोगों की एंजाइटी का कारण ये होता है कि वो हमेशा पास्ट की बातों में रहते हैं, उन्हें लगता है कि पास्ट में मैंने किसी को कुछ बोला था, पास्ट में मैंने ये किया था, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं चला जाता। तो ये काश वाला जो शब्द है उसे अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो कल नहीं कर पाए उसे आज करें। आपका वर्तमान आपके भविष्य का निर्माण करता है, ये बात आपने हमेशा से सुनी होगी। सिर्फ भविष्य का चिंता कर लेने से या फिर ये सोचने से कि फ्यूचर बेस्ट होगा, फ्यूचर ऐसा हो सकता है, फ्यूचर वैसा हो सकता है, फ्यूचर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे बेहतर है अगर आप अपने फ्यूचर की तैयारी प्रेजेंट में करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्यूचर में कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसकी तैयारी ऑफकोर्स प्रेजेंट से होती है, यानी कि आपके वर्तमान से होती है। आपका वर्तमान डिसाइड करता है कि आने वाले कल में आप
क्या कुछ होने वाले हैं। तो जिस जो आपको पता नहीं है उसका डर मत रखिए, जो गुजर चुका है उसका पछतावा मत रखिए। और यही सिखाता है जानशेन माइंडसेट कि हमेशा वर्तमान में जीना सीखिए। इकिगाई माइंडसेट, जिसकी बात आजकल इंटरनेट पे काफी ज्यादा चलती है, वो सिंपल सी बात कहता है कि अपने पर्पस से जुड़ो। जब जिंदगी का रीजन क्लियर होता है तो एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। जी हाँ, इकिगाई आपको सिखाते हैं कि आपके पास यूं तो कई सारी चीज़ें होती हैं कर दिखाने के लिए, करने के लिए, जीने के लिए, बट क्या उसमें आपका पर्पस है? क्या आप उसे करना चाहते हैं? क्या वो आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखावा काफ़ी खूबसूरत लगता है? जब तक हमें अपनी जिंदगी का पर्पस नहीं पता होता है, हम हमेशा परेशान रहते हैं और तलाश में रहते हैं। इसीलिए किसी ने जब हिस्ट्री में बताते हैं तो जितने भी आपको महान लोग देखने को मिलेंगे, महान व्यक्तित्व के, वो हमेशा यही सिखाते हैं कि जिंदगी का पर्पस सुकून है, शांति की तलाश है। और शांति का तलाश करने के लिए न जाने कितने ही महान व्यक्तित्व पूरी दुनिया का भ्रमण करके भी आ चुके थे, लेकिन शांति उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। वो कहाँ मिली? जब उन्होंने सही रास्ता चुना था। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का भी एक पर्पस होता है। हम दूसरों को देख कर सोचते हैं कि हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जाने कितनी ही बातें अपने दिमाग में लगा लेते हैं, कितनी ही चीज़ें हम सोच लेते हैं, बट एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। हमारा पर्पस कुछ और होता है, हम बनना कुछ और चाहते हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशन हमसे इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हम अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को छोड़कर कुछ और करते हैं। और जब भी हम अपने पर्पस से भटकते हैं तब हम हमेशा परेशान रहते हैं। और ह्यूमन का पर्पस ऑफ कोर्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। प्लस मुझे तो लगता है कि हर किसी के पास एक पर्पस होता ही है। वो अलग बात है कि आपने उसकी तलाश कभी नहीं की है, आपने कभी अपने अंदर टटोला ही नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चाहिए। तो भाई, स्ट्रेस को बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर के शोर से ही आता है। और जापनीज तरीका आपको ये बताता है कि किस तरह से आप अपने अंदर के शोर को शांत करके आप खुद को और उन पुरानी चीज़ों को जिसकी शायद आपको पछतावा था उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जापान में एक और चीज़ है जो बहुत ही खूबसूरत है, और वो ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे फेंकने से अच्छा है उसे जोड़ दिया जाए। और वो उसको जोड़ते हैं सोने के तार से, यानी कि गोल्ड से जोड़ा जाता है, और वो टूटने के बाद खूबसूरत लगता है। इसीलिए जब भी जापान में कोई प्लेट, कोई कप, कोई भी चीज़ अगर टूटती है तो वो सीधे उसे पुरानी शॉप्स पर लेकर जाते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और वो बड़े ही शांति से, बड़े ही शालीनता के साथ वो सारी टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं, प्लस उसे एक नया रूप देते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि परफेक्शन सब कुछ है, तो वाबी साबी ऑफकोर्स ये बात क्लियर करता है कि परफेक्शन सब कुछ नहीं होता। कई बार चीज़ें टूट जाने पर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आपको ये जापनीज माइंडसेट कैसा लगा और आप किस वाले को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि और क्या कुछ है हमारे पिटारे में आपके लिए आज। गुड मॉर्निंग गोंडा में स्पेशल स्टेट्यूंट।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके मॉर्निंग स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आपको पता है ना, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। एंड अगर आप उनमें से एक हैं जो चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना लेकिन आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा ना लगें और जो हमें प्रमोट भी करें, अगर आप घर बैठे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए आज इंटरनेट आपको कई सारे ऑप्शंस देता है। आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कंटेंट लिखना चाहते हैं, प्लस ईमेल मार्केटिंग से लेकर ऑनलाइन स्टोर्स, हर एक चीज़ की फैसिलिटी आज आपके फ़ोन के अंदर ही है। बस बात इतनी है कि अब आपको पता नहीं है कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं, वो भी विदाउट जीरो पैनी, यानी कि बिना किसी पैसे के, ऑलमोस्ट जीरो बजट स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, या उसके लिए एक बढ़िया सा डिज़ाइन चाहते हैं, एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहते हैं अपनी रील्स के लिए, तो आप कहाँ कहाँ ढूंढने वाले हैं। आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम पे अगर हम कोई रील्स बनाते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिना हुक के, बिना स्क्रिप्ट के आप इंस्टाग्राम पर कुछ भी बोलते हैं तो आप वायरल नहीं होते हैं। तो आजकल इस सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे कौन कौन से ऐप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आइए वो जानते हैं, वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपकी मदद हो सके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी तो बिजनेस करेगा इंडिया। फिलहाल के लिए वो 18 फ्री टूल्स जो आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं इन जीरो बजट, वो है, सबसे पहला, अगर आपको ब्रांड बनाना है, खुद को ब्रांड बनाना है या अपने शॉप को, किसी भी चीज़ को, अगर आप अपने घर से क्लाउड किचन की स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोई छोटा सा बुटीक जिसमें आप को कपड़े बनाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, अगर आप सिलाई कढ़ाई अच्छा करते हैं, आप बुनाई अच्छा करते हैं, तो मुबारक हो भाई, आजकल इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने ब्रांड को क्रिएट करने का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट करके अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट की है। आपको आए दिन छोटे छोटे रिटेलर्स मिल जाएंगे, शॉप ओनर्स मिल जाएंगे, अपने ब्रांड के ओनर्स मिल जाएंगे, जो शुरुआत इंस्टाग्राम से करते हैं और आगे जा करके वो अपना खुद का ऐप तक लॉन्च कर देते हैं। तो भाई, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो इंस्टाग्राम आपके लिए फ्री है, आप इंस्टाग्राम पर जा करके अपने काम को डाल सकते हैं। अगर आपको कैंडल्स बनाने का शौक़ है, आपको रेजिन आर्ट का शौक़ है, पेंटिंग्स का शौक़ है, तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस आपको अपनी छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स को रिकॉर्ड करना है, उसको अच्छे से एडिट करना है, कलर्स को मिक्स मैच करना है एंड फुल HD में अपलोड कर देना है विद सम हैशटैग्स, एंड इसके बाद आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितनी चीज़ें आपसे ख़रीदनी है। प्लस अगर आपके फॉलोवर अच्छे खासे हो जाते हैं तो आपको PR पैकेजिंग यानी कि प्रमोशन से भी पैसे मिलते हैं, यानी आप खुद का ब्रांड तो चलाते ही चलाते हैं, आप दूसरों के ब्रांड को प्रमोट करके भी पैसे कमाते हैं। तो इंस्टाग्राम अभी तक का फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इनकम जनरेट करने को। जहाँ 2014 तक YouTube काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा था और हर कोई YouTube को अपना ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा था, हर कोई यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा था, वहीं आजकल लोग कोशिश कर रहे हैं Instagram पे अपना ब्रांड क्रिएट करने की। तो अगर आप चाहते हैं इनकम जनरेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी चीज़ आप करना पसंद करते हैं, कैंडल आर्ट पसंद करते हैं, रेजिन आर्ट पसंद करते हैं, कपड़े सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी आपको पसंद है, बस उनकी छोटी छोटी रील्स और आपका अपना ब्रांड स्टोर तैयार हो सकता है। तो भाई इंस्टाग्राम के बाद जो दूसरा आता है कि अगर आप डिज़ाइन चाहते हैं, आपका ब्रांड है और आप चाहते हैं उसे बढ़िया सा डिज़ाइन देना, तो कैनवा आपके लिए फ्री है। प्लस आजकल तो कैनवा के साथ साथ गूगल ने भी डिज़ाइंस के लिए अपना प्लेटफॉर्म खोल दिया है। अगर आपको लगता है कि कैनवा बहुत ज़्यादा हार्ड है तो अब गूगल ने भी अपने डिज़ाइंस का प्लेटफॉर्म खोल दिया है, तो आप अपनी डिज़ाइंस को गूगल पर जाकर भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने ब्रांड की वेबसाइट बनानी है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट बनानी है जिस पर लोग क्लिक करके आपके शॉप से या फिर आपके
ब्रांड से आपके शोरूम से डायरेक्ट ऑर्डर करें तो आप विक्स या फिर वर्डप्रेस पे जा करके फ्री प्लान देख सकते हैं और वहां से वेबसाइट बना सकते हैं। कंटेंट लिखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टाग्राम पर। अगर आप कुछ डाल रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, और इसको लिखने में फ्री मदद कर सकता है आपकी चैट जीपीटी, जिसका इस्तेमाल आजकल लोग सिर्फ फोटोज़ को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने हुक और अपने इंगेजिंग कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए कीजिए। ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलर लाइट सबसे बेहतरीन वेबसाइट है। एंड ऑनलाइन स्टोर्स अगर आपको खोलनी है तो गम रोड एक फ्री स्टार्टअप प्लान है आपके लिए। इनवॉइस बनाना अगर आपको सीखना है तो जोहो इनवॉइस आपके लिए फ्री प्लस इजी हो सकता है। कस्टमर मैनेज करने के लिए हबस्पॉट CRM जो फिलहाल फ्री है, आप इस पर जाकर अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। टीम प्लस टास्क मैनेज करने के लिए ट्रेलो सबसे बेस्ट रहा है। ऑटोमेशन के लिए मेक एंड जाइपर जो आपको फ्री प्लान्स प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग के लिए वेब और जोहो बुक्स जो आपको ऑफ कोर्स फ्री प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। टाइम ट्रैकिंग के लिए ट्रॉगल। फाइल स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव जो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी पीसी में इतनी जगह नहीं है तो आप अपने गूगल ड्राइव पर जा करके अपना एक अकाउंट बना करके वहां पर अपनी सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। वर्कस्पेस के लिए नोशन सबसे बेस्ट है और सर्वे प्लस फॉर्म्स भरने के लिए गूगल फॉर्म बेस्ट रहता है, प्लस ये फ्री भी रहता है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और चाहते हैं सब कुछ पता करना कि काम कैसा चल रहा है, फीडबैक क्या है, और आप गूगल फॉर्म बना मतलब आप फॉर्म की तरह सर्वे करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स गूगल फॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। लोगो बनाने के लिए कैनवा का लोगो मेकर सबसे बेस्ट है, प्लस ब्लॉग लिखने के लिए मीडियम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी स्टार्टअप को लेकर के किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट दिखाई पड़े, तो पहले जहां पर लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड एंड कैनवा का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं पर अब आप गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि फ्री ही है ऑफकोर्स ऑलमोस्ट, और इसका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, प्लस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो घर बैठकर अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये कुछ फ्री टूल्स हैं आपके लिए जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्लस घर बैठ के वो कौन से बिजनेस आइडिया हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए ताकि मेरे बाकी लिसनर्स को भी पता चले कि आपके पास कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर घर से जनरेट इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोडा। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एटिस्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

भाई जहाँ दुनिया भर में इंस्टाग्राम पर आपको हजारों लोग अलग अलग तरह का ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे और न जाने कितनी ही फेक बातें, कितनी ही डर को फैलाते मिल जाएंगे, वहीं पर अब चाइना ने लगा दी है रोक और कह दिया है जिसके पास डिग्री नहीं उसके पास एडवाइस देने का कोई हक नहीं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर रेडियो ज्ञानस्थली। और आज मॉर्निंग शो में भाई जो हमारा आखिरी सेगमेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स वक्त होता जा रहा है अब आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले मुझे लगा आपको ये खबर ज़रूर दे देनी चाहिए जो हाल फिलहाल में ही चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना का एक नया रूल है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग हेल्थ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर या लॉ के ऊपर ज्ञान देते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हेल्थ से जुड़ी बातें क्या होती हैं, आपको कौन सा वर्कआउट करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसको खाने से आप बीमार पड़ रहे हो, या फिर ऐसी भी किसी बीमारी के बारे में बात करें, जो कि ऑफकोर्स भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर डराते मिल जाएंगे, चाइना ने उन सब पर बैन लगाते हुए कहा है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी को एडवाइस भी नहीं देने वाले हैं, आप किसी को प्रवचन नहीं देने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब सिर्फ वही आकर सोशल मीडिया पर हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर या फिर कानून को लेकर ज्ञान देंगे, कंटेंट बनाएंगे या फिर लोगों तक वो बात पहुंचाएंगे जिनके पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होगी। बिना डिग्री के अगर आप किसी को कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया पर आकर आप एडवाइस दे रहे हो कि ब्रेड मत खाओ, ब्रेड खाने से ये हो जाएगा, या फिर आप किसी के सिर्फ प्रमोशन के लिए आप किसी ब्रांड को प्रमोट करते हुए कह रहे हो कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है बाकियों का सब खराब है, तो अगर इस तरह की आपने कोई भी बात की है तो अब आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी प्लस आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। क्या लगता है, ऐसी ही कुछ बातें, ऐसे ही कुछ रूल्स क्या भारत में भी आने चाहिए लोगों के लिए, ताकि जो भी हेल्थ को लेकर या फिर लॉ को लेकर, ऑफ कोर्स फाइनेंस, हेल्थ, लॉ, इन सारी बातों को लेकर के आपको आकर एडवाइस दे रहे हैं या जिनकी बात सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके पास डिग्री होना ज़रूरी है? क्या ये रूल इंडिया में भी लागू करना चाहिए जिससे सोशल मीडिया पर इस वक्त जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके दिमाग से खेल रहे हैं, जिनकी वजह से आप अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक UPSC का एग्ज़ाम समझ बैठे हैं, उनके लिए ये रूल्स मायने रखने चाहिए। आई थिंक अगर आप इंडिया में ऐसा कोई रूल आता है जिसमें आपके जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं इंस्टाग्राम पर जो आकर बता रहे हैं कि बेल के पत्ते खाने से कैंसर ठीक होता है, तो इस तरह के साइंटिफिक रीजंस उनके पास नहीं होते, लॉजिक कुछ भी नहीं होता है, बस वो अगर आपको गूगल के ज़रिए कुछ भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और लोगों तक सही जानकारी सिर्फ एक वही इंसान दे सकता है जिसके पास डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होते हैं या फिर उसने इस चीज़ की पढ़ाई में वक्त दिया हो। बाकी लोग जो गूगल से पढ़ के आपको आकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके लिए भी बैन करना चाहिए, उनके अकाउंट को बैन करना चाहिए या फिर उनके कंटेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। अब आपके ख्याल क्या है ये आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। प्लस आज का शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और हमारे साथ जो मैसेजेस आए हुए हैं चैट बॉक्स में, उन मैसेजेस को पढ़ लेते हैं। तो भाई हमारे मैसेज आया था, ओके, सविता जी का मैसेज आया था। सविता जी के बाद मैसेज आया था धर्मेंद्र मोहन जी का, जो हमें सुनते हैं आवास विकास से। लिखा था, गुड मॉर्निंग गोंडा, सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उन्नति जी नमस्ते। नमस्ते आपको भी, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सविता जी की तरफ से काफ़ी सारे इमोजीज, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी लिख रही हैं, बरेली वाली गुड़िया हमें जापानी गुड़िया बना दिया है, जानकारी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच सविता जी। हमने काश वाली भावना हटा दिया हूँ, बहुत बढ़िया। जब भी हम किसी चीज़ में काश लेकर के बैठते हैं या फिर सोचते हैं कि काश हमने किया होता, वो जो पछतावे की फीलिंग है वो बहुत ख़राब होती है और हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी काश वाली फीलिंग ना आए, जब भी आपका मन करे आप वो चीज़ कर दीजिए, रिजल्ट बेहतरीन ही होगा। इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, युग का नाम कलयुग,
जी ऐसे ही नहीं पढ़ा, यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात सच है भाई, आजकल लोग अच्छा करने में यकीन नहीं करते हैं बल्कि वो अच्छा बनने में यकीन करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है या अपनी तारीफ अपने ही मुंह से कर रहा है तो ज़रा होशियार रहिएगा, हो सकता है वो इंसान बिल्कुल भी वैसा ना हो जैसा वो आपको बता रहे हैं। एंड इसके बाद हमारे एक नए लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं एंड ऑफ कोर्स लिखा है नाइस सॉन्ग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आपका नाम जनाब, आपने अपना नाम नहीं लिखा है फिलहाल के लिए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इमोजीज काफ़ी सारे हैं, थैंक यू सो मच। सविता दुबे जी ने काफ़ी सारी इमोजीज हमें सेंड की हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपनी फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपका अगला कार्यक्रम है गांव की गूंज, जिसमें आपको लोकगीत, गांव की बातें, आपको उसी मिट्टी की खुशबू मिलने वाली है जिस मिट्टी की खुशबू आपको अपने बचपन में मिला करती थी। फिलहाल आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोला शहर की धड़कन, आपकी आरज़ूती मौजूद थी अब तक आपके साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: Mix.

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सभी मिलकर ला रहे हैं, जिसमें हर बार की तरह मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वह श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उसका साथ देने आ रहे हैं जिमी, श्वेता और समता। आज हम आपको ले चलने वाले हैं हमारे गोंडा के ही एक पर्यटक स्थल यानी कि बलरामपुर की ओर, जहां पर आप सभी को पता है कि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ वहां पर एक माता जी का भव्य मंदिर भी है। तो आइए दोस्तों, हम गांव की गूंज का जो ये एपिसोड है, इस बार हम आपको ले चलने वाले हैं एक नए और एक बहुत ही प्यारे से पर्यटक स्थल की ओर। अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। उफ, श्वेता भी अभी नहीं आई है, गांव भी जाना है। किरण दी तो अभी आते ही बस शुरू हो जाएंगी। चलो चलो, क्या कर रही हो सब?
10: राधे राधे समता जी, क्या हाल है? बहुत गुस्से में दिख रही है, आखिर बात क्या है?
0: अरे पूछो मत श्वेता, देख नहीं रही कितनी गर्मी है और इतने पसीने गिर रहे हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान ही हो गई हूँ।

0: अरे सब लोग रेडी हो भाई, किरण भी आती होंगी। और आओ सब लोग रोटी सब्जी खा लो, बस अभी गरम गरम बनाई है।
1: मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर किरण दीदी आ जाती तो सब एक साथ मिल के खा लेते और मजा ही आ जाता।
2: सच्ची कहा श्वेता, पर किरण दी आज कहाँ रह गई भला, गांव भी तो निकलना है। श्वेता देखो जरा फोन लगा के किरण दी को।
1: ओके।
3: हाँ श्वेता, मैं रास्ते में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। और सुनो, ड्राइवर भैया रास्ते में मिल गए हैं, तो मैं गाड़ी से ही आ रही हूँ, और सब बिल्कुल मुझे तैयार मिलो।
0: हाँ दी, आप आइए, तो हम सब बिल्कुल रेडी हैं। किरण दी आइए, आज मैंने रोटी और कटहल की सब्जी बनाई है, चलिए सब मिलकर खा लें, फिर सब चलते हैं।
3: ठीक है, आओ सब कटहल की सब्जी और रोटी खाते हैं।

0: किरण दी, इस बार हम लोग बलरामपुर चल रहे हैं ना? बलरामपुर के किस गांव में?
1: हम लोग चल रहे हैं बलरामपुर के बैरिया सुरजनपुर गांव में, और पता है जहां पर जिम्मी की नानी रहती हैं और उनकी नई नई बहू आई है, उसी को देखने चल रहे हैं। चलो सब लोग।
2: और जानती हैं समता दी, हमारी नानी जी अपने बहू बेटे दोनों से बहुत प्यार करती हैं। अभी आप जैसे उनके सामने पड़ेंगी वो अपने बहू के गुणगान गाने लगेंगी।
3: जो बहुओं के गुण गाती है वो

0: अभी कितनी दूर है गांव? जिमी, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है।
1: अरे श्वेता दी, बस आने वाले हैं ड्राइवर भैया, थोड़ा आराम से चलिए, इधर का रास्ता बहुत खराब है।
2: पर काफी हद तक सड़कें अच्छी हो गई हैं अब।
3: जिमी, यही है ना बैरिया सुरजनपुर गांव? जरा बताती हुए चलो, रमेश को रास्ता पता नहीं है।
1: हाँ किरण दी, मैं बताते हुए ही चल रही हूँ, इसीलिए तो मैं ड्राइवर भैया के बिल्कुल बगल वाले सीट पे बैठी हूँ। भैया इधर से दाहिने मोड़ लीजिए, और वो देखिए भैया, सामने वाला जो दो मकान है पीले रंग का, आगे छप्पर छाया हुआ है, बस वही है नानी का घर।
2: वो जो चारपाई पर बैठी है वही है क्या तुम्हारी नानी, वो जो बूढ़ी सी है?
1: हाँ हाँ समता दी, वही है हमारी नानी जी। चलिए सब लोग उनको राम राम बोलते हैं।
4: राम राम नानी जी।
3: कैसी हैं आप नानी जी, क्या हाल चाल है? नानी जी, भैया और भाभी सभी ठीक है ना? कहाँ हैं सब लोग?
5: सबका राम राम बहनी, जियो नी के रहाओ। कहाओ बहनी जिम्मी, काओ हाल है? तोहरे मम्मी पापा केर का हाल है बहनी? आज नानी कहाँ याद कैली हो बच्चा हमार? ये सब तोहर के हो सखी सहेलर हो? आओ आओ सभी जने बैठो, आओ बैठो।
1: हाँ हाँ नानी, ये सभी हमरे साथे काम करती, सखी सहेली समझो नानी।
2: जिमी, तुम्हारी भाभी आ रही है क्या? वो देखो सामने, और शायद भैया भी साथ में हैं।
0: लगता है नानी अपने बहू और बेटे से बहुत प्यार करती हैं।
5: नानी, ज्यादा लाड प्यार ना करो अपने बेटे का, नहीं तो बिगड़ जाएंगे भैया।

0: अरे बच्चा यक्के जने हैं ये, तब मोहाइत है इनका, अब का करी बहनी, यक्के तो हमार बिटीवा बाटे।
1: किरण दी, हमारा मन कह रहा है कि नवरात्रि चल रही है तो हम लोग इधर से ही देवी पाटन मंदिर के दर्शन करते हुए चले।
2: हाँ दी, हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे, चाहे जितनी देर हो जाए। नानी जी आप भी चलिए और भैया भाभी आप भी चलिए, गाड़ी तो हमारे पास है ही, बहुत मजा आएगा।
0: अब ये दुल्हन कहाँ जाई है दादा, घाम बहुत है और तनी ये पैदल चले, मैं कमजोर ही बच्चा हमार, डरात ही कि घमाम चली तो करिया ना हो जाई।
2: अरे नाही अम्मा, ये बात ना है, हम कहाँ करिया हन, हमसे ज्यादा तो तहारी बिटिया करिया ही
0: है। दुल्हन खबरदार, जो हमरे बिटिया के यहाँ करिया कहे तो

0: अरे नानी जी, अब बहू और बेटी में कोई फर्क वर्क नहीं करता है और न करना चाहिए। आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू बनेगी। बहू को बेटी की तरह ही रखिए और प्यार करिए।
1: हाँ नानी जी, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी जी को खुश रखने के लिए ही घर में लक्ष्मी जी आती हैं। अब दिवाली आ रही

0: लक्ष्मी जी आने ही वाली हैं।
1: अरे हमारी नानी जी बहुत अच्छी हैं। देखो कितनी सुंदर हैं और बहू को बहुत प्यार करती हैं। अरे इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है आपको तो आपको किस बात की चिंता है, क्यों नानी?
2: अरे बहनी, हम तो इनका बहुत मोहाई ले, लेकिन ये जब देखो तब यह कहत ही कि तोहार लड़कवा हमारे साथे बहुत मनमानी करत है, हमार कौनो कदर नाई की हिस। आप बताओ का करी।

0: अरे भाई, झगड़ा लड़ाई कहाँ सुनी, सब बंद करिए और चलिए हमें दर्शन करा तुलसीपुर पाटन देवी मैया का।
1: चलिए नानी जी, मामी जी, दादी, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग मंदिर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे।
0: चलो चलो, मैंने ही कहा था मंदिर चलने के लिए, चलो सब लोग मंदिर चलते हैं।
2: आओ आओ सब लोग, चलो गाड़ी में बैठो।
0: अरे भैया संभाल के जरा, आराम से चलिए। नानी जी आप आराम से बैठी है ना?
2: हाँ हाँ बच्चा बैठी हैं, नीक यक बैठी हैं दादा।
1: चलो चलो सब आराम से उतरना, नीचे मंदिर आ गया, देखो नवरात्र चल रहा है तो कितनी भीड़ है। अरे राम रे,
0: आराम से उतरो, भीड़ बहुत है।
2: आओ चलो एक माता जी का गीत गाकर हम लोग अपनी अर्जी लगा देते हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: हेलो लिसनर्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति, और आप सुन रहे हैं वेंसडे का स्पेशल स्वास्थ्य संगनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को स्मार्ट एनजीओ और रेडियो कैनसली की एक बहुत ही खूबसूरत सी पहल, खूबसूरत सी श्रृंखला, जिसके अंदर बात होती है आपकी अपनी सेहत की। आप सभी का स्वागत करते हैं 89.6 FM रेडियो कैनसली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी 70% बीमारियों का जड़ आपका पेट हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर आपका पेट ठीक ना हो तो क्या आपकी नींद, आपका मूड, यहाँ तक कि आपकी सोच भी बिगड़ सकती है? क्या आप इस बात को मानने वाले हैं? अगर नहीं तो भाई, आज का टॉपिक थोड़ा अलग लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा पेट, यानी कि हमारी गट हेल्थ। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे मूड, एनर्जी, इवन हमारी सोच पर भी पड़ता है। गट हेल्थ का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज्यादा हेल्थी है। आजकल पेट की समस्या, गैस, अपच, कब्ज और बार बार एसिडिटी का होना बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। अक्सर लोग उसको हल्की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी दिक्कतें आगे चलकर गट हेल्थ, यानी कि आंतों के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं। गट हेल्थ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं होता, यह आपकी इम्यूनिटी, ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि आप अपने गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और गट हेल्थ क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मूड के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार आते हैं, करते हैं आपसे आज गट हेल्थ के ऊपर काफी लंबी चौड़ी चर्चा। स्टे ट्यून्ड।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
7: अरे सुना
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपको अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि गैस बनना, कब्ज रहना, बार बार एसिडिटी होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, ब्लोटिंग रहना या फिर आपका पेट हमेशा खराब रहना। ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत आम लगती हैं और आपको लगता है कि हो सकता है बदलते मौसम की वजह से हो रहा हो या फिर हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रहती है तो क्या ये आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आंतों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती? बेशक डालती हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ का मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें पेट, छोटी और बड़ी आंत और खासतौर पर आंतों में मौजूद बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जब पाचन सही तरीके से काम करता है, खाना अच्छे से पचता है, तब आपके खाने के द्वारा मिले पोषक तत्व आपके शरीर में अच्छे से काम करते हैं। आपका पेट हल्का महसूस होता है, लेकिन जब आपका गट हेल्थ खराब होता है तो फिर आपको काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे कि गैस बनना, बार बार ब्लोटिंग होना, अपच होना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना या फिर जलन महसूस होना सीने में और पेट के अंदर। और आपको लगता है कि सिर्फ एंटासिड लेने से या फिर गैस की दवा ले लेने से ये ठीक हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा दवाई लेते जाते हैं आपकी आंतें और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं। तो इन्हें ठीक कैसे करना है और गट हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है, इसके बारे में आइए आपको हम बताते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि गट हेल्थ सिर्फ खाने पीने से जुड़ी है, लेकिन इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। भोजन को पचने और पोषक तत्वों के अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब होने में मदद करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना, कॉन्स्टिपेशन मल त्याग को नियमित रखती है, ऊर्जा स्तर आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बनाती है, मानसिक स्वास्थ्य और आपके मूड से भी आपका पेट जुड़ा होता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छी चीजें, और अगर आप अपनी अच्छी चीजें कंज्यूम करते हो तो आपका मूड अच्छा रहता है। जब मूड अच्छा रहता है तो काम बेहतर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग हमेशा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, और इसके पीछे की वजह ये है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट खराब चल रहा है और उनका पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ है। कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, एक ऐसा सिम्टम जो आपको बताता है कि आपके गट हेल्थ में कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है। गट हेल्थ को इम्प्रूव कौन करता है? गट माइक्रोबायोम क्या होता है? हमारी आंतों में खराब बैक्टीरिया भी रहते हैं जिन्हें मिलकर गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। हम आपको बता दें, आपके गट हेल्थ के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पाचन में मदद करते हैं, विटामिन्स बना

आते हैं और आपको होने वाले अन्य संक्रमण से बचाते हैं। दूसरे होते हैं खराब बैक्टीरिया, जो जब ज़्यादा बढ़ जाएं तो गैस, सूजन से जुड़ी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग दिखने में तो बहुत पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बहुत मोटा होता है। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज भी बहुत की, हमने डाइट भी बहुत की लेकिन हमारा पेट कम नहीं हो रहा। कई बार इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उनका गट हेल्थ खराब है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया यानी कि खराब बैक्टीरिया उनके पेट के अंदर, उनकी आंतों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण उनको सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ती जा रही है। इन्फ्लामेशन अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो ये अधिकतर बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर खराब गट हेल्थ होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो भाई, पाचन से जुड़े कुछ लक्षण जो आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं: पेट में गैस बनना, पेट फूलना, कब्ज या दस्त, अपच, एसिडिटी, पेट में दर्द होना, मल त्याग में परेशानी, खाना ठीक से ना पचना, बार बार थकान महसूस होना, कुछ खाने से तुरंत परेशानी होना, बार बार बीमार पड़ना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर आप कुछ भी खा लें आपको हमेशा भारीपन लगा रहता है, आप हल्का सा हल्का भोजन भी करते हैं इसके बाद भी अगर आपका पेट बहुत भारी भारी महसूस होता है, सुबह उठने के बाद भी आपको हल्का महसूस नहीं होता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपका गट बैक्टीरिया यानी कि आपका जो गट हेल्थ है वो ख़राब हो चुका है। बट कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं या फिर इसके लिए दवाई खाना ज़रूरी है? अगर हम अपनी गट हेल्थ को ध्यान में रखते हैं तो क्या रोज़ सुबह उठ के हमें गैस की दवाई खानी पड़ेगी या फिर इसको नेचुरली ही ठीक किया जा सकता है? और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य संगिनी में। गट हेल्थ खराब होने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो आपके खाने पीने से ही जुड़े होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड या फिर जंक फूड खाते हैं यानी कि आप पैकेट वाला खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, बाहर बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो पैकेट्स में आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपके पेट की आंतों को यानी कि आपके गट हेल्थ को ख़राब करता है। भारत में आजकल प्रोटीन और फाइबर की कमी को लेकर के काफ़ी लोग जानकारी फैला रहे हैं। गट हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर के आज इंटरनेट पे भी कई लोगों ने हंगामा मचा रखा है, बहुत ज़्यादा हाइप है और हमें लगता है कि प्रोटीन कहीं ना कहीं किडनी ख़राब कर देगा, फाइबर जो कि अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बचपन से सुनते आए हैं कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बैलेंस डाइट में कार्ब्स का होना, फाइबर का होना, प्रोटीन का होना, न्यूट्रिशंस का होना, विटामिंस का होना, मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सबको मिक्स करके बनता है एक बैलेंस डाइट, जिसे आजकल मेनली लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल लोगों का पूरा ध्यान उनके असल खाने से हटकर बाहर के प्रोसेस्ड फूड पर होता है। आपको भी पता है कि आजकल अगर आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप डाइट कर रहे हैं। इवेंचुअली आप डाइट नहीं कर रहे होते हैं, आप मदर नेचर का दिया हुआ रियल फूड कंज्यूम करते हैं जो कि आपके लिए बनाया गया है, आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेट वाले खाना खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, छोले भटूरे, ऐसे तेल मसालेदार स्पाइसी खाना खाते हैं तो लोगों लगता है कि आप डाइट नहीं कर रहे हैं और आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेहद सब्जियों को खाना, फलों का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए बर्गर, पिज़्ज़ा बिल्कुल ही छोड़ दें, चाउमीन हाथ भी ना लगाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको लिमिटेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और उनमें फाइबर की कमी, प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी ज़्यादा हटकर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज आपको मिल रही हैं तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर एम्प्टी कैलोरीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है वो कैलोरीज जो मिलती तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं लेकिन वो आपको ना एनर्जी देती हैं, ना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, ना वो आपके मसल्स को रिपेयर करती हैं, ना वो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, सिर्फ वो फीड करती हैं बैड बैक्टीरिया को, जिसके बाद आपके पेट में अनेक तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, यहाँ तक कि अल्सर होने का भी खतरा बढ़ जाता है, बार बार गैस बनती है, बार बार अपच होती है, इनडाइजेशन होता है और आपको लगता है कि सिर्फ एंटासिड ले लेने से या फिर गैस की दवाई ले लेने से, पेंटॉप डीएसआर खा लेने से हमें दिन भर गैस नहीं बनेगी और हम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट देंगे, तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है।
तो फाइबर युक्त भोजन की कमी आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लोग फलों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लोग बाहर के पैकेट वाली चीज़ों को खाते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं, फाइबर नहीं मिलता। हम आपको बता दें भाई, एक अच्छे खासे इंसान के लिए अगर डेली फाइबर की बात करें तो 25 ग्राम फाइबर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में 25 ग्राम फाइबर नहीं ले रहे हैं तो आपको गट हेल्थ इशू रहते हैं। इसी के साथ आता है कि अत्यधिक मीठा खाना या तला भुना खाना। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीनी डालकर चाय पीते हैं, चाय की जगह पर चाशनी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, हर वक्त आपको मीठे की क्रेविंग लगी रहती है, तो इससे आपकी गट हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि ये आपके गुड बैक्टीरिया की जगह पर बैड बैक्टीरिया को फीड करता है और बैड बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से आपकी गट हेल्थ इशू बढ़ती है। अगर जीवन शैली से जुड़ी बात करें तो लगातार तनाव में रहना। अब आपने कभी सुना हो या ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में भाई बहन कहे जाते हैं, यानी कि कजिन्स। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तो आपका डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। और अगर आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप तला भुना खाते हैं, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। यानी कि अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपको इनडाइजेशन लगा रहता है, यानी आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, और अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है तो आपको स्ट्रेस होना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी लाजिम है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में भाई बहन है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई, अगर आपको लगातार तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, किसी बात की आप लगातार ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ना करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाएं जिससे आपका पेट भी शांत रहे और आपका दिमाग भी शांत रहे। दूसरी चीज़ आती है नींद पूरी ना होना। आजकल रात भर लोग स्क्रोलिंग में निकाल देते हैं, यानी कि सोचते हैं कि सोने से पहले एक घंटा फ़ोन चला लेते हैं, और एक घंटा फ़ोन कब रात के 3 बजा देता है किसी को पता भी नहीं चलता। और जब तक आप सोते नहीं हैं, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम नहीं करती है। आपके सोने के बाद आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, आपका डाइजेशन काम करता है। अगर आप नहीं सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जो कि 6 से 8 घंटे एक इंसान के लिए ज़रूरी नींद होती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है, यानी कि आपके खाने की पाचन शक्ति पर पड़ता है, आपके पेट के पाचन शक्ति पर पड़ता है। और अगर जब वो ख़राब होता है तो फिर आपका जो खाना है वो हजम नहीं होता है, और सुबह उठकर आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भारीपन, गैस बनना, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। इसी के साथ बात करें शारीरिक गतिविधि का कम होना। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप सिर्फ खाना खाने के बाद वॉक ही क्यों ना करें, लेकिन 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें। यूं तो WHO कहता है कि हर एक इंसान को दिन में लगभग 10,000 कदम चलने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप 10,000 कदम नहीं चल रहे हैं तो भी 6,000 से 7,000 कदम आपको दिन में चलना ही चाहिए। अगर आप नहीं चलते हैं, खाना खाकर बस एक जगह पर बैठे रहते हैं, या फिर खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं, तो ये कारण होता है कि आपके गट हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि आपका खाना ठीक तरह से फिर नहीं पचता है, और वो खाना जो अभी तक नहीं पचा है वो आपके पेट में, आपकी आंतों में अंदर ही अंदर रहता है, जो ख़राब होता है और आपको आगे जाकर ब्लोटिंग और आपकी जो आंतों की बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कमज़ोर करता है। दूसरी बात करें तो पानी का कम पीना। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन को लेकर के आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी एक नई बात सामने आई है कि 7 से 8 ग्लास ये कॉमन है, लेकिन आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं, आप हाई फाइबर चीज़ें खा रहे हैं, आप हाई प्रोटीन का खाना खा रहे हैं, लेकिन आप पानी नहीं पीते हैं, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर से देता है, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर को मूव करने के लिए, आपकी आंतों से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए, आपके बॉबल मोमेंट्स को ठीक करने के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर और आपकी किडनीज पर ज़रूर पड़ता है। तो भाई, मैं यही कहूँगी कि आप पानी लगातार पीते रहें, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं, और चलते फिरते हर घंटे एक ग्लास पानी ज़रूर पिए। 10 से 12 ग्लास अगर आपका वज़न है 62 या 60 के आसपास, तो इतना पानी की ज़रूरत आपको होती है। किसी और के पानी इनटेक को
अपना पानी इनटेक ना समझें, अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना वाटर लेवल जरूर चेक करें और पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं आपको और भी जानकारी गट हेल्थ से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगति अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज़ है आपकी अपनी आरजी उन्नति की, और सेहत सही लाभ के ये बैनर के तले लेकर आए हम इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसमें आज बात कर रहे हैं आपके गट हेल्थ से जुड़ी बीमारियाँ और गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, क्यों ये ज़रूरी है इसके बारे में। हमने अभी तक जीवन शैली के बारे में जाना, खान पान से जुड़े कारणों के बारे में जाना, और एक और कारण आता है जिससे आपका गट हेल्थ खराब होता है, और वो है मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीज़न में आता है कि अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटासिड लेते हैं, तो इससे आपके पेट में अंदर मौजूद एसिड धीरे धीरे कम पड़ जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना ठीक तरह से नहीं पचता है। लंबे समय तक कुछ दवाइयों का सेवन करने से आपकी गट हेल्थ इशू बढ़ सकती है, और अगर आपको पुरानी पाचन संबंधी बीमारियां हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका गट हेल्थ कमज़ोर हो। अगर गट हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दें, IBS का होना, IBD, पेट में अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स रोग, लैक्टोज इनटॉलरेंट, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये सारी वो बीमारियां हैं जो गट हेल्थ से

नोटिस किया है, या फिर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, या डायरिया, या फिर लूज मोशन जैसी आपकी कंडीशन हुई है, तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। ग्लूटन जो आपको अनाज में मौजूद मिलता है, यानी कि अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं ग्लूटन मिलता है। सिर्फ मिलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ग्लूटन नहीं मिलता है। तो अगर आपकी बॉडी यानी कि आपकी आंतें ग्लूटन सेंसिटिव हैं, तो आपको गेहूं से बनी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हर उस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है जिसमें ग्लूटन मौजूद होता है, फिर चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो रोटियां हो, या फिर कोई और चीज़ हो। ग्लूटन से बनी चीज़ें आपकी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो आपको उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। इसी के बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारे गट हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध के बारे में। ज़्यादा तनाव लेने से पेट की समस्या बढ़ती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनडाइजेशन होना लाजिम हो जाता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका खाना ठीक तरीके से नहीं पचता, क्योंकि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में जुड़ा होता है। ख़राब पाचन से चिंता और बेचैनी हो सकती है, और अगर आपको इनडाइजेशन की बीमारी ज़्यादा रहती है, आपको खाना ठीक तरीके से नहीं पचता, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये आपकी स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, बेचैनी को बढ़ा सकता है, आपकी चिड़चिड़ाहट को बढ़ा सकता है। स्वस्थ गट मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आपका पेट सुबह उठ के साफ हो जाता है तो मैं आपको बता दें आपका पूरा दिन काफ़ी बेहतर लगता है, क्योंकि आपका मूड लाइट लगता है, आपका पेट लाइट लगता है, और आपका दिमाग बार बार आपके पेट की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करते हैं, और आपका हल्का फील करना, आपके हेल्थ, आपके गट हेल्थ का बैलेंस में रहना, आपके गट हेल्थ का लाइट फील करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। गट हेल्थ के लिए सही आहार की अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी है फाइबर युक्त भोजन करना। फाइबर में आपको मिलते हैं फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और फलियां। फल की अगर बात करें तो अमरूद, पपीता, नाशपाती, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्लस अगर आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं, यानी कि अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको आपको स्ट्रॉबेरीज, अमरूद, नाशपाती और पपीता आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं, 250 ग्राम अमरूद ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिलता है। प्रतिदिन एक वयस्क इंसान को 25 ग्राम फाइबर की नीड होती है, और अगर आप 25 ग्राम फाइबर नहीं लेते हैं, यानी कि 20 ग्राम से 25 ग्राम फाइबर नहीं लेते हैं, तो ये आपके गट हेल्थ को खराब करता है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां आपके फाइबर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आजकल बारिश का मौसम है, तो वो पत्तियां कीड़ों से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सब्जियां लेने जाते हैं तो उनको अच्छे से ज़रूर धो लें, उनको अच्छे से वॉश करें, और उसके बाद ही उन्हें पका कर खाएं। आजकल कच्ची सब्जियां खाने का जो चलन चल रहा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, स्पेशली बारिश के मौसम में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस मौजूद होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको IBS या फिर ऐसी कोई गट हेल्थ इशू है, आपका गट सेंसिटिव है, तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सब्जियों को पका कर खाएं, उन्हें अधपका ना खाएं, या फिर उन्हें बॉयल करके ज़रूर खाएं, ताकि आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, डाइजेशन में कोई इश्यू ना आए, प्लस आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल सके। फाइबर आपको सब्जियों में, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में फाइबर की मात्रा उपयुक्त होती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप सिलियम हस्क यानी कि इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है, तो आप रात में गुनगुने पानी में एक चम्मच इसबगोल को डालकर पी सकते हैं। इसके बाद लगातार पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर अगर आपके पेट में ज़्यादा है और आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको लगातार पाचन संबंधित समस्या देखने को मिले, जिसमें गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, या फिर कॉन्स्टिपेशन का फील होना हो सकता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो फाइबर आपके बॉवल मोमेंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, यानी कि आपको इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेटेड महसूस होता है। बट वहीं पर अगर आप भरपूर मात्रा में फाइबर लेते हैं प्लस भरपूर मात्रा में पानी भी पीते हैं, तो यह आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसी के बाद आती है साबुत अनाज, जिसमें आप दलिया ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, बाजरा के साथ साथ रागी ले सकते हैं,
ये वो सारे अनाज हैं जो आपको मार्केट में आजकल आसानी से मौजूद हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। प्लस

0: आप लोबिया के बीन्स ले सकते हैं, लोबिया के जो बीज आते हैं आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें आप रात भर भिगोकर सुबह खा सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं यानी हरी मूंग की दाल ले सकते हैं, ये वो लोग भी खा सकते हैं जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो काले चने या फिर चिकपी जैसी यानी कि छोले जैसी चीज़ों को नहीं पचा पा रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी सेफ है और आप इसको खाकर अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस दाल और फलियाँ, दाल अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल तब तक आप ना खाएं जब तक आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको गैस बनती है तो इसको अवॉइड करें क्योंकि ये पचाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप अभी तक किसी पाचन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो उड़द की दाल को थोड़ा अवॉइड करें, बाकी की दाल आप खा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक जो कि आपको दही और छाछ में आसानी से मौजूद होता है, आपको मिल जाता है, तो भाई आप दही और छाछ को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। प्लस प्रोबायोटिक को एक्टिवेट करने के लिए प्रीबायोटिक की ज़रूरत होती है, और प्रीबायोटिक आपको गार्लिक, बनाना यानी ऐसी चीज़ों में मिलता है। फर्मेंटेड फूड्स के अंदर आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, तो अगर आप कांजी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक अगर युक्त आहार आप लेते हैं तो आपके गट हेल्थ की जो गुड बैक्टीरिया है वो उनको फीड करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और जब गुड बैक्टीरिया आपके इम्प्रूव होते हैं, जब उनकी संख्या बढ़ती है, वो मजबूत होते हैं, तो जो आपने जो भी खाया होता है वो अच्छे से पचता है और ऑफकोर्स आपको गैस या फिर एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है। अब किन चीज़ों से बचना है गट हेल्थ इशू होने पर, तो आपको ज़्यादा तला भुना खाना खाने से बचना है, प्रोसेस्ड एंड पैकेज वाले फूड से बचना है, बहुत ज़्यादा चीनी से बचना है क्योंकि चीनी आपके बैड बैक्टीरिया को फीड करती है, इसी वजह से आपको चीनी कम करनी है। प्रोसेस्ड यानी कि पैकेट में आए हुए खाने को तो अवॉइड करना है, जिसमें पोटैटो चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, टेढ़े मेढ़े आ गए, इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। पैकेट वाले जूस को, कोल्ड ड्रिंक को, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लस बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, और ये सब करके आप अपने गट हेल्थ को सुधार सकते हैं। गट हेल्थ के लिए जीवन शैली में बदलाव करने की अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रोज़ाना हल्का व्यायाम करें, समय पर सोएं और जागें, तनाव कम करने के लिए उपाय अपनाएं जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप वर्कआउट कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। भोजन अच्छे से चबा कर खाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं, और आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना है, आपको पूरा वक्त लेकर, पूरा टाइम लेकर अच्छे से एक एक दाने को चबा कर खाना है। गट हेल्थ कैसे सुधारें अगर इसकी बात करें तो खान पान में फाइबर बढ़ाएं, प्रोसेस फूड कम करें, दही और फर्मेंटेड फूड शामिल करें, नियमित अपनी दिनचर्या को अपनाएं, लगातार अपनी आदत बनाए रखें और बदलते रहें, यानी कि अगर आपकी कोई ख़राब आदत है तो उसको बदल कर अच्छी आदतों को अपनाएं, और ऑफकोर्स आप अपनी गट हेल्थ को इसके ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं। गट हेल्थ की अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो इसकी जाँच कब करवानी चाहिए, तो हम आपको बता दें, पाचन की जाँच, मल की जांच और पाचन तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है जब भी आपकी गट हेल्थ की जांच की जाती है। अगर आपको बार बार दिक्कत हो रही है, बार बार गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ों की समस्या बार बार आप देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि जाकर एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो IBS जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि एक गट हेल्थ इश्यू ही है, बट उसको वो अवॉइड कर देते हैं ये कहकर कि पुदीन हरा ले लेंगे काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता है, आप प्लीज़ जाकर ज़रूर चेक करवाइए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आप ग्लूटेन से सेंसिटिव हैं, या फिर आपको IBS जैसी कोई प्रॉब्लम है, इन चीज़ों का ख्याल रखें और ऑफकोर्स अपने गट हेल्थ को बरकरार रखें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आज हम बात कर रहे थे गट हेल्थ की, यानी कि आपके आंतों की जुड़े स्वास्थ्य के बारे में, जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसी की वजह से भारत में कई लोगों का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ दिखाई पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपका गट हेल्थ खराब रहता है तो इसकी वजह से आपका वेट गेन भी होता है, यानी कि आपका वजन भी बढ़ता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि गट हेल्थ इश्यू आपको परेशान कर रहा है, बार बार गैस बन रहा है, तो सबसे पहले अपनी डाइट को देखें कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं या ढंग से नहीं पी रहे। अगर नहीं तो अपनी आदतों को बदलें। प्लस अगर ये सब करने के बाद भी आपको ये इशू कंटिन्यू रहता है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक कराएं। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब पेट दर्द या गैस लगातार बनी रहे, वज़न बिना वजह से कम हो रहा हो या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, मल में अगर आपके वॉशरूम जा रहे हैं और आपको ब्लड नज़र आ रहा है, या बार बार एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना गट हेल्थ चेकअप ज़रूर से कराएं। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानसली, आपके अपने गोरा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे अदनान। श्रोताओं, कहते हैं ना कि घर की असली खुशी तभी होती है, यानी घर की असली खुशहाली तब आती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हो। लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी बहुत असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी टीकन भाभी, क्योंकि भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं। भाभी, बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी आखिर कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी आखिर क्यों है?
2: देखिए, बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखते हैं। पहला संकेत है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा है तो ये पहली चेतावनी है। और दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं। तीसरा लक्षण है बाल और त्वचा। कुपोषित बच्चों के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी रूखी सी दिखती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। और पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं।
0: अच्छा, तो भाभी हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए, अब जरा इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताइए।
2: देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होता है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दे, 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखे। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फलों का गूदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना बहुत जरूरी है। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है। डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए।
0: तो भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में भी पोषण का असर होता है?
2: हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडीज देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा, उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
3: तो भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
2: जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है, फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वो स्वस्थ हो।
3: भाभी, एक और जरूरी बात बताइए कि परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
2: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
3: तो भाभी, मुझे ये बताइए कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
2: गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है।
3: भाभी, अक्सर डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां खाना क्या जरूरी होता है?
2: जब महिला गर्भवती होती है तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगता है। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो जाता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
3: तो भाभी, मेरा एक और सवाल है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
2: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुड़ भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दही जरूर खाना चाहिए। गेहूं, चावल, बाजरा जैसे मोटे अनाज भी ताकत देते हैं।
3: तो भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियां और दूध दही आखिर क्यों जरूरी होता है?
2: हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
3: भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है?
2: माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण की होती है। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकता है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे, ये सब खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है, दाल और पनीर से प्रोटीन की कमी पूरी होती है और दूध दही से हड्डियां मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
3: दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही। इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चे को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाए तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत होगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियां, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो याद रखिएगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे, और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
1: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? और बहुत ही प्यारा सा मौसम, जैसा कि आप सभी को पता है कि मौसम की जानकारी हर दिन हर पल आपको मिल रही है हमारे 89.6 FM से, क्योंकि हम वही बताते हैं जो सच होता है। और बिल्कुल जो सच होता है हम वही बताते हैं। और एक बात आप सभी से हमें और करनी है, वो ये करनी है कि हम कई बार चीज़ों को जब हम सुनते हैं समझते हैं, लेकिन आप लोगों को ये लगता होगा कि क्या रेमेडीज हम बताते हैं, कोई भी चीज़ें बताते हैं तो क्या वो अपने ऊपर यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं? 100% राइट, क्योंकि जब हम जो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो भाई हम पहले इस्तेमाल करते हैं फिर ही आपको हम बताते हैं, तो इसीलिए। लेकिन हर किसी की स्किन, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, पर हम हो सकता है कि हमारी बॉडी पे वो सूट कर जाए, आपकी बॉडी पे सूट ना करे। लेकिन स्टार्टिंग में ही हम आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि हम जो भी बताते हैं बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि सही चीज़ बताते हैं, कभी भी ये होने होता है कि उसको कोई मिलावट कर ली या कुछ कर लिया। तो आइए, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
6: सुन सहेली
7: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड प्यारी सी दोपहर में, क्योंकि दोपहर तो है, जैसे कि सभी को पता है कि धूप तो निकली हुई है, लेकिन आज जो धूप का जो असर है ना, ये बहुत ही मीठी वाली धूप है, जिसको कहते हैं ना मीठी वाली धूप।

0: तो ना ही गर्मी लग रही है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा मतलब ठंडी वाला मौसम था जो कल वाला था। तो कल का तो बेहद अच्छा वाला मौसम था।
1: बिल्कुल, मौसम भी बहुत प्यारा सा है और इसी प्यारे से मौसम में प्यारी सी दोपहरिया हो गई और प्यारी सी दोपहरिया में हम आ गए हैं, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो औपचारिकता है वो हम जरूर पूरी करेंगे।
0: बिल्कुल, तो आइए एक ही साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, तो सबसे पहले जो वो सवाल है वो ये है कि कैसे हैं आप सब। सबसे पहले अपना हालचाल बताएं, क्या हाल है आप सभी के, कैसे आप सब मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब दिन जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, तो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं जरूर बताइए हमें।
0: चलिए, तो जैसा कि हमारा नया सेगमेंट शुरू हुआ है कि नारीत्व पे एक बहुत ही प्यारी सी पोयम। तो पोयम क्या है, एक कहानी है, एक नारी पर बीती हुई, खुद की बीती हुई कहानियों पर आधारित है। आइए सुनते हैं। समझो नहीं मुझे अबला, समझो नहीं मुझे अबला, ना मैं कोई बेचारी हूँ, सक्षम समर्थ हूँ, खुददार सम्मान से जीने वाली हूँ, ममता मई आत्मविश्वासी मैं आज की नारी हूँ, उठे अगर चरित्र पर सवाल, ना चुप रहने वाली हूँ, खोकर मैं अपना स्वाभिमान, ना अग्नि परीक्षा देने वाली हूँ, मैं आत्म सम्मान के लिए आवाज उठाने वाली हूँ, मैं आज की नारी हूँ। बिल्कुल, जब उठे बात आपके चरित्र पर, आत्मसम्मान पर, तो कहाँ कोई नारी चुप बैठती है। इसी पर आधारित आइए आगे सुनते हैं, उसके बाद बताऊंगी कि आज वेनसडे, क्योंकि आज है वेनसडे और वेनसडे के दिन हम लेकर के आते हैं स्पेशल और स्पेशल सेंट्रिक यानी विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम।
1: होगा महफिल में अपमान, न कृष्ण को बुलाने वाली हूँ, न दाव पर लगने का अधिकार किसी को देने वाली हूँ, मैं आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाने वाली हूँ, मैं आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाने वाली हूँ, मैं आज की नारी हूँ, सम्मान करूंगी संस्कारों के साथ, ना अपनी संस्कृति भूलने वाली हूँ, रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों में मैं ना बनने वाली हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए स्वच्छंद उड़ान भरने वाली हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए स्वच्छंद उड़ान भरने वाली हूँ, मैं आज की नारी हूँ।
0: एग्जैक्टली, आज की नारी जो है ना, वाकई में देखो ऐसा भी माना जाता है कि नारी पर लाखों आपने इल्ज़ाम लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर नारी के चरित्र पर अगर इल्ज़ाम लगता है तो उसे वो तोड़ देता है, उसे वो बिल्कुल झंझोर देता है, क्योंकि एक नारी के पास सबसे बड़ा गहना क्या होता है, चरित्र, सबसे बड़ा गहना, और अगर कोई उसी पर अगर उंगली उठा दे और उसी पर अगर आकर के पिन आउट कर दे तो मतलब क्या ही बचा फिर उसके पास।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। एक लाइन कही जाती है कि गंगा की जटाओं में उलझने, शिव की जटाओं में उलझने के बावजूद भी गंगा जो थी वो बिल्कुल निर्मल और पवित्र थी।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि इस पोएट्री में भी कहा गया कि मैं अपमान नहीं सहूंगी और ना ही अग्नि परीक्षा दूंगी। बिल्कुल, मैं तो ये पूछती हूँ कि हर युग में सीता ही अग्नि परीक्षा क्यों देगी, और क्यों किसी लड़की से ही पूछा जाता है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, इतनी वक्त क्यों आ रही हो, या होता है ना कि वर्क प्लेस पे कभी कोई भी काम होता है या अगर कोई महिला है उसे रात पे लौटने में देर हो जाती है तो उससे जरूर पूछा जाता है कि अरे ऐसा कौन सा काम था जो इतनी देर से
0: आप या किसके साथ आई हो?
1: हाँ, आप अपने घर के बेटों से क्यों नहीं पूछते जब वो आधी रात को 1 बजे 2 बजे अपने दोस्तों के साथ आते हैं कि तुम किसके साथ आए और तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, तुम्हारी ऑफिस तो 7 बजे छूट जाती है या 8 बजे छूट जाती है। जरूरत है आज की नारी, जैसा कि हमने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं उन पे उन सवालों को बदलिए, सोचने के तरीके को बदलिए। अगर एक नारी है उसके किसी के भी चरित्र पर, अभी हम इस बात को अगर इस तरीके से लें कि एक पुरुष ही है, मान लीजिए कि उसके चरित्र पर अगर कोई कहता है, कोई कुछ उसे कह दे तो उसे जब उतना दुख होता है तो एक महिला को आप ऐसे ही बस कह देते हैं तो क्या उसे दुख नहीं होता है? आप अपनी जगह उसे रखकर सोचिए तो समझ में आएगा। होता है ना कि घर में आप अपने भाई को कभी बोल दो, छोटा भाई है या किसी को भी बोल दो, तो उन्हें तो बहुत तेजी लग जाती है, अरे मुझसे मत पूछा करो, हम नहीं बताएंगे, तुम क्यों पूछ रही हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप जितनी फ्रीडम अपने घर में अपने बेटे को देते हैं उतनी ही बेटी को भी दीजिए। और रही बात ये कि मतलब कैसे होता है, क्यों होता है, तो देखिए कहीं ना कहीं समाज, और एक लाइन कहते हैं ना कि जिन्हें नहीं खराब होना होता है या जिन्हें नहीं बिगड़ना होता है वो 100 लोगों के बीच भी इंसान नहीं बिगड़ता है, और जिसे बिगड़ना होता है या कुछ करना होता है वो घर में
0: रहते अकेले भी बंद कमरे में बिगड़ सकता है,
1: बिगड़ सकता है। तो बस ये है कि माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अगर बढ़ते बच्चे हैं या जो काम करने बाहर वुमेन्स जाती है उनके हस्बैंड्स को चाहिए कि थोड़ा सा एक यू नो जैसे सपोर्ट सिस्टम होता है कि अरे आप इतनी जैसे मान लो देर हो गई रात को तो एक हस्बैंड कहता है ना अरे तुम मत आना हम आ रहे हम आपको पिक कर ले रहे हैं। एक सेफ्टी की निगाह से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये नहीं कि अरे नहीं नहीं इतनी रात को तुम मत आओ हम अकेले मत आओ हम आ रहे, मतलब एक रखिए सेफ्टी वाला प्यार वाला, वो वाला नहीं बंदिशों वाला नहीं शक वाला नहीं, वो रखेंगे तो फिर रिश्ते टूटते हैं। तो कोशिश करें कि एक नारी को उसका खुला आसमान दिया जा सके, और देखिए सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा।
0: बिल्कुल
1: जरूरी है हम अपनी सोच बदले, स्पेशली उनसे कहना चाहूंगी जो आजकल यूथ्स हैं लड़के हैं जिनकी शादियां होती हैं या जो भी है, तो उन्हें सबसे पहले बदलना चाहिए। कहते हैं ना यूथ्स हमारे भारत का भविष्य है, तो थोड़ा सा अपने आप को अगर बदलेंगे तो बेहतर होगा।
0: एग्जैक्टली तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड आज है विमेन सेंट्रिक में बहुत कुछ नया एंड खास। तो क्या है नया एंड खास हम सब बताएंगे, लेकिन लेंगे यहाँ पर एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक, जो कि है गर्मी बहुत है और आप भी पानी पिए हम भी पानी पिए, हम बस यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। तो वापस हाजिर हो गई है आपकी सहेलियां करने आपसे बातें और बताने आपको कि भाई आज क्या निकला है हमारे रियल लाइफ फैक्ट्स में। मतलब क्या है आज का हमारा रियल लाइफ फैक्ट, आज हम क्या बताने वाले हैं। तो क्या मिलने वाला है आपको आज का राज, तो बताइए।
4: ओके, तो मेरे पास है 3 पॉइंट्स जिस पर हम रियल फैक्ट्स में बताएंगे। तो पहले मैं 3 पॉइंट्स बता देती हूँ, और एग्जैक्टली ना ये पूरा मेरे ऊपर ही आज निकल के आया है। वो ये निकल के आया है कि असफलता ही सफलता की नींव है।
0: ओके,
4: ठीक है, पहला पॉइंट
0: जी।
4: सेकंड पॉइंट इज दैट कि समय का सही इस्तेमाल। तीसरा है कल की चिंता ना करें। एंड फोर्थ पॉइंट इज शारीरिक भाषा। तो अगर हम इसको इंक्लूड करें, तो इंक्लूडेड में हम अगर एक में इसको निचोड़ के अगर हम बताएं, तो वो ये है कि असफलता ही सफलता की नींव है। मान लीजिए कि आप किसी काम में असफल हो गए। हर किसी का कोई ना कोई काम होता है यार, कोई जॉब का काम होता है, कोई घर का काम होता है, कोई किसी के पर्सनल रिश्ते भी होते हैं, कोई बच्चों की पढ़ाई को लेके होता है, कोई हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप उसमें असफल हो रहे हैं, तो वही आपकी सफलता की सच्ची नींव है। ठीक है
0: जी।
4: अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है और अगर वो बैठ गया, तो वो बैठता नहीं है ना,
0: नहीं
4: वो बैठता नहीं है। अगर वो बैठ गया तो वो असफल हो गया, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसको उससे एक मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छे से मार्क्स लाना है। तो वो असफलता में उसको सफलता की नींव मिली ना
0: जी।
4: ठीक है, तो दुनिया के सफलतम लोगों में से एक सुंदर पिचाई का मानना है कि सफलता असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक नया कदम है।
0: यानी कि किसी काम में अगर आप कई बार हारते हैं, देखिए इसको हम इस तरह लेते हैं मैम कि कई बार क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में ही कुछ चीजों में हारते चले जाते हैं। किसी किसी को आपने सुना होगा कि उनका बड़ा नेगेटिव सा होता है कि अरे नहीं यार, जिंदगी कट रही है और क्या बताएं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ अंधेरा ही होता है। किसी किसी को सुना होगा आपने ऐसे कहते हुए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हर हार एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप हार गए, आपसे कोई कमी रह गई होगी, लेकिन उतनी दुगनी उस ताकत से उठना है और फिर से उसे उससे भी बेहतर बनाना है। ये एक बूस्ट होना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ में, जैसे किसी चीज़ को जब प्रेस किया जाता है पीछे से, तो वो और अच्छी होती है। उसी तरह आपकी हर असफलता आपको पुश करती है थोड़ा सा कि जाओ और कोशिश करो और इस बार सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो उसे एक हार नहीं मानना है। ये मैं रिश्तों पर भी कहती हूँ। मान लीजिए किसी के रिश्ते बहुत खराब है, होता है कई बार, लेकिन उसको हारना नहीं है, उसको बस ये देखना है कि थोड़ी कहीं कुछ रह गई होगी, कुछ कमी, उसे हम पूरा करेंगे और बेस्ट में से भी बेस्ट बनाएंगे
4: जी। सेकंड पॉइंट इज दैट कि समय का सही इस्तेमाल। मशहूर फाइटर ब्रूस लिली कहते थे कि अगर आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। मतलब बहुत आज ऐसी बात सुनने को मिल रही है। मैं सभी लिसनर्स को भी बता देना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी बात आप तक पहुँचाते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
0: बिल्कुल।
4: और हमारा ही एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल से लेकर के आध्यात्म से लेकर के आपको आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उन सभी चीजों का विकास के साथ साथ में बातें होती है। क्यों अंशिका?
0: बिल्कुल मैम। और कहीं ना कहीं देखिए, जैसे पहले भी हमने कहा था कि बाग से फूल चुन चुन कर लाए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह हम भी आपके लिए चीजें चुन चुन कर लाते हैं।
4: बिल्कुल। समय को बर्बाद न करें क्योंकि जीवन समय से ही बना है। इस पर कुछ कहना है अंशिका आपको?
0: जैसा कि अभी कहा, जीवन समय से ही बना है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, समय बर्बाद न करने का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड भी बहुत मतलब इंसान के लिए जरूरी होता है।
4: मुझे एक बात कहनी है, हम अपना जीवन उन लोगों के पीछे बर्बाद कर देते हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल अंधेरे की ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा आज तो मेरे ऊपर ही निकला है कि हम उन लोगों के पीछे अपने समय को बर्बाद कर देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें अंधेरे में ही ले जाने की कगार पे है। हमें आज के समय को देखना है, हमें कल के समय को नहीं देखना है। आज जो हमारे पास हमारे अपने हैं, हमें उन्हें समय देना है और साथ ही साथ में हमेशा से खुश रहने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहना है।
0: बिल्कुल।
4: तो उसके बाद का है कि कल की चिंता ना करें, तो ये तो आपको सेकंड में ही आंसर मिल गया कि कल इतिहास है, कल रहस्य है, लेकिन आज एक तोहफा है, जो बीत गया उसे भूल कर आज पर फोकस करें।
0: बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कल क्या हो, जो हो चुका वो आपका पास्ट है, निकल गया, आप उसे नहीं बदल सकते हैं। जो होने वाला है वो हमें मालूम नहीं है। देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, कल क्या होगा पता नहीं, हमें मालूम तो है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से कि आज पर फोकस कीजिए, आज जो खुशियाँ हैं आपके पास, जो भी है, उनके साथ आप अपनी लाइफ को जिए, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें।
4: बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कि कॉन्फिडेंट में रहने के लिए चलते समय अपनी पीठ सीधी रखें और नजरें सामने रखें। धीमे और सचेत होकर चलना आत्मविश्वास को दर्शाता है। एग्जैक्टली, ये बॉडी लैंग्वेज है कि कॉन्फिडेंट में रहने के लिए हमेशा से सीधे चलना चाहिए और नजरें हमेशा सीधी होनी चाहिए। साथ ही साथ जब आप चल रहे हैं तो आपकी जो एक चलने की जो गति है वो धीमी और बिल्कुल सहज होकर चलें, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आगे चलने के लिए एक नया रास्ता प्रेरित करने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा रियल फैक्ट्स, जो कि मुझे लग रहा है कि आज के रियल फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आएंगे। आइए अब हम चलते हैं एक छोटू से टॉपिक की ओर और फिर लेंगे हम एक ब्रेक।
0: आज का टॉपिक जो कि हम दोनों ही आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा वेडनेसडे जो होता है वो होता है वुमेन सेंट्रिक। हम बात करते हैं हमारी सहेलियों के बारे में, सखियों के बारे में। आज कुछ पॉइंट्स जो मैं लेकर के आई हूँ वो ये हैं कि देखिए, आजकल जो आजकल जो लड़कियाँ यानी कि टीनेजर्स हो रहे हैं, जब वो पढ़ाई पूरी करके निकलती हैं, बाहर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज जो होते हैं वो हम सभी को देने पड़ते हैं। पहली जॉब एज अ वुमेन, आपकी पहली जॉब, पहला इंटरव्यू, तो लोगों को ये लगता है कि अरे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली लड़कियां थोड़ा सा घबरा जाती हैं वो, तो आज उनके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो चीज बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, कई बार होता है ना कि वो चीज इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हम बना देते हैं। उसमें से एक इंटरव्यू भी होता है कि हमें जॉब के लिए कहीं जाना है, हमने रिज्यूमे दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, और हमें जब इंटरव्यू के लिए कहीं जाना होता है तो पहले से ही लोग इतना कह देते हैं, अरे ऐसे मत जाना, ये मेकअप करके मत जाना, ऐसे ड्रेसअप होके मत जाना, अरे वहाँ बहुत तरीके के सवाल पूछते हैं, इतने सवाल पूछते हैं कि परेशान कर देते हैं, तो वो एक डर का माहौल बना देता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो फ्रेशर है, अभी लड़की जो है वो पढ़ करके निकली हुई है, तो उसे नहीं पता है कि एक प्रोफेशनल जॉब कैसे होती है, कैसे जाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि डर का माहौल ना बनाए आसपास। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बस ये मान के चलिए कि देखिए, इंटरव्यू होता क्या है, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, बस इतना है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ आती है वो रिसर्च आती है आपकी, कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या जिसे मान लीजिए आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, किसी कंपनी में जा रहे हैं, या जिस भी जगह आप जा रहे हैं और जिस विषय पर देने जा रहे हैं, उस विषय पर आपको अपनी पूरी पकड़ रखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं और आपको मैथ्स पढ़ाना है, ऐसा मान लेते हैं कि हम गए और हमने कहा हैज अ मैथ्स टीचर, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी, तो उस पर आपको पूरी कमांड लेके जानी है। वो उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, आप मुझे एट्थ को पढ़ा रहे हैं, सेवन्थ को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपसे एक बार पूछेंगे कि अच्छा आप एट्थ को पढ़ा लेंगी, तो मैम जरा ये करके बताइए कि ये क्या आप कर लेंगी, मतलब वो आपसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व सम्स, देखिए सम्स को सॉल्व करना तो सभी को आता है, 2 2 जा 4 होता है ये सभी को पता है, लेकिन वो आपसे ये पूछते हैं कि ये 2 2 जा 4 आप बच्चे को कैसे समझाओगे
4: और इजिली बच्चों को। और साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 और 2 4 होते हैं, भाई अगर आप UKG के बच्चे को LKG के बच्चे को समझाते हैं कि 2 और 2 4 होता है, तो आपका वो मेथड क्या होगा जो आप उसको इजिली वे में समझा सकें कि 1+1 2+2 या 1+2 कितना होता है। तो ये एक क्वेश्चन आते हैं और ऐसे इजी जो मतलब आपको लग रहा है कि ये जो ये बहुत इजी मतलब प्रश्न होते हैं, बट इंटरव्यू में क्या होता है कि हमारे सामने पूरी फैकल्टीज बैठी होती है,
0: जी मैम,
4: ठीक है, तो वहाँ कहते हैं ना कि आपने 3 इडियट जिसने भी देखा होगा, 3 इडियट मूवी जिसने भी देखी है, तो आपने देखा होगा कि जिसमें उसका एक फ्रेंड होता है, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी होती है, और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो व्हीलचेयर पे जाता है और वो बड़े ही कॉन्फिडेंट में जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी, नहीं ये तो लास्ट क्वेश्चन था, कि आपको अगर ये कहा जाए कि आप इस चेयर पे बैठे आकर के और आप मेरे से इंटरव्यू लें तो आपका प्रश्न क्या होगा, तो उस वो इतने अच्छे से जवाब देता है कि सर मेरी अभी उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी चेयर पर बैठूं और आपका इंटरव्यू लूं। ऐसे कई तमाम क्वेश्चंस पूछने के बाद में वो सेलेक्ट होता है और फिर उससे कहा जाता है कि अगर आपको रिश्वत लेने के लिए अगर कोई कहे तो आपने क्या करना है। उसने अपनी फाइल बंद कर ली होती है और कहता है कि ये जॉब मुझे नहीं चाहिए, बस इसी कॉन्फिडेंट के कारण उस वो जॉब पे रख लिए जाते हैं और लास्ट में उससे ये पूछा जाता है कि आप अपनी सैलरी कितनी लेंगे। सोचिए वो व्हील चेयर पे गया और उसने अपना इंटरव्यू क्रॉस किया, क्यों? सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट होने के कारण।
0: बिल्कुल, कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बड़ी, कहते हैं ना कि जब भी देखिए आपके पास अगर आपका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट होके जाना है और बस ये रखना है कि मुझे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनका सोच समझ कर जवाब देना। हाँ। इस तरह मत दीजिए कि उसने हवा में पूछा और आपने बिल्कुल हवा में आंसर, बहुत सोच समझ करके अच्छे से और बिल्कुल काम हो करके, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, बिल्कुल काम हो करके उसके क्वेश्चन का आंसर देना है।
4: बिल्कुल,
0: आजकल जॉब इंटरव्यूज में क्या होता है कि हम हार्ड स्किल पे बहुत काम करते हैं, अरे सारी फाइल्स अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ और साथ में अपने विषय के बारे में बिल्कुल पढ़ लेना एकदम, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के इंटरव्यूज में जो भी कंपनी होती है या जहाँ भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए जाते हैं, वो आपकी सॉफ्ट स्किल देखते हैं। हो सकता है अगर वो आपको बच्चे संभालने, मतलब बच्चों को आप क्लास में आपको पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि अगर कोई बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा परेशान कर रहा है तो हम चिल्लाने चीखने लगेंगे, उसे मारने लगेंगे, नहीं, हम वहाँ पे पेशेंस रखेंगे कि कोई बात नहीं, बच्चा है वो थोड़ी देर में संभल जाएगा।
4: बिल्कुल,
0: वो पूछते हैं आपसे कि सॉफ्ट स्किल क्या क्या है, वो टेस्ट करते हैं कि क्या आप में वो धैर्य है भी कि नहीं कि बच्चों को आप संभाल पाओगे। कुछ लोगों में तो मुझे लगता है शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए उनके रेज्यूमे रिजेक्ट कर दीजिए।
4: बिल्कुल, तो अंशिका हम इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने टॉपिक को और कंटिन्यू करने के लिए। और ऐसे तमाम आज हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि स्पेशली विमेन सेंट्रिक, और वेडनेसडे है यार, वेडनेसडे के दिन तो विमेन सेंट्रिक होता ही है। अच्छा, आज आपको मैं एक और एक शॉकिंग न्यूज बताऊंगी कल के लिए, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आपको पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहना है।
0: तो लिसनर्स आइए चलते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां फिर से आपसे बातें करने के लिए और आपको कुछ चीज़ों को बताने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने एक स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक, जो कि था हमारा कि किस तरीके से जो फ्रेशर्स होती हैं, मतलब लड़कियां, और वो फर्स्ट टाइम में अपना इंटरव्यू देने जाती हैं, तो सॉफ्ट स्किल का किस तरह से एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने आपको पहले जो पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि पेशेंस होना चाहिए। देखिए, यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि टीचिंग करने आप जा रहे हैं, बच्चों को आपको संभालना है तो पेशेंस होना चाहिए। हर एक जॉब में पेशेंस होना चाहिए। आजकल यूथ्स में देखा जाता है कि जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अच्छे प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं और हम इतनी जल्दी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। एक ये आ गया है आजकल थॉट कहीं ना कहीं यूथ्स में तो स्पेशली, कि हम बहुत जल्दी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि आपने न्यू जॉब ज्वाइन की है या आपको दो साल तीन साल चार साल पाँच साल जो भी हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा एक ये जो ना सक्सेस की एक वो नहीं होनी चाहिए कि मुझे इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाए। क्योंकि देखिए, जो भी इंसान सक्सेस है, अगर वो किसी बड़ी पोस्ट पर है, जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी का कोई सीईओ होता है, तो आप तो सिर्फ ये देखते हो कि अगला सीईओ है, या हम ये देखते हैं कि वो कमेटी मेंबर है या कुछ भी, उसकी एक ऐसी अच्छी एक पोस्ट होती है, तो हम सिर्फ वो पोस्ट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसने कितने साल का स्ट्रगल किया है फिर उसे वो पोस्ट मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ लोग तो इसलिए अपने जॉब से बैकआउट कर जाते हैं कि अरे नहीं यार, बहुत वर्कलोड है और वहाँ तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हम इतना नहीं कर पाएंगे वर्क स्ट्रेस की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। जब हमें ये मैनेज करना नहीं आता है मैम, तभी पे कहीं ना कहीं वो एक हमारी जॉब जो होती है वो प्रॉब्लम में पड़ जाती है। सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने सॉफ्ट स्किल को भी इंसान को जगाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बस एक हम ये सोचते हैं अच्छा सा रिज्यूमे होगा, हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी एक MBA की डिग्री ली है, अरे मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन तो यूं हो जाएगा।
5: एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको
4: ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अरे मेरी 90% है यार।
5: और कभी कभी चीजें ना ओवर कॉन्फिडेंट में खराब हो जाती है।
4: कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है कि आपको लगता है कि आपका यूं हो जाएगा, आपको सब कुछ आता है, लेकिन कई बार ये यूं वाला जो एक एटीट्यूड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे ले जाता है इंसान को, कि हमें लगने लगता है आई एम द बेस्ट। देखिए, कभी किसी में आप अपने फेवरेट हो बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स यू द बेस्ट, लेकिन कहीं जब आप जाते हो सीखने के, सबसे पहले तो हम जब न्यू जॉब में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें एक ये रखना चाहिए मन में कि मुझे सीखना है। आप जब न्यू फ्रेशर हैं मैम, हम कहीं जॉब करने जाते हैं, तो आजकल ये लोग नहीं रखते हैं मन में कि मुझे सीखना है। आजकल लोग रखते हैं अरे मैं जाऊंगा, मैं देखना मेरे ऑफिस में, मैं बस कुछ ही दिन में तो सब मेरी तारीफ करें। तो ये एक एटीट्यूड लेके मत जाओ। एक तो आप अभी पहले फ्रेशर हैं, आप फर्स्ट जॉब करने जा रहे हैं, तो आप कैसे मान रहे हो कि सब बेस्ट ही बेस्ट होगा? पहली बार कोई काम आप करने जा रहे हैं उसमें तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है मैम कि हम हमारी ही गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमें लगता है आई एम द बेस्ट। बिल्कुल नहीं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, उनसे सीखिए और सीख करके आगे बढ़ जाइए।
5: बिल्कुल,
4: जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो हमेशा लाइफ में बहुत अच्छा एक मुकाम पाते हैं। आप हर इंसान को देखिए जो एक बहुत बड़ा नाम है या जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने अपनी गलतियों से कितना कुछ सीखा है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जॉब पे एक बहुत पोलाइट होके जाइए कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे सीखना है, और जब एक पता है जब आप पहली जॉब से कुछ सीख लेते हो ना और फिर जब आप उसी में आगे बढ़ते हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने पीछे अपनी एक जर्नी छोड़ी है, जब आप कभी पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
5: एग्जैक्टली और आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में सभी लोग पता नहीं कहाँ हैं, मैसेजेस आने बंद हो गए हैं। नागेश्वर जी एंड मनी शर्मा जी, प्रबल जी और मनी शर्मा एंड प्रबल जी ऑल्सो, दीपांशी तिवारी जी और बस, तो बाकी सब कहाँ हैं जल्दी से आ जाएं, क्योंकि शो जो है वो अभी मतलब मिड पे पहुंच चुका है और अभी आप लोग नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी से आ जाएं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब क्या ही बता दें, आज विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है तो हम सब कुछ ने कुछ बहुत ही कुछ अच्छा सा महिलाओं के लिए लेकर के आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेक हो जाना चाहिए अंशिका, और एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद में हम आएंगे आपको आज का नेक्स्ट टॉपिक बताने के लिए। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको हमारे साथ बने रहना है।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है अंशिका। तो चलिए भाई नागेश्वर जी को हम जवाब दे दें कि क्या आप ब्रेक ज्यादा लेते हैं, बात नहीं करते हो श्रोताओं से, शायद ये भी कारण है लिसनर्स का नहीं आने का। तो लिसनर्स फ्रिक्वेंसी में हैं नागेश्वर जी, और आप सभी भी हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि हम लोग ब्रेक ज़्यादा कब ले लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली जो टॉपिक पे हम लोग बोल रहे थे, शायद आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया होगा, हम लोगों ने 12 मिनट कंटिन्यूसली पूरा एक टॉपिक लिया था। तो नागेश्वर जी, मैसेज टाइप करने से पहले एक बार आप ज़रूर से ज़रूर सोच लिया करें, ये मेरी आपको विनम्र विनती है। क्योंकि एक मैसेज टाइप आप तो कर देते हैं, पर उसका असर जो है ना वो काफ़ी लोगों पे आने लगता है। तो नागेश्वर जी से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल मैम, नागेश्वर जी से तो हम ये कहेंगे कि आप हमारे इतने पुराने लिसनर हैं, तो आपको और
5: आपको बेहद अच्छे से पता है,
6: आपको पता है कि हम टाइमली शुरू करते हैं, और रही बात ब्रेक की, तो हम उतने ही ब्रेक्स लेते हैं, आपको उतने ही सॉन्ग सुनाते हैं जितने की जेन्युइन है।
5: और अगर हम लोग कंटिन्यूअसली बोलते भी रहे तो भी अभी आप कहेंगे कि गाना आप लोग बोलते ही रहते हैं, गाना कब सुनाइए, गाना कब सुनाइए,
6: तो हम क्या करें। मतलब हमारी तो मैम ये वो जैसे सैंडविच में नहीं होती है, कभी कभी वो वाली कंडीशन हो जाती है कि ना इधर से ना उधर से।
5: बिल्कुल, तो नागेश्वर जी प्लीज ऐसा ना लिखा करें। और हमारी जो फीमेल लिसनर्स है, मुझे एक भी नहीं दिख रही है, ताकि वो हमारा फेवर कर सके। पता नहीं कहाँ इस समय रहती है आशु जी, प्रीति जी एंड बाकी सभी लिसनर्स है। कम से कम एक जब फीमेल कोई लिसनर आती है ना, तो एक सपोर्ट हो जाता है हम सभी को।
6: बिल्कुल,
5: चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं।
6: अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि देखिए आजकल महिलाओं को क्या है ना कि काम की ज़रूरत कहीं ना कहीं हम सभी को होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो सोचती हैं कि घर बैठे ही कुछ काम किया जा सके। तो हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं उनमें कुछ जैसे कि घर के जो अचार बनते हैं वो बहुत अच्छे, कोई कोई महिलाएं होती हैं वो बहुत अच्छे बनाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी दादी थी, वो बहुत अच्छे ही अचार बनाती थी। तो इस तरीके के अगर आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि अचार का शुरू करना चाह रहे हैं, पापड़ शुरू करना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप घर से ही बना करके आप ये सोच रहे हैं कि हम एक छोटे, बहुत छोटे पैमाने पर,
5: छोटे से अमाउंट में बड़ा व्यवसाय
6: उसे शुरू करें, तो आज उसे शुरू करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। लेकिन वो टिप्स जो है वो आज आपकी सॉफ्ट स्किल से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा बिहेव, हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हमारे बिजनेस को असर करता है, और शुरू करने के लिए आपका बिहेवियर जो है वो एक पोलाइट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस में, मतलब जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं।
5: बिल्कुल,
6: देखिए कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन जो होता है मैम, वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि मेरा मुनाफा कितना हो रहा है, मुझे कितना फायदा हो रहा है।
5: हाँ।
6: वो उसको सारी चीजें चाहिए कि एक अगर हम किसी कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं कोई चीज, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि अगर देखिए जब एक बार कोई सामान अच्छा हम 10 दुकानें जाते हैं क्यों, आप जब आपके पसंद का कोई सामान चाहिए होता है तो आप उसके लिए 10 दुकान जाते हो, लेकिन लेते हो वही जो आपको पसंद है। स्पेशली खाने की चीज़ों में हम बात करें कि अगर हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम 10 दुकान घूमते हैं, लेकिन लेते क्या है, वही एक सामान जो हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि हमें उसके टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी चीज़ें पसंद आती
5: है। बिल्कुल।
6: और पसंद वही चीज़ आती है जब वो अच्छी होती है। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सस्ते दे रहे हैं। सस्ते देने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, खराब मिल रही है, तो थोड़ा ना इंसान ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप शुरू कर रहे हैं, कम निवेश में आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, तो उसके लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर कोई महिला घर से बिजनेस शुरू कर रही है तो उसे अपने घर के कामों में और अपने बिजनेस में दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है कि घर के काम भी हो जाए और बिजनेस का काम भी हो जाए। क्योंकि मान लीजिए, मान लेते हैं मैम कि 5 से 6 बॉटल से आपने शुरू किया कि हम अचार बनाएंगे, और 5 से 6 बॉटल मान लीजिए आपको, तो वो बनाने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए समय चाहिए मैम। और कई बार घर की महिलाओं को क्या होता है ना कि उनको प्रॉपर एक समय नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप समय लीजिए अपना। दूसरी आती है बात कि पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैम। कई बार कई लोग तो इस तरीके से पेशेंस खो देते हैं कि मतलब उनको बस ये लगता है कि हम बिज़नेस शुरू करें और हमें एक साथ 100 बॉटल के ऑर्डर्स मिल जाएं। जब कुछ लोगों को कम ऑर्डर्स आते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत कम आ रहा है, मतलब हमने तो ऐसे ही शुरू कर दिया, एक कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ज़रूरत है कि अरे आएगा, एक पेशेंस रखिए और उसके साथ एक होप भी रखिए।
5: और मुझे लगता है अंशिका कि सबसे पहले तो हम अगर 1 रुपए से कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, मान लीजिए आपने 10,000 से कोई भी व्यवसाय शुरू किया, और आजकल तो सिर्फ ये पापड़ चिप्स वाला काम ही नहीं रह गया है, अब तो क्या हो गया है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा करने लगे हैं। तो ऑनलाइन में जैसे आपने 10,000 का आप कोई भी सूट वगैरह का काम हो गया, साड़ी का काम हो गया, अब तो आपने फेसबुक पे देखा होगा कि कितनी महिलाएं ये काम कर रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है।
6: जी।
5: लेकिन अगर हम मान लीजिए कि 10,000 से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा काम वो 1 लाख रुपए तक पहुँच जा रहा है, 5 लाख तक पहुँच जा रहा है, लेकिन उसके लिए जैसा कि अभी बताया गया, पेशेंस के साथ में हमें हर एक काम में सफलता मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको सच्चाई और पेशेंस, ये दोनों जरूरी है कि आप उसको साथ में लेके चलें।
6: बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग, कि आप जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे आप अच्छे से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए उनसे आप टच में रहिए,
5: ये सबसे बड़ी बात अभी है कि क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। कई शॉप पे आपने जाके देखा होगा, मतलब सभी के साथ अमूमन होता है महिलाओं के साथ में, कि अगर हम कहीं भी किसी शॉप पे जा रहे हैं तो क्या होता है कि हम वहाँ से जब कुछ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होके आते हैं तो क्या उतरते समय क्या कहते हैं, इनकी दुकान पे तो अब मैं कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि इनका नेचर बहुत खराब है, इतना रूड नेचर है, मतलब हम पैसे दे करके खरीदने आए हैं, हम फ्री में लेने नहीं आए हैं। तो हम क्या हमारे मुंह से निकलता है कि हम इनकी शॉप पे अब कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा, ये कोई भी आप व्यवसाय शुरू करें, सबसे पहले एक बिहेवियर स्किल जो है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसा कि नागेश्वर जी ने देखो अभी लिख दिया और ऊपर से इतना बड़ा बड़ा मैसेज कर रहे हैं अभी कि नहीं मैम, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे लिए तो आप सब बराबर हैं, ब्रेक लेना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तो एक कारण बताया है कि ऐसा हो सकता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो, हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, चाहे ब्रेक में सॉन्ग हो या कोई टॉपिक पर बात कर रहे हो, मैं बराबर सुनता हूँ और आपकी और अपनी प्रतिक्रिया में बराबर देता हूँ। थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको मेरी कही हुई बात समझ में आई और आपकी कही हुई बात मुझे समझ में आई।
6: तो देखिए कहीं ना कहीं यही कम्युनिकेशन है कि अच्छा, पहले हम किसी इंसान से जब बातें करते हैं तो मान लीजिए आपने पहली मुलाकात की किसी से भी की, तो पहली मुलाकात में वो इंसान जैसा होता है, जैसे बातें करेगा, हम उसके लिए वैसी ही तो राय बनाएंगे ना। कोई आपसे अगर रूडली बात करता है, भले ही वो उसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रूडली बात करता है तो हमारे मन में एक छवि बन जाती है, अरे ये रूड है। तो उसी तरीके से हमेशा अपने शब्दों को, और स्पेशली जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, उस वक्त तो आपको ऐसा एक बिहेव रखना चाहिए कि वो एक बार नहीं, अगर एक बार जाए तो वो जाकर के और लोगों से कहे कि अरे उनके यहाँ जाओ, भैया बड़े अच्छे से बातें करते हैं और उन्होंने तो मुझे बड़ा अच्छा सामान भी दिया, हम फिर से आएंगे और वो चार लोगों को लेकर के आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं बिहेव अपना जो है वो पोलाइट रखना बहुत जरूरी है, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो या वुमेन है, बिजनेस वुमेन
5: एंड स्पेशली मैं ये कहूँगी खास करके आजकल की जो बिजनेस करती हैं घर से बैठ करके व्यवसाय करती हैं, तो अंशिका मैंने देखा है कि वो बिजनेस ना जो वुमेन्स करती हैं ना उनका बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत स्वीट होता ही है
6: जी,
5: क्योंकि उनको पता है ना कि अगर हम रूट बनेंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा,
6: कोई नहीं आएगा
5: मेरे से कोई सामान नहीं लेगा। बट कोई ना कोई ऐसे होते हैं उसमें उनके बावजूद भी होते हैं। आरके जी गुड आफ्टरनून एंड शुभ दोपहरिया, कैसे हैं आप?
6: आरके जी कैसे हैं आप फटाफट से बता दीजिए। तो चलिए लिसनर्स, जैसे कि आप सभी ने अभी भी जाना कि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि आपकी देखिए कोई भी बिजनेस करने से पहले या इससे पहले हमने आपको जो भी टॉपिक्स बताए, तो आजकल क्या होता है ना कि

0: होगा। तो ऐसा नहीं है, आप किसी आज जो बहुत बड़ा नाम है या जो छोटे बिजनेस करते हैं आप उनसे भी पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि शुरुआत में कितने सारे प्रॉब्लम्स आई लेकिन जो कि हमने फेस किया तो आज हमने अपना एक नाम बना लिया है। तो कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने के लिए आपको अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को लाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि जैसे अच्छा एक लाइन कही जाती है कि अगर आपको पानी पीना है, मान लीजिए तालाब में पानी भरा हुआ है मैम, और अगर आपको पीना है तो ऐसा तो है नहीं कि तन के खड़े रहेंगे हम और पी लेंगे,
1: पी लेंगे,
0: कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है आपको। आपके हाथों में आप अंजरी बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं फिर पीते हैं, लेकिन उसके लिए आपको झुकना पड़ता है,
1: झुकना पड़ता है।
0: तो क्यों हम अपने अंदर ये रखते हैं कि अरे नहीं मैं तो मैं।
1: देखिए कोई भी छोटा बिजनेस हो, 100 की सीधी बात है कि छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आप जॉब में हैं, आप टीचिंग लाइन में हैं, आप एनीथिंग, आप घर पे भी हैं, आप एक फैमिली में भी हैं, जब तक एक ईगो को किनारे रख करके आप किसी भी रिश्ते को में आप झुकेंगे नहीं, वो रिश्ता आपके लिए बना ही नहीं है फिर तो। आप ये जान लीजिए फिर आप ईगो को अहमियत दे रहे हैं और रिश्ते तो फिर ख़राब होंगे ही होंगे, और जहाँ रिश्ते ख़राब हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि वो इंसान फिर बिजनेस क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो आरके जी लिख रहे हैं, समदा दी लुक एट मी प्लीज, मैंने देखा आपको आरके जी एंड मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी। तो चलिए अंशिका, अब हम लोग क्या नागेश्वर जी इजाजत है एक ब्रेक लेने की? तो
0: हाँ, हम वैसे ही करते हैं, मतलब से पूछ लेते हैं कि मतलब क्या
1: नागेश्वर जी, आरके जी, कमल नयन जी, प्रबल जी, मनी जी, और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें, और म्यूजिकल ब्रेक के बाद आएंगे, हम भी पानी पी लें और आप भी पानी पी लें, पानी पीने के बाद आएंगे और फिर से एक टॉपिक को हम आपके सामने रखेंगे और फिर करेंगे आप सभी से टाटा बाय बाय। तो आप बने रहें हमारे साथ, इस प्यारे से खूबसूरत से गाने को सुने, इंजॉय करें, हम बस यूं गए यूं आए।

0: एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। चलिए अब हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे फिर से बातें करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे ना कि क्या है हमारे पास। भाई ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हमारे पास कुछ खास है। खास क्या है ये जानने के लिए आप भी होंगे बहुत बेताब। तो चलिए बेताबी को खत्म कर देते हैं मैम।
5: हाँ जी बिल्कुल, बेताबी। व्हाट बेताबी?
4: बेताबी वो होती है ना कि जब मतलब इंसान को क्यूरियोसिटी होती है जानने की।
5: हाँ,
4: जिज्ञासा।
5: जिज्ञासा
4: तो खत्म कर देते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो महिलाओं को लेकर के ये है कि ये जो मौसम है, मतलब गर्मी कह लें या गर्मी वाली।
5: हाँ
4: जी मैम, कितना प्यारा गा रही थी हम।
5: तुमसे प्यार हुआ है।
4: वाह।
5: अरे आज आप लोगों को एक न्यूज भी देनी है हमें भाई। मैं कल मॉर्निंग में आ रही हूँ, आरके जी, नागेश्वर जी और बाकी सभी लिसनर्स, कि मैं कल मॉर्निंग में आ रही हूँ और कल गुड मॉर्निंग गोंडा विद आरजी समता।
4: ओह वाओ, ये तो हमारे लिसनर्स के लिए ब्रेकिंग।
5: अंशिका को भी मैंने ये सरप्राइज नहीं बताई थी, तो मैंने अभी बताया इसीलिए उसने बोला अरे वाह, इसको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सुन सहेली में नहीं आती हूँ। ठीक है, अब नहीं मुँह खुलेगा।
4: चलिए खैर आगे बात करते।
5: क्या आप उसका जवाब दो ना।
4: नहीं, मतलब मुझे अच्छा क्यों लगेगा, आपने ऐसे क्यों कहा?
5: इसको अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं आती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ।
4: अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि इनको बहुत अच्छा लगता
5: है। जो दिमाग में होगा वही तो जुबा पे आएगा, आपके दिमाग में यही चल रहा है इसीलिए आपको वो लगा। मैंने अभी कहा अंशिका को अच्छा नहीं लगता है जब मैं सुन सहेली में नहीं आती हूँ।
4: ओके, हाँ बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगा आपने ये, मतलब मैंने उल्टा सुन लिया इसलिए मैं चुप हो गई थी।
5: तो सुनना तुम्हारी, सुनने तुम्हारी फितरत में है ही नहीं, और अगर सुनती भी हो तो गलत सुनती हो। जी कंटिन्यू टू टॉपिक।
4: कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए अब
5: भूख का समय है ना इसीलिए।
4: हाँ, भूख के साथ कुछ और भी हावी है मैम दोपहर का टाइम है, इसीलिए
5: प्यास, नींद।
4: यस
5: हाँ, भूख प्यास और नींद। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के ना।
4: न जाने कहाँ दिल खो गया।
5: कहीं नहीं खोया, यहीं पे,
4: यहीं पे तो होता है मतलब। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आज।
5: हाँ नागेश्वर जी, आज आप मॉर्निंग में मत आइए।
4: क्यों
5: आरके जी? क्यों? मुझे लग रहा है कि आप आरके जी नहीं है, क्योंकि ऐसे आरके जी बेहुद्दा कभी नहीं प्रश्न करते हैं मेरे से।
4: ये
5: पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
4: जी मैम।
5: और समता दीदी लुक एट मी प्लीज, ये मैसेजेस जो है ना वो आप आरके भैया कभी नहीं करते हैं। पहली बात तो मुझे लग रहा है उनकी डीपी चुरा करके किसी ने लगाई है, और आप मॉर्निंग में मत आइए, जबकि आरके जी हमेशा से उनकी ये मॉर्निंग में ही उन्होंने सुन करके समता जी को फेवरेट बनाया था। ठीक है, तो नागेश्वर जी हाँ आज आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल मैं आऊंगी। आज उन्नति आई थी और कल मेरा शो है मॉर्निंग में, तो आरके जी को अगर इंतजार नहीं है ना सही, लेकिन बाकी मेरे लिसनर्स को मेरा इंतजार रहता है, तो मैं आऊंगी कल आपसे मॉर्निंग में मिलने के लिए।
4: तो चलिए इस प्यारी सी गुड न्यूज के साथ हम एक गुड न्यूज, मतलब एक अच्छी चीज भी जान लेते हैं, जो कि ये है कि क्या होता है ना कि इस उमस भरी गर्मी तो हम नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं ये वेदर ऐसा होता है कि हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है,
5: बहुत ज्यादा
4: हमारे बिहेवियर में हो जाता है। हाँ, हाँ। कि कोई कुछ कहता है तो लगता है एक अजीब सी एक वो उठती है।
5: तुम कहने वाली थी कि बस एक एक एक खींच के उसको लगा दे,
4: अब
5: है ना। पर हमसे अगर छोटा होता है तो ना, बड़ा होता है तो थोड़े
4: तो फिर मतलब मैनेज करना पड़ता है।
5: फिर मैनेज

0: करना पड़ता है।
1: तो चलिए, खैर कहने का सेंस ये था कि ऐसा होता है। अगर आपके साथ ये बहुत ज्यादा होता है तो इसे ठीक करने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हम बताना चाहेंगे। जो कि सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि दोपहर के समय में 15 से 20 मिनट आपको अपने दिमाग को आराम देना चाहिए।
0: ओके, कैसे?
1: ऐसे कि आप चाहें तो आंख बंद करके आराम से बैठ सकते हैं,
0: सो जाएं।
1: हाँ, सो जाएं, मतलब जैसे कि बहुत लोगों को ये होता है ना कि मुझे नींद नहीं आती है
0: दिन में,
1: तो आप आराम से आंखें बंद करके सिर्फ कुछ देर के लिए बैठ जाइए।
0: हाँ।
1: और आलतू फालतू चीजें मत सोचिए। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि आंख बंद करने पे दुनिया भर की जितनी भी बातें होती है उनके दिमाग में घूमने लगती है, तो वैसा नहीं करना। आंख बंद करके बस आराम से एक ये रखना है कि थोड़ा सा एक झपकी टाइप से आंख बंद कर लीजिए आप। और जिन्हें अच्छी नींद आती है, मतलब जो सो सकते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप आधे घंटे की एक सो जाइए, आधे घंटे।
0: बिल्कुल,
1: इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सोने से ही माइंड रिलैक्स क्यों होता है, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, अच्छा आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं किसी बात से और हम सोचते हैं कि ध्यान हट जाए इस बात से, बहुत परेशान कर रही है ये बात मुझे, तो मन में आता है अच्छा चलो लेटते हैं, और लेटते ही क्या होता है कि आप सो जाते हैं। कभी ये नोटिस करिएगा कि परेशानी की स्थिति में नींद बहुत तेजी से आती है। वो इसलिए होता है कि हमारे माइंड में जो नसें होती है ना, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनमें खिंचाव आता है।
0: हाँ।
1: और आराम कब मिलता है, जब हम सो जाते हैं। तो इसलिए जब बहुत ज्यादा ऐसी चिड़चिड़ी वाली फीलिंग हो तो आप एक नींद लेने की कोशिश।
0: थैंक यू सो मच कमल नयन जी एंड प्रबल जी और नागेश्वर जी लिख रहे हैं, समता मैम जब आप सुन सहेली में नहीं आते हैं तो अंशिका मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं लेकिन थोड़ी सी डरी डरी रहती हैं, जब आप साथ में नहीं रहते हो तो डरती है।
1: तो ये डर नहीं, मतलब डर जैसा नहीं कहूंगी, क्या होता है ना, देखिए अब दो सहेलियां हैं, अगर एक कोई नहीं रहती है तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो खालीपन लगता है ना, और साथ साथ में ये भी लगता है कि अगर मैंने कुछ किया तो दूसरे दिन तो फिर मुझे।
0: हाँ।
1: तो इसलिए थोड़ा सा तो रहता है, वो ये नहीं
0: वो
1: है,
0: होना चाहिए,
1: वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए बड़े साथ में नहीं होते तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है।
0: प्रबल जी लिख रहे हैं कि अगर आप मजाक नहीं करते तो शायद समता मैम जी आपका नाम भी नहीं लेती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लिसनर्स के नाम लेते हैं, उनका सम्मान करना हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बस कभी कभी लगता है कि ऊट पटांग वाले मैसेजेस ना आए, जैसे नागेश्वर जी ने अभी किया था और आरके जी ने किया था, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, बट कोई नहीं, हम लोग को मैनेज करना आता है। और जब आप लिख देते हैं ना कि हम मजाक कर रहे थे तो वो फिर वो सारी चीजें धुल जाती हैं, उस पर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं,
1: भूल जाते हैं। छोड़ो आटा। तो आज ये चीजें हमने आपको बताई और जाते जाते मतलब 54 हो रहा है, तो आज के लिए जाने वाला एक चीज है जो मैं जाते जाते आपको बस एक मिनट लूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि हमारा फीमेल्स का जैसा कि डे होता है आप सभी को पता है और हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो फटाफट से आज के लिए जो एक मोटिवेशन हम छोड़ के जाना चाहते हैं वो अरुणिमा जी की स्टोरी से मैंने आज कुछ लिया है। आप सभी जानते हैं कि अरुणिमा, जिनकी स्टोरी हम सब जानते हैं कि एक ट्रेन हादसे में अरुणिमा सिन्हा जी, जिनका की पैर जो है वो उस हादसे में गंभीर रूप से कट गया था, तो आज उनका एक थॉट मैं लेना चाहूंगी, जाते जाते आप सभी को बताना चाहूंगी, आई होप आप सभी इससे मोटिवेट होंगे, कि वो ये कहती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके शरीर के अंग कैसे, मतलब वो उनका मानना ये है कि शरीर से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, सोच से होता है। तो आज के लिए ये थॉट हम छोड़ कर जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि वुमेन सेंट्रिक होता है हमारा, हम अभी आपको बाय करने आएंगे, लेकिन ये एक जाने जाने वाला थॉट है कि आप सभी इस पॉइंट पर सोचिएगा कि शरीर से नहीं, इंसान सोच से बड़ा होता है,
0: सोच से बड़ा होता है, और खूबसूरत शरीर नहीं होता है, हर किसी का स्वभाव और आत्मा होती है। अगर दिल से कोई सुंदर है ना तो मुझे लग रहा है कि फिर उसका बाहरी जो लुक है ना वो मायने नहीं रखता है,
1: बिल्कुल
0: दिल का सुंदर होना ज्यादा मायने रखता है। तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और इसी गाने के बीच में हम आएंगे आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अच्छा तो हम अच्छा, चलते हैं भाई, कल हम मिलेंगे मॉर्निंग में और सुन सहेली में फिर से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।
2: बाय बाय दोस्तों।
3: जुमेरात को
0: हाँ हाँ आधी रात को
3: कहाँ।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
1: अरे सुना?
4: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा
0: पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

आज ही एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और वक्त हो चला है आपके अपने फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा का। और मूड एनहेंस करने का कारण है भैया, कारण है ये धूप और उसमें चलती हुई ये हवाएं, और उस बीच से गुजरते हुए आप और हम। हाँ जी, और ये धूप खाली हमारे, हाँ जी, मौसम की बात मैं नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ उस जगह की जहाँ पे आप काम करते हो और आपका हुआ है लंच ब्रेक, टी ब्रेक या समथिंग वाला ब्रेक। हाँ जी, और उस ब्रेक के दौरान आपने ट्यून करके रखा हो रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और साथ ही साथ में आपने लगा दी है अपने अपने वाले गानों की झड़ी और बना दिया है सदाबहार नगमों से हमारे शो को रापचिक। और इस रापचिक को और रापचिक करेंगे कैसे, अगर कोई रह गया इससे दूर, अछूता रह गया थोड़ा सा, और वो चाहता है कि हम भी भैया अपने गानों को ट्यून करवा ले, तो बता दें कॉल इन नंबर वही है आपका स्टूडियो वाला 6393316429, यानी कि 6393316429। बखूबी आप इसे रूबरू हैं, और जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो नहीं भी हैं तो हमने बता दिया है, तो आप अपने गानों को ट्यून करवाते रहिए, कॉल मिलाते रहिए। फिलहाल हम चलते हैं आज की सबसे पहले फरमाइश और डिमांड की ओर, और ये फरमाइश और डिमांड कहीं और से नहीं आई हुई है, आई हुई है हमारे, जी हाँ, मुंबई के गोरे छोरे यानी कि रिजु जी की ओर से। और आज फिर से ये सुनना चाहते हैं क्या, वही वही वही वही पंजाबी बीट। हाँ जी, तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये पंजाबी बीट का तड़का लगाते हैं आपके शो में, हम और आप साथ मिल करके बने रहिए ऑन योर फेवरेट फेवरेट शो कॉलर ट्यून गोंडा।

रास्ते छा गई। क्या बात भाई, व्हाट अ पंजाबी बीट। और बड़े दिनों बाद ये गाना हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ रिजो जी की डिमांड पे। भाई रिजो जी क्या तड़का लगाया है शुरुआत में ही, आपने क्या गाना बजवाया है, मजा आ गया। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये अभी कुछ कम नहीं है जनाब, मोहब्बतें मूवी का वो सॉन्ग जो हर दिल को धड़काता है और जब भी बजता है ना तो बस चलते चलते कहीं चला जाता है। अभी तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा इशारा हम दे देते हैं अपनी साइड से। तो फिलहाल इशारों को खत्म करते हैं, इशारों में दिल देने लेने की बात खत्म करके आपको पहुंचाते हैं उस नगमे की ओर जो कि डिमांडेड है हमारे प्यारे कमल नैन जी की ओर से। और सुनते हैं कि ये क्या सुनना चाहते हैं। आपके 3 से 4 के सफर में मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा रेडियो 93.6 एफएम गुंडाशहर की धड़कन पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। क्या गाना है, आहा मजा आ गया, जैसा लग रहा चाय की पहली चुस्की हो। एंजॉय करते रहिए।

प्यार क्या होता है ये कभी कोई उससे पूछे, जो बस पागलपन में कहीं गुम सा जाता है। उसको एहसास तो बहुत सारे होते हैं पर वो कुछ कह नहीं पाता है। जब आप बेबाकी के को छोड़ के अवाक्य से हो जाएं और किसी से कुछ भी ना कह पाएं, अकेलेपन में यूं ही मुस्कुराएं और चाय में चीनी की जगह मूंगफली के दाने उठा के डालने को हो तत्पर, तो आप समझ जाइएगा कि प्यार हो गया है आपको जनाब। हाँ जी, प्यार हो गया है। फिलहाल सुनते हैं हम अपने कमल एन जी से के द्वारा फरमाया गया, यानी फरमाइश किया गया ये सॉन्ग। आइए मिलकर।

है भाई, हमारी परिभाषा में प्यार क्या है हमने बता दिया, क्योंकि समटाइम्स हमने भी ऐसी हरकतें की हुई है, तो भाई आपसे साझा करने में कौन सी बुराई है। फिलहाल बढ़ेंगे उस वाली डिमांड की ओर जो क्या हुई हमारे पास में सुखी राम जी की ओर से, और सुखी राम जी को हम बना देते हैं धनी राम, और इसको हम ऐड कर देते हैं अपने प्यारे भंग के नशे में घूमने वाले हाँ जी हमारे नागेश्वर धाकर जी को। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, डिमांड बहुत सारी और बड़ी ही प्यारी प्यारी है।

मिठाई भंग के नशे में हो गया गुम। लेकिन एक बात तो सही है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए या किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए तो वो ऐसा नशा होता है ना, फिर किसी और का नशा या फितूर चढ़ता ही नहीं है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है हमारी प्यारी अनुष्का जी का, और उनका कहना है आप इतने दिनों से गायब थी इसलिए अब हम क्या ही बताएं, हमने फरमाइशें ही नहीं की। हमने कहा ऐसा क्या, हम गायब ही हुए थे, गए नहीं थे इस पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर ही थे इसलिए वापस से लौट के तो आना ही था। देखिए चुंबक और लोहा कितनी देर तक दूर रह सकता है, जब तक वो संपर्क में नहीं आता तभी तक ना, उसके बाद तो एक दूसरे से चिपक ही जाना है उन दोनों को, जैसे हमारी और आपकी जोड़ी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे और बड़े ही दुलारे, हाँ जी, प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी की है। और उसके बाद हम आएंगे आप लोगों के मैसेजेस की ओर, थोड़ा सा झांक लेंगे और झांक के देखेंगे कि हमने कितने बवाल मचा अपनी लाइफ में और आप कितने अच्छे हैं। भाई बवाल तो मैं मचाती हूँ, आप तो अच्छे रहते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। फिलहाल चलते हैं इस डिमांड की ओर, और उसके बाद आज बहुत सारी डिमांड आई हुई है बिना किसी बकवास के, आजकल गाने सुनेंगे क्योंकि गाने हैं ही इतने फैंटास्टिक। हाँ जी बने रहिए 3 से 4 के सफर में, मैं हूँ आपकी होस्टिंग दोस्त आज आकांक्षा, और वक्त हो चला है 3:19, बहुत ही कम वक्त है हमारे पास में, लेकिन इस पूरे वक्त को यूटिलाइज जरूर करवा देगी आपकी आज आकांक्षा। बने रहिए और सुनते रहिए ये नेक्स्ट वाली डिमांड। हाँ जी

भाई ये तो बड़ी ही दिक्कत की बात है जो हमारे पंडित जी ने पूछ लिया कि भैया इन्हें प्यार कहाँ से शुरू करना है। तो मैं बताऊंगी, आप अपने काम से शुरू कर सकते हैं, अपने आप से शुरू कर सकते हैं और सुबह उठ के उस विचार से शुरू कर सकते हैं जो कि आपके जहन में सबसे पहले आता है। हाँ, और जाहिर सी बात है, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या याद करते हैं? उठ के अपने काम पे जाना है भाई। और काम अगर किसी को प्यारा नहीं है तो समझ लीजिए उसका वारा न्यारा होना उचित नहीं हो पाता है। समटाइम्स वो ऐसे ही रह जाता है जैसे वो रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता अपनी लाइफ में। फिलहाल हमें याद आ गया कि हमें भी आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए मुलाकात करना है किससे? आप सभी से, आप सभी के मैसेजेस से, आप सभी के पैगाम से। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी जो हमें जहां कहीं से भी जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी का, उन सभी लिसनर्स का जो हमें मैसेज भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते, पर लगातार हर दिन सुनते हैं छुप छुप के। और सच्ची बताऊं, छुप छुप के किया गया काम कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है छुप छुप के। हाँ जी, फिलहाल चलते हैं उस ओर जहां पे कोई छुपा नहीं है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और वो है आपका अपना चैट बॉक्स, यानी कि एप्लीकेशन में जो चैट बॉक्स मिलता है आपके रेडियो ज्ञानस्थली के, उसमें। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे दिख रहा है वो हमारे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किसका है, किसका? नागेश्वर धाकर जी का। उन्होंने समता जी को बाय बोला है जी, शुक्रिया। नीना जी है भाई, और उसके बाद में उन्होंने प्रबल जी को बोला मैं आ गई हूँ। अच्छा, आप लोग आपस में कितने प्यार से बात कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे रिजू जी हैं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट मैसेज जो मुझे दिख रहा है हमारे कमल नैन जी का है नीले लिंक के साथ में। आर के श्रीवास्तव जी हैं गोंडा से, लिखते हैं गुड आफ्टरनून आकांक्षा बेटा, मेरा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, मतलब मुझे छोड़ करके सबको प्राप्त हो, थैंक यू, और हंसती रहो मुस्कुराती रहो। अब इन्होंने मेरी वाली की है। हाँ, सुबह का आपका प्रोग्राम सुना तब से आपका भक्त हो गए हैं हम। अच्छा, खूब तरक्की करो बेटा, खूब नाम कमाओ और मुझ जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते रहो। जय हिंद जय भारत। और उसके बाद में इन्होंने मुझे वत्स भी बोल दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव और आपके। जी हाँ, हम चरण वंदन करते रहेंगे सदैव के लिए ताकि आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर जिसमें हमारे कमल नैन जी ने हमें गुड आफ्टरनून बोला है, आपको भी गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, आपका भी स्वागत है। बड़े दिनों बाद भाई हमारी एनजी भी हमारे बीच में आ गई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अपने भूरे वाले दिल के साथ। भैया भूरे वाले दिल का मतलब क्या होता है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और नीना जी कहती है आकांक्षा जी नमस्ते, नमस्ते, हाँ जी, रहिए हंसते हंसते एकदम हमारे जैसा। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो अब्दुल मुजीब जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और अब्दुल मुजीब जी लिखते हैं तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। ओहो, क्या बात है भाई, बड़ी ही गहरी बात कह दी आपने कि भाई अब क्या ही बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर, और गुड आफ्टरनून एनजी ने हमसे बोला है, गुड आफ्टरनून आपको भी। धर्मेंद्र मोहन भाटी जी हैं आवास विकास कॉलोनी गोंडा से, और आवास विकास कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर्स का स्वागत करते हैं। और हमारे चिंटू जी अगर कहीं हमें सुन रहे होंगे तो अभी प्रकट हो जाएंगे मुझे मालूम है, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, खुश रहें मस्त रहें इतना ही काफी है। कॉलर ट्यून गोंडा सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्ते, आकांक्षा जी बेस्ट ऑफ लक। वैसे वे बेस्ट ऑफ लक किस चीज़ के लिए है? वैसे मैं तो हमेशा ही कहूंगी कि मैं ही बेस्ट हूँ, और हर किसी को मानना चाहिए कि वो बेस्ट है अपनी जगह पे, हर कोई बेस्ट ही है, ईश्वर की बनाई हुई हर एक अलंकृति, सब कुछ बेस्ट है, बस यही इतनी कमी रहती है कि हम अपने आप को जान नहीं पाते। दूसरों के नजरिए से मत देखिए, खुद के नजरिए से देखिए आप कितने खूबसूरत है। एक बार आईने के सामने मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा देखिए, और सबसे सुंदर चेहरा जानते हैं कौन सा होता है? जब आपकी आंखों में आंसू हो और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, बाय गॉड आपको सैल्यूट होगा उस टाइम पे हमारी ओर से। मान लीजिएगा अगर अभी कभी भी आपकी आंखों में आंसू आए और आईना देखिएगा और उसके बाद मुस्कुराइएगा और हमें याद करिएगा, क्योंकि हम सामने से आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, सलामी ठोक रहे होंगे। कारण है, हिम्मत वही कर सकता है जो हिम्मती होता है, हर कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी सावंत जी मुंबई बोरीवली से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अनुष्का जी आगे श्रावस्ती से लिखते हैं गुड आफ्टरनून आपकी उर्फ गुलाब जामुन मैम जी, आपने हमारा मिठास बढ़ा इसके लिए, थैंक यू सो मच, और आई मिस यू आल्सो। बिल्कुल बेशक। और बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, काफी एंजॉयमेंट दिख रहा है आप लोगों के बीच में और क्राउड हमारे बीच में है। और ये क्या भाई, हमने अकेले ही नहीं याद किया है, हमारी एनजी ने भी हमारे रवि जी को काफी याद किया, लग रहा है काफी मिस करती हैं आप हमारी रवि जी को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए सभी लिसनर्स एक ही जैसे हैं, बराबर हैं, और कई दफा होता है ना कि एक दूसरे के लिंक से कोई ना कोई याद आ जाता है, तो हमें कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो एक दूसरे के आते पते से याद आ जाया करते हैं। और भाई ये क्या है, ऐसे ऐसे आप लोगों ने कमेंट लिखे हैं कि मैं भी परेशान हो जाती हूँ, ये खोपड़िया फोर सॉन्ग कैसा होता है
व्हाट अ सॉन्ग, थैंक यू। ऐसे फीडबैक अच्छा लगा, पढ़ के हंसी आई। और मनीष शर्मा जी है हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर, और आप कैसे जरूर बताइएगा। शैलेंद्र कुमार जी हमारे बीच में है खजुराहो MP से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हेलो आकांक्षा जी बोला आपने, आपको भी हेलो। और इसके बाद में सभी को इन्होंने नमस्ते बोला है, तो भैया सभी बोल दीजिए एक एक बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी ऐसे कुछ। और AJ है हमारे बीच में, जी मैडम मैं भी सुनता हूँ बट नो कमेंट्स, आई नो वेरी वेल। आप ही की तरह बड़े प्यारे प्यारे लिसनर है हमारे, जो बस सुनना पसंद करते हैं। और कई दफ़ा होता है ना कि कमेंट करने से बेहतर उन्हें लगता है कि हम शांत ही रहें, कुछ शांति प्रिय भी तो होते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे और अब आपकी शांति को करेंगे भंग, क्योंकि जब आप हो कातिल हम हो कातिल तो बना लेते हैं एक गुड़ का लड्डू विथ तिल। क्या बात है, ऑसम हो गया। चलिए बढ़ते हैं आपके 3 से 4 के सफर में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो एनएसली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और शो चल रहा है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा। और इसमें नेक्स्ट वाली डिमांड है हमारी निशा जी की, निशा जी को क्या सुनना है, आइए हम भी सुनते हैं आप भी सुनते हैं। और ये गाना अगर हमारी सविता जी सुन रही हो तो उनको डेडिकेट है हल्का पुर से।

तिल और हाँ जी व्हाइट रसगुल्ला को भी। डेडिकेट है ये सॉन्ग भाई उन सभी खूबसूरत महिलाओं को जो अपने घर की रोशनी चांदनी और खुशबू बढ़ाती हैं। उन सभी के नाम बतौर पैगाम हमारी ओर से ये सॉन्ग और ये डिमांडेड है।

हाँ, जब पहली पहली बार मोहब्बत होती है तो वही हाल होता है जो मेरे साथ हुआ था भाई। मैंने चीनी में नहीं, चाय में चीनी, चाय पत्ती की जगह पे मूंगफली के दाने उठाने को डालने को उठा दिए थे। देख रहे हैं, जुबान भी लड़खड़ाने लगी। तो मोहब्बत में ऐसा होता है, और एक दफा नहीं कई दफा होता है, लेकिन जब पहली मोहब्बत होती है तो उसका एहसास ही कुछ और होता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, अब्दुल कलीम जी की है। और चलिए सुन लेते हैं कि ये क्या सुनना चाहते हैं, और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, जो कि होगी हमारे प्यारे प्यारे प्यारे लिसनर अमित कुमार जी की।

जी, अभी आपने एंजॉय किया अब्दुल कलाम जी के इस डिमांड को, और अब हम बढ़ेंगे अमित कुमार जी की डिमांड की ओर, और उसके बाद आएंगे सबलू जी की डिमांड को लेकर के, और फिर हम चलेंगे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर, फिर होंगे हमारे रितेश जी, काजल जी, सुरेंद्र यादव जी, मुमताज अंसारी जी, राजेश जी जो कि हमें सुनते हैं अम्बेडकर चौराहे से, और निबर जी हैं, अक्षय त्रिपाठी जी हैं, रीतलाल यादव जी हैं जो हमें सुनते हैं इलाहाबाद से, और राम नरेश तिवारी जी ने भी आज भाई मदर इंडिया का सॉन्ग कोई भी बोला है, और मुझे नहीं लगता इतने सारे डिमांड्स मैं पूरे कर पाऊंगी, पर नाम तो सबके ले ही सकती हूँ, और माफ़ी भी नामा अभी लास्ट तक देके ही जाऊँगी, मुझे पता है। और उसके बाद में हमारे बीच में है हमारी पूजा त्रिपाठी जी जो हमें सुनती हैं गायत्रीपुरम से, और आज इन्होंने पहली दफ़ा को कॉल किया है। प्रकाश भारती जी हैं उतरौला रोड से, और लास्ट डिमांड होगी हमारी अनुष्का जी की, और अनुष्का जी का सॉन्ग तो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, और जाते जाते बनता भी है कि एक प्यारा सा सॉन्ग आपको सुना के जाऊं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और इसमें हम ऐड करेंगे अपने प्यारे देवी प्रसाद जी को जो कि हमारे अमित जी की डिमांड। आइए इसको सुनते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और कच्चे धागे मूवी के लगभग सॉन्ग अच्छे ही हैं। और ये सॉन्ग थी अमित कुमार जी की डिमांड और हमारे देव प्रसाद जी को हमने इसे डेडिकेट कर दिया था। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर और ये है हमारे सबलू सावंत जी की डिमांड फ्रॉम मुंबई बोरेवली। और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। डिमांड बहुत सारी है और काफ़ी सारी डिमांड आज छूटेगी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, समय वही उतना होते हैं और आप सभी की डिमांड बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ढेर सारी होती है। आई एम सो सॉरी। फिलहाल ये गाना

जी अभी आपने एंजॉय किया सब लोग सावन सिंह की डिमांड को, और वक्त हो चला है 3:46, शेष मेरे पास 14 मिनट, और इन 14 मिनट में मैं देखती हूँ कि आज कौन कौन सी डिमांड मैं प्ले करती हूँ, मैं खुद ही देखना चाहूंगी ये। फिलहाल चलते हैं धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड की ओर, जो कि हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, और इनको सुनना है मिट्ठू मियां।

बता दो मिठू मियां को सुनने के बाद अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड किसी और की नहीं है, प्रकाश भारती जी की है, जो हमें सुनते हैं उत्रौला रोड गोंडा से। और आपने ट्यून करके रिकॉर्डेड गाना स्लीट 96 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और वक्त हो चला है 3:49, शेष 11 मिनट हमारे पास में है, लेकिन रफ्तार बढ़ाते हैं और सुनाते हैं ये वाला गाना।

0: बोरियां।
1: हाँ जी दोस्तों, अभी आपने सुना ये डिमांड हमारे भारती जी के डिमांड पे, और भारती जी हैं, प्रकाश भारती जी हैं उतरौला रोड से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो की है हमारे अक्षय त्रिपाठी जी की डिमांड, और ये हमें सुनते हैं गायत्रीपुरम से। गायत्रीपुरम से सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये सॉन्ग, और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे अपने मनी शर्मा जी को, क्योंकि हमें पता है संजय यदुवंशी जी का सॉन्ग इन्हें काफी पसंद आता है। तो मनी जी, आपके लिए और हमारे अक्षय त्रिपाठी जी और हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो हमें सुनते हैं गायत्रीपुरम से, उनके लिए ये सॉन्ग खास करके। तो लाते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने सुरेंद्र यादव जी की, और फिर होंगी हमारी काजल जी, पर देखते हैं नेक्स्ट सॉन्ग किसका होता है।

हाँ जी, और अभी आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को, और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड है। भाई शादियों का सीजन चल रहा है और ढेर सारी दुआओं के साथ में गाना हमें लग रहा है सुरेंद्र जी किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल उन सभी के लिए ये दुआओं भरा सॉन्ग, जिन जिन की वाकई जोड़े बनने को तैयार हैं।

जी तो दुआओं से भरा ये सॉन्ग हमारे सुरेंद्र यादव जी सुने हैं गौरव चौकी से, और गौरव चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं। और बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले इसको हम पूरा होने देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि आज जिन जिन के डिमांड्स रह गए हैं वो शाम के शो में यानी गीत आपके नाम से कॉल मैसेज के थ्रू आप यानी चैट बॉक्स के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू अपनी डिमांड दे सकते हैं। जो लेके आती है आपकी आरजे सिंपल, फिलहाल ये गाना।

मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो आप सभी को मुबारकबाद जिनकी शादी होने वाली है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे काजल जी की डिमांड है और दीवानियत मूवी से। भाई ये ट्रैक तो आप जब भी सुनते होंगे आपका दिल हिल जाता होगा, नहीं हिलता होगा तो आज सुन के देख लीजिए।

आज श्रोताओं अब बढ़ना होगा मुझे क्योंकि सफर में विदाई का वक्त हो चला है और रितेश जी और हमारे मुमताज अंसारी जी और राजेश जी जो मैं सुनते हैं अम्बेडकर चौराहे से बहुत ही अच्छी अच्छी डिमांड्स थी आप लोगों की, लेकिन वक्त की कमी के कारण मुझे माफ़ करिएगा। निब्बर जी, रीतलाल यादव जी, राम नरेश जी, पूजा त्रिपाठी जी और साथ ही साथ में हमारे आर के श्रीवास्तव जी और सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, इतने डिमांड्स के लिए आज मैं माफ़ी चाहूंगी क्योंकि वक्त उतना ही होता है, डिमांड इतनी सारी और प्यारी प्यारी। फिलहाल लेते हैं आज की लास्ट डिमांड है अनुष्का जी की और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में। तब तक हंसते खेलते मुस्कुराते गाते और खाना बिल्कुल मिस मत करिएगा और पानी भी मिस मत करिएगा, दोनों ही जरूरी है आपके जीवन के लिए, और मुस्कुराना भी मिस मत करिएगा। ट्यून करके रखिएगा रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं थी आपके होस्ट दोस्त आरजे आकांक्षा, आपने ट्यून कर रखा था जी हाँ आपके गोंडा का फेवरेट रेडियो चैनल यानी के 89.6 FM और शो था आपका कॉलर ट्यून गोंडा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
6: और जेंट्स के लिए,
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके इवनिंग वाले शो गोधूली में आपका वेलकम करते हैं। और आप सभी को पता है कि हम जब भी शाम में आते हैं अपने गेस्ट के साथ, कोई ना कोई ऐसे गेस्ट होते हैं जो अपनी फील्ड के महारथी होते हैं। तो आज भी ऐसे ही हम एक गेस्ट को लेकर के आए हैं आपके अपने प्रोग्राम गोधूली में। असल में हम कहने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, दाग दहलवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। और अब हमारे श्रोतागण जो है वो जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर आज आरजे अदनान इस शो में शेरो शायरी क्यों करने पर मजबूर हो गए। तो दरअसल जैसा कि आपने लफ्ज दिल सुना है, तो आज जो हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद है डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ और विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: नमस्कार,
1: थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हमारे साथ में हृदय संबंधी जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनकी जो बीमारियां होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद है। हम उस पे पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिल और बच्चों के दिल में फर्क होता है। लोग कहते हैं ना कि फर्क नहीं है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बहुत फर्क होता है। कितना फर्क होता है, कितनी सेंसिटिविटी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में दिल से संबंधित, ये आपको पूरे टॉक शो के दौरान जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, चूंकि हमने बताया अपने गेस्ट के बारे में, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए पहले डॉक्टर साहब से उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और उनका सफरनामा जानते हैं कि आखिर यहाँ तक का जो उनका सफरनामा है वो कैसा रहा। तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में, फैमिली के बारे में, और साथ ही साथ आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में।
2: नमस्कार, मेरी पैदाइश गोंडा की ही है। मेरे माता पिता डॉक्टर पी के अग्रवाल एंड डॉक्टर उषा अग्रवाल हैं, जो यहाँ पे पिछले करीब 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं गोंडा में। पिताजी मेरे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं गोंडा में, और माताजी का पैथोलॉजी सेंटर है जो नेशनल डायग्नोस्टिक के नाम से जाना जाता है गोंडा में। मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है और मेरी प्राइमरी स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग सब यहीं की है। 5th क्लास तक फातिमा स्कूल में पढ़ाई की, फिर 6th के बाद मैं चला गया बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, तो 5 साल में पिलानी में रहा 6th to 10th तक। फिर 11th 12th मैंने कोटा से किया है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ पे इमैनुअल स्कूल है, वहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी की 11th 12th की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IMS BHU वाराणसी में हो गया था, तो मैंने MBBS वहां से किया अपना। फिर MDB मैंने बनारस से किया। उसके बाद फिर मैंने फेलोशिप इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, यानी कि बच्चों के हर्ट की उसको ठीक करने की बीमारियों की जो ट्रेनिंग होती है फेलोशिप, वो मैंने नारायणा हॉस्पिटल बैंगलोर से की। तो नारायणा हॉस्पिटल बैंगलोर अपने में ही सबसे बड़ा सेंटर है इंडिया का, और करीब 200 बेड का उनका केवल बच्चों के हर्ट का वार्ड है 200 बेड का, और इंडिया के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। तो वहां पे मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद फिर मैं गोंडा में अपनी सर्विसेज दिया यहाँ पे 1 साल, ये हो गया करीब सन 2019 में। तो 19 में मैं यहाँ पे था, फिर कोविड आने के कुछ दिन पहले फरवरी में मैं बहरीन चला गया। तो वैसे तो कुछ एक्सपीरियंस के लिए मैं गया था वहाँ पे, लेकिन तब तो कोविड चालू हो गया। तो फिर हम लोग 2 साल वहाँ पे रहे, मेरी पूरी फैमिली, मैं और वाइफ और एक बच्ची थी, हम दोनों वहीं पे रहे। वहीं पे भगवान की दया से दूसरी बच्ची मेरे को हुई बहरीन में। उसके बाद फिर लौटा मैं, तो मेरे को लखनऊ में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, तो एरा मेडिकल कॉलेज में मेरे को वहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, यानी कि मुझे बच्चों को ट्रेनिंग करनी होती, जो बच्चे MBBS और MD पढ़ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, साथ में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी क्लिनिक में वहाँ पे चलाता हूँ, जहाँ पे दिल के रोग वाले बच्चे आते हैं उनका इलाज किया जाता है। साथ में हम लोग अपनी सर्विसेज में बच्चों के दिल का छेद का ऑपरेशन करना, छोटे बच्चों का छेद का ऑपरेशन करना, और उसके अलावा जो कुछ बच्चों के हार्ट में पंपिंग वगैरह कम हो जाती है, जो बोलते हैं इसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, बच्चे बच्चों के दिल कमजोर होते हैं, तो उन बच्चों के इलाज की भी सुविधा वहां पे देते हैं। तो मैंने वहां पे 2022 में ज्वाइन किया, और तब से मैं अभी तक वहीं पे कार्यरत हूँ। साथ में लखनऊ में 2 अस्पताल और हैं जहाँ पे मैं अटैच रहता हूँ, सेवाएं देता हूँ अपनी, जैसे एक विवेकानंद अस्पताल है
1: जी,
2: वहां पे हफ्ते में एक दिन जाता हूँ हर सैटरडे, एंड टेंडर पाम हॉस्पिटल है, जहाँ पे भी मैं जरूरत के अनुसार कभी कभी जाता हूँ।
1: क्या बात है। तो हमने जैसा कि बोला था सफरनामा, आपने पूरा का पूरा सफरनामा अब तक का बता दिया
2: जी।
1: बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इसमें एक चीज बतानी रह गई
1: जी
2: कि मैं महीने में एक दिन गोंडा में भी अपनी सेवाएं देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है, तो मुझे यहाँ पे एक दिन सेवा देना मेरा कर्तव्य है, मैं निभाता हूँ।
1: क्या बात है। ये अच्छी बात ये है बहुत कि आप इस चीज को समझते हैं, और न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको पूरा भी करने एक दिन तो एटलीस्ट आप गोंडा के लिए निकालते हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात है। एक बार वापस से डॉक्टर अभिनव आपके बचपन की तरफ चलते हैं, और हम जानना चाहेंगे क्योंकि हम बाकी गेस्ट से भी पूछते हैं, आपने MBBS भी किया हुआ है, आप एक आज बहुत अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो हम इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे कि आप जब सिक्स्थ में थे या मान लीजिए अर्ली एजुकेशन जब आपकी हो रही थी, उस दौरान आप पढ़ाई में कैसे थे? बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, टॉपर स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट थे, कैसे थे आप?
2: टीचर्स तो अच्छा ही कहते थे मुझे, और मैंने लेकिन कभी टॉप नहीं किया। हाँ, पढ़ाई में अच्छा था, इट्स नॉट लाइक कि मेरा बहुत पीछे रैंक आती हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से रहता था। हम चार पांच बच्चे साथ में हमेशा रैंक के लिए वो कंप्लीट करते थे।
1: अच्छा, चार पांच बच्चों में कंपटीशन हमेशा रहता था।
2: वो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी भी।
1: क्या बात है। तो मतलब वो तो आपके अभी भी फ्रेंड्स हैं, अभी तो नहीं कंपटीशन है?
2: नहीं, वो फील्ड अलग हो गई उनकी।
1: वरना कंपटीशन होता
2: जरूर होता।
1: ये बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात है। तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होना कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होता आपको बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने MBBS किया, तो जिस दौरान आपने MBBS किया, क्योंकि पहले जो है वो CPMT क्लियर करना पड़ता था, AIPMT होता था, अभी बाद में नीट की तरह उसको हम देखते हैं, नीट का फॉर्मेट आ गया, आपने किस दौरान पार किया और उस दौरान कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता था MBBS के लिए?
2: मैंने 2007 में सारे एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम पे CPMT अलग होता था, AIPMT ऑल इंडिया PMT अलग होता था, BHU का अपना अलग एग्जाम होता था, और उसके अलावा और एम्स, जिपमर सबके अलग एग्जाम होते थे, इवन साउथ के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम अलग होते थे। तो मेरा जो 2007 का टाइम था, आप समझिए कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक हर तीसरे दिन मेरा कोई एग्जाम होता था। मेरे को ये लगता था कि जितने फॉर्म्स आए सब भर दो, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा फॉर्म्स भरे भी थे उस टाइम में।
1: ओके, तो ये आपने कहा कि उस दौरान बहुत सारे फॉर्म्स आपने भरे थे, क्योंकि नीट का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। लेकिन उससे पहले भी हम एक बात जानना चाहेंगे कि ये आपका पहले से खुद का एम था, या ये चूंकि फादर भी डॉक्टर थे, मम्मी पैथोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो क्या उसका असर था? क्योंकि कहते हैं कि संगत का तो असर होता है, लेकिन आखिर आप पे कितना हुआ, हम इस बात को जानना चाहेंगे।
2: बचपन से तो हमेशा इंजीनियर बनने का मन था मेरा। असल में हुआ क्या, जब 10th क्लास में मैंने बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मेरा बायोलॉजी का बहुत ओरिएंटेशन हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ चैप्टर्स पढ़े जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि इसमें तो मैथ्स का भी काम आ रहा है, इसमें फिजिक्स भी लग रही है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे किडनी का फंक्शन, जो गुर्दे का फंक्शन, वो कैसे यूरिन बनाता है, कैसे पेशाब बनाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ तो मिक्स हो गया, फिजिक्स भी मिल गया, बायोलॉजी भी मिल गया और केमिस्ट्री भी मिल गया। तब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, तब से फिर मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा सा बायो की तरफ हुआ।
1: ओके, तो ये तो आपकी अपनी बात हुई, कभी फादर ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की कि आप भी डॉक्टरी लाइन में आए, आप भी मेडिकल सेक्टर में आए और सेवाएं दे, या आपके ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप जो भी चीज करना चाहें वो आप कर सकते हैं?
2: मुझे पर्सनली ये लगता है कि पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, पर कभी फोर्स नहीं किया। मतलब बातों से लगता था कि हाँ, वो अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो उनको ज्यादा खुशी मिलेगी इंजीनियर बनने से, लेकिन कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया।
1: ऑलराइट, वैसे एक ये क्वेश्चन, इससे कोई मतलब तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, कहते हैं कि एक इंजीनियर सब कुछ बन सकता है, बस इंजीनियर नहीं बन पाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा।
2: अब इसका मेरे को आइडिया नहीं होगा कि मेरी वो फील्ड है, नहीं। दीदी मेरी इंजीनियर, उनसे पूछ के आपको बता सकते हैं।
1: नहीं, एक्चुअल में उनसे हम डायरेक्ट खुद नहीं पूछ सकते, क्योंकि सवाल ऐसा है। बट हाँ, ये जरूर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे गए हैं हमारे समाज में कि आज बहुत बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, या जो भी आज अपना स्टार्टअप कर चुके हैं, कहीं अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सच में इंजीनियरिंग सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ाती, बल्कि मुझे लगता है दुनियादारी सिखा देती है। स्टूडेंट होते ही ऐसे है कि मतलब इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो कुछ भी कर ले जाते हैं।
2: नहीं, ये चीज मैं मानता हूँ, क्योंकि जो मैंने फील किया कि हम लोग का जो एजुकेशन है मेडिकल का, उसमें क्रिएटिविटी का इतना आपके पास ऑप्शन और टाइम भी नहीं है, बिकॉज आप सेकेंड ईयर से ही आपको वो हॉस्पिटल्स में पोस्ट कर देते हैं, तो आपको पेशेंट्स देखने हैं शाम को, सुबह में क्लासेस करनी है, बीच में पढ़ाई करना है, फिर हर दो दो महीने पे एग्जाम देते रहना है, तो आपके पास वो क्रिएटिविटी का एरिया और वो जो टाइम चाहिए हम लोग को, वो उतना नहीं दिया जाता। इवन मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स का भी उतना ज्यादा फोकस नहीं रहता जितना कि रहना चाहिए इन योर आप अगर 18-19 साल के हैं तो आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी वो सब होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अब कुछ स्टेप्स लिए हैं, योगा को इंट्रोड्यूस किया है मेडिकल के कोर्स में भी, बट स्टिल अभी भी हम लोग जितना इंजीनियरिंग वाले क्रिएटिविटी एंड स्पोर्ट्स में रहते उतना मेडिकल वाले नहीं रहते हैं।
1: ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर करने का कुछ और भी चीजों का मौका देना चाहिए।
2: जी,
1: ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ चूंकि हमने जैसा कि बताया कि आपने MBBS भी किया, तो देखिए जहां तक हम सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज होती है जहां जिसके एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर साथ ही साथ पैरेलल में हम देखेंगे नीट की बात करेंगे तो वो भी बहुत टफ एग्जाम है। ऑफ कोर्स इंडिया के सबसे ज्यादा टफ एग्जाम्स में से वो भी एक है। तो मैं जानना चाहूंगा इतने टफ एग्जाम में आपने परफॉर्म इतना अच्छा किया, MBBS में आपको एडमिशन मिला, तो इसकी जर्नी के बारे में आखिर कौन सी वो स्ट्रेटेजी थी जिसके जरिए आपने इस गोल को अचीव किया, कितना टाइम देते थे और क्या चीजें आपको मोटिवेट करती थी?
2: ये चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, इसमें आपका जो हम लोग बोलते हैं नियमित पढ़ाई, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 महीने ना पढ़े और लास्ट के 2 महीने पढ़ के आप, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, वैसे जो लोग होते हैं कि एक बार पढ़ते सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन जो बाकी मैक्सिमम जनता जो है उनको रिविजन की जरूरत होती है, उनको कई बार पढ़ना पड़ता है। तो अगर कभी भी आप ऐसा सोचे कि अरे लास्ट के 2 महीने पढ़ के हो जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे लास्ट के 2 महीने पढ़ के, लेकिन आप रैंक नहीं अचीव कर सकते उस टाइम में। आप उतनी आप अपनी सेल्फ डिजर्विंग रैंक जो आप चाहते कि मैं मेरे को इतना आना चाहिए, मेरी इतनी रैंक आनी चाहिए, वो अचीव करना बहुत मुश्किल लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करके। और दूसरा मेरे को जो लगता है कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ BHU में और मेरा ऑल इंडिया रैंक में भी 440 करीब रैंक थी, तो अच्छी रैंक थी उस टाइम के हिसाब से, तो वो रैंक का बहुत ज्यादा श्रेय तो कोचिंग के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एग्जाम पेपर को भी कैसे दिया जाता है, मतलब आपको नॉलेज हो सकता है आपका कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो, लेकिन जो वो आपके 300 क्वेश्चन है उसको 3 घंटे में कैसे पूरा करना है, किन क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, कैसे आपको पेपर देना है, ये कला कोचिंग वालों ने सिखाई। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ के कोई नहीं सिखा सकता है, कोई भी आप टेक्स्ट बुक पढ़िए उससे आप नहीं सीख सकते, वो जब तक आपको कोई बताता नहीं है कि आप इस तरह से अप्रोच करो। तो जो स्ट्रेटेजी वो लोग हमको सिखाते हैं, मैंने सीखा था, तो उसमें वो कहते थे कि पहले आप 3 फेज में पेपर करो, अपना पूरा पेपर 3 फेज में करो, पहले फेज में जो आता है लगाते चलो, जो नहीं आता छोड़ते चलो, ऐसे करके आपको अगर आप 300 में से आपने 180 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये पता है कि 180 तो मेरे सही है ही है, अब बाकी डाइसी है, बाकी का मेरे को देखना है कि मुझे क्या करना है। तो ये फेज आप पहले कर लो, और इतना आपका 180 हो जाता है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरा तो अच्छा जा रहा है पेपर। वरना क्या होता है कि आप एक लाइन से अटेम्प्ट करने के चक्कर में कभी कभी कोई मान लीजिए 6 नंबर पर टफ क्वेश्चन आ गया, आप उसमें अटक के रह जाओगे, अरे यार इसका आंसर कैसे होगा, इसको मैं कैसे करूंगा, अरे आगे कैसे होगा, अरे कितना टफ क्वेश्चन आ गया, कितना हार्ड पेपर आ गया। वो सब नहीं सोचना है, छोड़ते चलो, जो नहीं आया छोड़ते चलो, एक बार पढ़ो छोड़ो और करते चलो, तो आपका 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपके हो गए अगर, तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि एटलीस्ट 60% नंबर तो मेरे आ गए, अब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मेरे को रैंक बनानी है।
1: एग्जैक्टली,
2: तो अब फिर आप सेकेंड फेज में जाओ जहां आपको 2 ऑप्शंस में से एक कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब आपको 4 में से आपने 2 हटा दिए, 2 बचे हैं आपके पास, तो इनको आप अटेम्प्ट करो। आप अब बाकी 50 में से मान लीजिए आपके 25 भी भिड़ गए
1: जी,
2: तो 25 नंबर तो आ गए आपके, बाकी 25 गलत हो गए। अब बचेंगे आपके आखिरी के 30 क्वेश्चन जिनमें आपको कुछ नहीं हवा लग रही है, तब तक आपको लेकिन आपको आपका आपका स्कोर पता होगा कि आप कहां स्टैंड करते हो रैंक लिस्ट में, तो आप फिर अपना उतना रिस्क ले लो कितना ले सकते हो। अगर आप रैंक 1 को अचीव करना चाहते हो तो आपको 200 के 300 के 300 लगाने हैं, फिर आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक रैंक लाना चाहते हो 150, 200, 300 के आसपास में, 1000 के आसपास में, तो आपको अपने नंबर से पता चल जाएगा कितनी रैंक आने वाली है, और फिर आप उस हिसाब से अटेंड करवा के क्वेश्चंस।
1: क्या बात है, मतलब आपने कहा कि ये जो स्ट्रेटेजी थी 3 फेज में जा करके सॉल्व करने की, ये कहीं ना कहीं कोचिंग वालों ने सिखाया। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज बहुत बड़ी है कि हर बच्चे के साथ अगर हम देखा जाए तो सपना किसी का भी हो सकता है डॉक्टर बनने का, लेकिन हर कोई कोचिंग नहीं कर सकता है। तो आपको मुझे लगता है जो अभी आपने बताया कि कोचिंग वालों ने ये स्ट्रेटेजी सिखाई है, शायद इस वक्त जो बच्चे हमको सुन रहे होंगे MBBS करना चाह रहे होंगे और फाइनेंशियल इतनी फिलहाल अभी स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये अगर स्ट्रेटेजी वो भी अपनाएंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: इसके लिए मैंने क्या किया था कि लास्ट के 2 महीने में मैं रोज एक पेपर सॉल्व करता था, और मैं अपना स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटे का टाइमर सेट करके और इसी स्ट्रेटेजी से हमेशा पेपर सॉल्व करता था। मेरा टारगेट ये था कि मेरे को 75% नंबर लाने हर पेपर में। तो वो जब आप रोज रोज ये करते हो ना तो आपकी स्पीड आती है, जो आपका नॉलेज और उससे नहीं आता है, वो आपकी प्रैक्टिस से आती है। ये स्पीड जब आपकी अचीव हो जाती है ना, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे हर एग्जाम में अराउंड 50% क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं।
1: Exactly.
2: तो आपको पहली 2-3 लाइन पढ़ के याद, अरे ये तो वाला क्वेश्चन है, ये तो मैं फट से लगा लूंगा। और कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था आंसर ये है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर लेता बस क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भैया वही है, कहीं कुछ कोई डिजिट बदल तो नहीं दिया है।
1: Exactly.
2: कोई एक संख्या बदल तो नहीं दी है जिसकी वजह से कुछ आंसर बदल जाए। तो अगर आपको 50% पेपर आपको वैसा मिलने लग गया ना, तो आपने बहुत पेपर लगा लिया, इसका मतलब
1: बिल्कुल सही कहा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप चीजों को विजुलाइज करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक क्लियर पिक्चर आपको नजर आने लग जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और इसीलिए हमेशा कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल। सो इसी के साथ, चूंकि अभी हम कुछ ही देर में एड ब्रेक के लिए जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक बार आप हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए बता दिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान दें, और स्पेशली जब एग्जाम हो, नीट के एग्जाम में वो बैठे हो, तो उस दौरान किन किन बातें का ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या चीजें आपके काम आती है जो आपने किया होता है साल भर।
2: देखिए, प्रिपरेशन के दौरान तो मेरा कहना ये रहेगा जिस जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको ज्यादा पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ेंगे तो बहुत सारे नंबर तो आपके वैसे ही कट गए, तो उसके तो आप सिंपल क्वेश्चंस भी मिस कर देंगे, हार्ड क्वेश्चंस तो छोड़ ही दीजिए। तो जैसे मेरा जो था, मेरा जूलॉजी बहुत वीक था, स्पेशली जिसमें वो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन होता है पूरा, कि भैया स्नेक किस में जाता है और मकड़ी किस में जाती है, वो चैप्टर, और बॉटनी में जो क्लासिफिकेशन आता है जिसमें कि किस पौधे को कौन सा, आज तो मेरे को याद भी नहीं है, डाइकोटोमस मोनोकोनस क्या था मेरे को याद भी नहीं है, तो वो क्लासिफिकेशन मैं नहीं याद कर पाता था। तो मैंने उसके लिए क्या किया था कि मैं सुबह का टाइम 6-7 फिक्स कर लिया था, और मैं 6-7 केवल वो चार्ट देखा करता था, केवल वो चार्ट देखता था, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, किसके 6 लेग्स हैं, किसके 4 लेग्स हैं, किसका कौन सा रिप्रोडक्शन है, किसका क्या है, वो सब याद करना, पूरा रटने वाला था वो। तो मैं रटने में थोड़ा हमेशा से वीक रहा हूं, मेरे को समझ आ जाती चीजें, मैं रट नहीं पाता हूं।
1: okay.
2: तो मैं लास्ट के 2-3 महीने में रोज 1 घंटा केवल वो दोनों चार्ट देखा करता था। तो ऐसे करके एग्जाम देने तक मेरे को 90% वो चार्ट मुंह जबानी याद था, मतलब आप मेरे से पूछ लो कि एक तरफ शुरू करो, मैं एक तरफ से आपको पूरा चार्ट गिनाता चला जाऊंगा। तो वो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस ही आपको सहायता करती है और कोई नहीं करती। तो एक तो अगर आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको आप ज्यादा पढ़िए, दूसरा शेड्यूल बना के पढ़िए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे अगर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग की पीडियाट्रिक्स जब मैं कर रहा था तो हम लोग की बुक है नेल्सन करके, तो वो करीब 3,500 पेज की बुक है, तो वो हमको पूरा 3 साल में पढ़नी होती थी। तो अगर आपको 3,000 पेज की बुक 3 साल में पढ़नी है तो आपके पास 1,000 दिन होगा करीब।
1: एग्जैक्टली
2: है ना, उसमें आपको छुट्टियां निकाल दीजिए, उसमें आप कुछ की तबियत खराब हुई वो निकाल दीजिए, कुछ हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटीज करते, कभी ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड चली गई नहीं कर पा रहे, तो उस 1,000 में से आप, मतलब मेरे को लगता है कम से कम आधे तो निकाल ही दीजिए, संडे छोड़ दीजिए, कुछ पार्टी वाले दिन हो गए, कुछ फ्रेंड्स के साथ दिन हो गया, कहीं मूवी चले गए, वो सब हो गया, तो फिर 500 दिन बच गए आपके पास। 3,000 किताब, 3,000 पेज की बुक अगर आपको 500 दिन में पढ़नी, तो आपको 6 पेज तो कम से कम रोज पढ़ने हैं, वरना आप कभी नहीं कवर कर सकते हो। और ये आपको जब पता रहेगा मुझे 6 पेज पढ़ने हैं, और आपने अगर 3 दिन पढ़ाई नहीं की, तो 4th दिन आपको पता रहेगा मेरे 24 पेज पेंडिंग हो गए हैं, मुझे वो 24 खत्म करने हैं,
1: करने ही पड़ेंगे,
2: तो वरना वो मेरी किताब खत्म नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको अपना स्टडीज में कंपटीशन के पहले, कि कंपटीशन का अगर ये दिन है और इस दिन के पहले मुझे इतना खत्म करना, तो मुझे पर पेज पर डे कितने पेज पढ़ने हैं, बस वो आप हिसाब लगा लीजिए, आपका अपने आप स्ट्रेस बन जाता है, आपका अपने आप फ्लो बन जाता है। तो दो ये हो गया, और तीसरा प्रैक्टिस पेपर वो जरूर लगाने हैं, और जितने ज्यादा लगाएंगे उतना फायदा करेगा आपको।
1: क्या बात है, यानी पहली चीज तो एक चीज समझ में आया कि चाहे मेडिकल की हम पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सेक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत वेग नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लान करके होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए, जैसा कि आपने बताया। एंड दूसरी बात बताया कि जो चीज रटने वाली थी आपको याद नहीं होती थी, आपने एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताया, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मैं भी हूं, कि मैं रट नहीं पाता हूं। तो आपने बताया कि 1 घंटा आप मॉर्निंग 6-7 एक घंटा सिर्फ उस चार्ट को देखते थे जिसमें क्लासिफिकेशन समझाया गया था। तो ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए एक रामबाण टिप्स हो सकती है जिनको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या जो कहीं एक पॉइंट पे आके स्टक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्रेटेजी वो खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अभी आपने जो बताया उस चीज को भी अपना के देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, चूंकि अब हमारा वक्त हो गया एक छोटे से एड ब्रेक का। एड ब्रेक के लिए जाने से पहले हम बता दें अपने श्रोताओं को कि चूंकि आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ और विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। अवश्य आएंगे ब्रेक के बाद और बहुत अहम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों के दिल के संबंधित बीमारियों से। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड। कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999। ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और आपका अपना फेवरेट वाला शो गोधुली में हम मौजूद हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के साथ। हम बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। एक बार वापस से मैं आपका वेलकम करता हूं। और चूंकि हमने जाने से पहले कहा था श्रोताओं से कि आने के बाद हम दिल से संबंधित बच्चों की जो बीमारियां होती है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे कि भाई एक डॉक्टर को जो है वो हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स ही देखना होता है। ऐसा बहुत कम होता होगा कि आप कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बड़ा सब हैप्पी हैप्पी सब लोग हो, हर कोई बस प्रॉब्लम लेके आप तक आता है। तो एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये कि कोई भी हो इंसान को डर लगता है चीर फाड़ से, तकलीफ से, ब्लीडिंग को देख करके। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो कितना आपको डर लगा था कि भाई हम डॉक्टर बनने वाले हैं और हम इस तरह की केसेस को हम डील करेंगे, साथ ही साथ एक ऐसे दिन भर पेशेंट्स को डील करेंगे जो मुसीबत या प्रॉब्लम में ही मेरे पास आएंगे, इसको लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें।
2: देखिए जब ट्रेनिंग के टाइम में जब स्टार्टिंग में तो सबको डर लगता है भाई, क्योंकि हम लोग को सैंपलिंग भी करना होता है, खून भी निकालना होता है, फिर छोटे मोटे ऑपरेशन भी करने होते हैं। बट वो ट्रेनिंग इस तरह से बनाई गई है कि आपका डर धीरे धीरे चला जाए। सबके अपने फील्ड में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे डर लगता है। जैसे अगर आप जैसे मेरे को जो एक बार मैंने फील किया, मैं पुलिस स्टेशन गया था, मेरी साइकिल चोरी हो गई थी उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन वहां का सीन देख के मेरे को आज भी डर लगता है।
1: क्या हुआ था?
2: मतलब शायद कुछ क्राइम हुआ था तो वो फैमिलीज रो रही थी, पुलिस वाले उनको मैनेज कर रहे थे, फिर और मतलब काफी सारे लोग वहां पे बैठ के एक साथ रो रहे थे। सबका अलग अलग कुछ मैटर था, किसी का चोरी था, किसी कुछ हुआ होगा, किसी फैमिली में कोई इशू होगा।
1: एग्जैक्टली,
2: तो पुलिस वाले उसको डेली बेसिस पे डील करते हैं, तो वो उनकी ट्रेनिंग है उस तरह की।
1: एग्जैक्टली,
2: आप आईएएस को देखेंगे तो उनका अलग है भाई, उनको बड़े बड़े दंगे हो गए हैं वो संभालना है, उनके मैटर संभालने हैं, पॉलिटिशियंस के अपने, सबकी अपनी ट्रेनिंग है। तो और वो अपने फील्ड में माहिर है, तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग हम लोग की है। बस ये है कि हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, सबसे मिलते हैं रोज, तो लोगों को लगता है कि ये कैसे कर लेते हैं, बट सबका अपने फील्ड में महारत है। आपकी भी अपने फील्ड में महारत है, आप स्टेशन में कितना आराम से कैजुअली बैठे हो मेरा।
1: एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल होता है कि आप जिस भी फील्ड में होते हैं आप उसकी महारत को हासिल करते जाते हैं दिन ब दिन। थैंक यू सो मच। और इसके बाद चूंकि अब आते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है जो अक्सर कहा जाता है कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चे एंजल होते हैं, सामाजिक दृष्टि से तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन एक डॉक्टर के नजरिए से हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में।
2: देखिए बच्चों के सबसे ज्यादा जो अलग होता है बच्चों में कि वो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, आपको समझना होता है, चाहे आप माँ बाप हो चाहे आप डॉक्टर हो, आपको बच्चों की बात समझनी होती है कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है। क्योंकि उनको तकलीफ होगी तो भी वो रोएंगे, उनको भूख लगेगी तो भी वो रोएंगे, उनको सूसू लगेगी तो भी वो रोएंगे, और उनको पेट दर्द होगा तो भी वो रोएंगे
1: जी।
2: तो लेकिन माँ भी समझ जाती कि बच्चा मेरा इस समय किस वजह से रो रहा है। तो कुछ इसी तरह की ट्रेनिंग हम लोग की होती है कि वो क्या उसके इशारे हैं बच्चों के, कि क्या चीज देखना है हमें, कैसे हम लोग पता करते हैं कि इस बच्चे को इस समय क्या तकलीफ हो रही होगी। और इसी वजह से क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते, कई बार उनकी बीमारियों को नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, लोग नहीं ध्यान देते हैं, सोचते हैं बच्चा तो है तो रोएगा ही। जैसे एक छोटी सी कंप्लेंट जो हम लोग बहुत नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है
1: जी।
2: तो लोग ये सोचते हैं कि तो अभी खाएगा तो ठीक हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे अच्छे से खाते हैं उसके बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता। तो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये जरूर देखना है कि इसको बच्चे को कोई अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है। जैसे कई बार मेरे जो पेशेंट्स हैं जिनके दिल में छेद होता है तो उनकी कंप्लेन होती है, उनकी दिक्कतें होती हैं कि बच्चा तेज सांस लेता है, बच्चा नीला पड़ता है, बच्चा रोता जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा, लेकिन उनकी ये दिक्कत होती नहीं कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। और बच्चा एक साल का है, वजन है 4 किलो 3 किलो, बिल्कुल जन्म के बाद वजन बढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो दिक्कत दिखती ही नहीं है लोगों को। तो ये सब चीजें बहुत माइन्यूट चीजें हम लोग को नोटिस करना जरूरी होता है बच्चों में, क्योंकि वो अपनी बातें बोल नहीं सकते हैं।
1: बेशक, तो आपने सही कहा कि बच्चों का बस एक एक्सप्रेशन होता है, वो होता है रोना, रो करके ही चीजों को जाहिर करते हैं। ऑलराइट, और चूंकि जैसे हम अपने श्रोताओं को पहले भी बता चुके हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो हम बता दें कि बच्चों में जो होने वाले हृदय संबंधी बीमारियां हैं यानी बच्चों के दिल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको डील करते हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न इससे संबंधित मेरा ये है कि बच्चों में दिल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं।
2: तो इसको अगर संक्षेप में देखें, दिल जैसे काम करता है, दिल के 3 चीजें होती हैं दिल में। एक होता है वाल्व, जो कि आपके खून को एक तरफ बहाव बना के रखते वाल्व। दूसरा होता है जैसे किसी मोटर में पंप होता है, तो एक होता है पंप दिल का, तो और तीसरा होता है कि जो उसमें नसें आ रही हैं दिल के अंदर खून लेके आ रही हैं और जो खून लेके जा रही है तो वो होती नसें। तो तीन चीजें हो गई आपके पास, एक जैसे मोटर में दो पाइप होते तो हमारे पास नसें हैं, एक पंप होता है तो हमारा हार्ट एक पंप है, और मोटर के अंदर वाल्व होते हैं तो हार्ट के अंदर दो वाल्व चार वाल्व हैं। अब इन तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, अगर आपकी नसों में दिक्कत, नसों में सिकुड़न हो सकती है, या वाल्व में लीकेज हो सकता है, या आपके पंप मोटर में कोई दिक्कत हो सकती है तो पंप कम कर सकता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हार्ट फेलियर है तो पंपिंग कम हो रही है हार्ट की, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा कुछ बनावटी दिक्कतें होती हैं जैसे कि दिल में छेद होना, तो वो अगर जैसे दिल के अंदर चार खाने होते हैं तो अगर उन खानों के बीच में कोई दिक्कत है, जो दीवार ठीक से नहीं बनी जैसे कि खिड़की कोई बनी हुई है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिल में छेद है, मतलब दो चैम्बर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग कहते हैं दिल में छेद है।
1: ओके, तो आपने बताया कि भाई तीन चीज मेन होती है, एक वॉल्व है, दूसरा पंप है और तीसरा नसें यानी वेन्स है, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जैसे कि कहा कि बनावट में ही अगर मान लीजिए जन्मजात कोई ऐसी समस्या है जैसे कि लोग कहते हैं कि दिल में छेद है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप डील करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए ये सारी प्रॉब्लम है तो इनके रीजन होते होंगे, इनके कारण होते होंगे, तो बच्चों में जो भी दिल से संबंधित बीमारियां हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: देखिए, जो दिल की बीमारियां बड़ों में होती हैं, बच्चों में सेम एक ही तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, वो सेम बीमारी जो बड़ों में होती है बच्चों में नहीं होती है। बच्चों की बीमारियां कुछ अलग होती हैं, जैसे इसमें होता है सबसे पहले बनावटी वाले की, मतलब भाई माँ के पेट में था उसी समय कुछ दिल को बनावट में कुछ दिक्कत रह गई है जिसकी वजह से वो हम लोग को अब बाद में पैदा होने के बाद पता चल रहा है। तो जैसे उसमें होता है कि छेद होना, तो छेद छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कुछ नस में सिकुड़न हो सकती है, कुछ वाल में दिक्कत हो सकती है, ये सब बनावटी दिक्कतें हैं। जन्म के बाद में जो दिक्कतें आती हैं उसमें एक जो बच्चों में होता है मेन होता है इन्फेक्शन, तो जिसको हम लोग कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कभी कभी ये गले में इन्फेक्शन होता है बच्चों के या कहीं स्किन में इन्फेक्शन होता है तो अंदर जाके दिल के वाल्व पे बैठ जाता है जिसकी वजह से वाल्व डैमेज हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसका बचाव बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी होती है, लेकिन होता क्या है कि लोग इस जो इन्फेक्शन बच्चों को थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन होता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं ठीक हो जाएगा तो सर्दी खांसी नॉर्मल है, और उसी में वो इन्फेक्शन जो है फिर जाके हार्ट में बैठ जाता है, तो ये हो गया इन्फेक्शन। और तीसरा कभी कभी कुछ बच्चों का हार्ट की पंपिंग में दिक्कत हो जाती है कि वो उसका जो नॉर्मल पंप हम लोग कहते हैं 65% होना चाहिए तो वो 65% ना होकर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल और पैथी मतलब बीमारी, तो हार्ट के मसल की कोई बीमारी इनको हो गई जिसकी वजह से उनका पंपिंग कम होता जा रहा है, तो उनके लिए फिर आपको दवाई देनी होती है। यही तीन तरह की दवाइयाँ, यही तीन तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं बच्चों में।
1: ओके, तो चूंकि हमने प्रश्न पूछा था कि बच्चों में जो दिल से संबंधित बीमारियां उनके कारण क्या हो सकते हैं, जिनको आपने बखूबी बता दिया, अब चूंकि बीमारियां होती हैं तो उनके लक्षण भी होते होंगे, तो ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रोतागण हमको इस वक्त सुन रहे हैं जिनके बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे या होने वाले होंगे, तो उनके लिए हम किस तरह से बताया कि अपने बच्चों की अगर मान लीजिए इनमें से कोई दिक्कत है परेशानी है तो कौन कौन से लक्षण देख करके वो जान सकते हैं?
2: जैसा मैंने पहले बताया कि एक तो वजन नहीं बढ़ना, ये बहुत जरूरी लक्षण है जो कई बार लोग नहीं देखते या नहीं ध्यान देते हैं उस बात पे। तो अगर आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसको जरूर दिखाएं, हो सकता है कि उसके दिल में कोई छेद हो या कोई उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो। दूसरा होता है कि अगर बच्चों को आपको बार बार जकड़न हो रही है, बार बार निमोनिया हो रहा है, तो वो दिल जिन बच्चों के दिल में छेद होता है उनमें अक्सर उनके फेफड़ों में खून ज्यादा जा रहा होता है जिसकी वजह से वहां पे निमोनिया होने का चांस ज्यादा हो जाता है, तो बार बार सर्दी खांसी होना। अगर थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं, बाकी बच्चों के बराबर दौड़ नहीं पाते हैं, आप अगर स्कूल में पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं हम थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं सीढ़ियों पे अक्सर, तो वो हो सकता है। और कभी कभी अगर दिल में दिक्कत ज्यादा है तो उन बच्चों के नीलापन भी आता है, तो थोड़ा सा नाखून और होंठ थोड़े से नीले रहते हैं। वो नीलापन क्यों आता है? क्योंकि जो हम लोग के फेफड़ों में जो खून जा रहा है उसमें ऑक्सीजन कम होता है तो वो नीला होता है, फिर वो फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन लेके लाल होके वापस आता है तो शरीर में लाल खून आता है। तो अगर दिल में छेद बड़ा है और कुछ नसों में सिकुड़न है तो वो जो खून फेफड़े के अंदर जाना चाहिए वो शरीर के अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से नाखून और होंठ नीले दिखते हैं। वो ज्यादातर लोग कई बार गांव में लोग नहीं पहचान पाते, वो कहते हैं कि तो जन्म से ऐसा है, तो जन्म से ऐसा है लेकिन तब भी है, तो आप वो तो देखो कि वो क्यों है। कई बार लोग नेगलेक्ट कर देते हैं इस चीज को कि नहीं ये तो जन्म से ऐसे ही है, तो वो भी नहीं करना है और वजन का बहुत ध्यान देना है।
1: जी, तो आपने बताया कि जैसे एक तो ये है कि भाई दिल में छेद हो जाता है, दूसरा है वजन ना बढ़ना, ये एक दिक्कत हो सकती है, जकड़न अक्सर आमतौर पर देखी जाती है, नाखून और होठों का नीला होना भी, ये आपने बताया कि ये सारे रीजन हो सकते हैं। एक बात इसमें और आती है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं या फिर अनुवांशिकी हम बोलते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसे भी कारण होते हैं जो अनुवांशिक होते हैं?
2: कुछ तो होते हैं अनुवांशिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो दिल के बच्चों के दिल की बीमारी होती है उनके कारण हमको पता नहीं चलते हैं, वो हो जाते हैं बच्चों को। इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का रोल है, क्योंकि हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर परिवार में किसी को आपके दिल का बीमारी था बीमारी इन द सेंस कि बच्चों में, बड़ों में नहीं, जो हार्ट अटैक वाला होता है, अगर बच्चों में किसी के परिवार में किसी बच्चे को दिल में छेद था, किसी का वैल में दिक्कत थी, तो फिर और जो बच्चे होते परिवार में उनको हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फैमिली स्क्रीनिंग भी होना चाहिए, बाकी परिवार के बच्चों को भी चेक करना चाहिए, किसी और के है तो नहीं। इसको हम लोग कहते हैं कि 1-3% का रिस्क होता है कि 100 में से अगर आपके परिवार में 100 बच्चे हैं और किसी एक को दिक्कत है तो और 3-4 बच्चों को दिक्कत हो सकती है 100 में से। 3% का रिस्क हम लोग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जेनेटिक्स का उसमें रोल है, पर इतना ज़्यादा नहीं है जैसे डायबिटीज़ में और हाइपरटेंशन में होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें आपका मिलता है इंसिडेंस फैमिली के अंदर में, तो उतना नहीं होता है।
1: ओके, तो उतना तो नहीं होता, आपने कहा कहीं ना कहीं 3% जो है वो आप डॉक्टर्स बताते हैं, और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग आपने कहा फैमिली की स्क्रीनिंग भी इसीलिए कराते हैं ताकि ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद चूंकि अब मान लीजिए कारण समझ में आ गया और कोई बीमारी है, तो उसके लिए ऑफकोर्स हमारे जो इस वक्त श्रोता हैं, सुन रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि आखिर हर चीज के लिए टेस्ट होते हैं, तो इन बीमारियों को पकड़ने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनके जरिए हमें समझ में आए कि दिल संबंधित बच्चे को कोई समस्या है?
2: देखिए, सबसे पहला टेस्ट तो अगर हम बात करें माँ के पेट में ही अगर बच्चा है तो भी हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं कि बच्चे के दिल में कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी। फीटल मतलब जो माँ के पेट में बच्चा है, और इको मतलब जो दिल की जांच हम लोग करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके हम लोग बच्चे की जांच, माँ के पेट में जो बच्चा है उसके दिल की जांच कर सकते हैं। उसमें बस उसमें ये है कि हम लोग 100% बीमारियाँ नहीं पकड़ पाते हैं, पर हम लोग का मेन लक्ष्य ये होता है कि कोई बच्चे को ऐसा जानलेवा बीमारी तो नहीं है कि उसको डिलीवरी के तुरंत बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े या तुरंत बाद उसकी जान को खतरा हो जाए। तो हम लोग को बहुत छोटा छेद, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, माँ है, माँ के पेट है, पेट के अंदर बच्चा है, और ये भी हम लोग 20 हफ्ते के आसपास करते हैं जब बच्चे का वजन सिर्फ 1 किलो के आसपास होता है या उससे भी कम होता है। तो 1 किलो से कम का बच्चा है और उसका छोटा सा दिल होता है, और उस दिल के अंदर हम लोग को छोटा छेद देखना है, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट होता है, और मशीन्स आप कितना भी एडवांस कर लीजिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन उस मशीन की रहती है।
1: एग्जैक्टली।
2: तो हम लोग का मेन उसका करने का ये होता है कि अगर इसके बच्चे में कोई ऐसा जानलेवा बीमारी है तो वो हम लोग पहले से पता कर सके, और समय रहते वैसे बच्चों को गिराया जा सके, या फिर समय रहते उनको हम लोग रिफर कर सके इलाज करने के लिए कि डिलीवरी के तुरंत बाद उनका इलाज हो जाए। अब ये है कि अगर मान लीजिए उसका अगर डिलीवरी होती भी है तो भी हम लोग के पास क्या, हम कितना इलाज हम लोग अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं, कब उसको रिफर करना है, तो ये सब डिसाइड कर सकते हैं उसमें फीटल इको करके। उसके बाद डिलीवरी अगर होती है, डिलीवरी के बाद में हम लोग एक एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में देख सकते हैं कि दिल बड़ा है, कि दिल में कोई दिक्कत है कि नहीं। एक ECG होता है, जो तारों वाली जाँच अक्सर लोग कहते हैं, तारों वाली जाँच, ECG, और एक इकोकार्डियोग्राफी। ये 3 जाँचों से हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चे के दिल में कोई दिक्कत है कि नहीं।
1: इकोकार्डियोग्राफी, ECG, आपने कहा, ये ऐसी कुछ जाँचें होती हैं जो करते हैं ताकि बच्चे को कोई जानलेवा ऐसा कोई रिस्क ना हो, इस चीज को पता कर लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो भी उसमें भी ये जांच हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि हम सभी को वैसे भी पता है, हम डॉक्टर्स तो नहीं है, लेकिन हमको इतना तो पता है कि भाई ये दिल जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और कई तो मूवीज में और हर जगह डायलॉग्स भी होते हैं कि जब तक ये दिल धड़केगा तब तक सांसें चलती रहेंगी, और ये बात बिल्कुल सच है। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि भाई जिन बच्चों में इस तरह की दिल से संबंधित बीमारियां होती है, क्या वो एक सक्रिय लाइफ यानी एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते? एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम लेंगे इस एड ब्रेक के उस पार। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम सवाल हैं जो कि बच्चों के दिल संबंधित बीमारियों से जुड़े हुए हैं, और उनकी केयर करने संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो हमें डॉक्टर साहब से जानना है, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स, एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
1: एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। जाने से पहले चूंकि हमने कहा था व्हाट्सएप से आने के बाद हम एक बहुत अहम सवाल पूछने वाले कि जिन बच्चों को दिल की बीमारियां होती हैं क्या वो वापस से एक एक्टिव लाइफ जी पाते हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई जिन बच्चों का इस तरह की बीमारियां हैं क्या वो ट्रीटमेंट उनका संभव होता है क्या नहीं होता है, ये आप बताएं।
2: ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि ये कई मेरे मरीज पूछते हैं मेरे से कि क्या बच्चा हमारा नॉर्मल लाइफ जी सकता है या क्या इसका इलाज संभव है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें देखिए आपके बच्चे की बीमारी क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि छेद छोटा है कि बड़ा, तो इस पे आपके लक्षण होता है कि लक्षण बच्चे कितने आएंगे, छोटे छेद है कि बड़ा छेद है, और उस छेद के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि इसको क्या ऑपरेशन की जरूरत है या फिर हम लोग रुक सकते हैं या फिर ये अपने आप भर सकता है। मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि हर छेद एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है आपके बच्चे को 2 मिलीमीटर का छेद हो उसको कोई दिक्कत ना हो, हो सकता है आपके बगल वाले किसी दूसरे बच्चे को 2 मिलीमीटर का छेद हो लेकिन उसको बहुत दिक्कत हो। तो छेद किस जगह पे है, किस तरह का है, क्या शेप है उसका, क्या साइज है, बहुत चीजें उस पर मैटर करती है। सिर्फ एक जो लोगों की धारणा की मिलीमीटर मिला लेते हैं कि हमारा 4 मिलीमीटर का था उसका 3 मिलीमीटर का था, उसके बच्चे को ऐसा हो गया हमारे बच्चे को नहीं हुआ कुछ, तो मिलीमीटर से बातें नहीं बनती हैं, आपको बहुत चीजें देखनी होती है उसमें। तो वो चीजें आपको कोई प्रशिक्षित डॉक्टर ही बता सकता है। तो वो सब देखने के बाद हम लोग ये पता करते हैं क्या बच्चे को ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। तो अगर बच्चे का सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है तो ये बच्चे अमूमन पूरी जिंदगी आराम से जीते हैं, उनमें कोई कमी नहीं रहती है। ये है कि ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद तक हम लोग को कुछ सावधानियां बरतनी होती है कि भाई चीरा टाका लगा है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और कुछ सावधानियां बरतनी होती है कि बच्चे के अंदर हार्ट में कोई दवाई वगैरह चलती है वो सब रेगुलर चले, तो वो कुछ महीनों की बात होती है, उसके बाद में बच्चा अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है अगर ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। फिर इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आधी दवाई छोड़ देते हैं, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आपको बताया जाए दवाई लेने के लिए उतना दवाई पूरा करिए। और इस समय करीब करीब हर हार्ट की बीमारी का इलाज संभव है, बहुत ही कम बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, बट ज्यादा बच्चों के दिल की बीमारियों का इलाज संभव है। यूपी में हम लोग थोड़ा सा कम ये सब देखते हैं कि बच्चों के दिल का ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि अभी उतनी फैसिलिटीज डेवलप नहीं है। बट अगर आप दिल्ली जाइए या साउथ में जाइए, साउथ में तो आप समझिए बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई में तो आज से 25 साल पहले ये सारा काम शुरू हो चुका था
1: जी,
2: और दिल्ली में भी करीब 20 साल से ये सब चल रहा है। यूपी में अभी हाल में सब स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने जो अपनी टीम बनाई है लखनऊ में हम लोग पिछले 5-7 सालों से काम कर रहे हैं, तो अभी कम स्केल पे लेकिन हम लोग इसको बढ़ाएंगे बहुत जल्दी और पूरी सेवा देने की कोशिश करेंगे
1: जी। तो मेरा प्रश्न सीधा सा था कि भाई ऐसे बच्चे जिनको दिल संबंधित कोई समस्या है, बीमारी है, क्या उनका इलाज संभव है, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आपने कहा था ये डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि आप मिलीमीटर देख करके आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि बच्चे को कम है, छोटा छेद है, बड़ा छेद है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रॉब्लम कैसी है। दूसरी बात, आपने चूंकि बताया कि इसमें कुछ सावधानियां भी बरती जानी चाहिए, तो हम सावधानियों पे भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक जहन में एक सवाल आ रहा है। आपने कहा कि बड़े बड़े जो महानगर हैं वहां इसका ट्रीटमेंट आज से 20 साल पहले 25 साल पहले स्टार्ट हो गया है। मुझे भी जहां तक लगता है कि दिल से संबंधित जो बीमारी उसका इलाज तो बड़ा महंगा होता होगा। तो मान लीजिए, क्योंकि अब बीमारी तो किसी को देख के नहीं आती है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा उसके पास बड़ी बीमारी जाएगी और जिनके पास कम है उनके पास छोटी मोटी सर्दी जुकाम है निपट जाएंगे, तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा परिवार जिनके पास नहीं है उस तरह इलाज भर के पैसे, तो फिर उनका क्या होता होगा, वो कैसे कराएं?
2: देखिए जाहिर सी बात है बीमारी बड़ी है तो इलाज भी बड़ा होता है, महंगा होता है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सुविधाएं हम लोग को दी हैं। जैसे गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना है, तो हम लोग अपने अस्पताल में आयुष्मान योजना में सारे ऑपरेशन करते हैं और उनका मेडिकेशंस वगैरह भी कवर होता है आयुष्मान के अंडर में। उसके बाद में कुछ हम लोग के पास एनजीओज होती हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सहायता करती है, तो आप वहां से फंड ले सकते हैं। अगर ये दोनों भी आप नहीं कर पा रहे तो सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा सीएम फंड की दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको आयुष्मान मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से आपको सीएम फंड मिलता है, तो हम लोग सीएम फंड में अप्लाई करवा देते हैं, उसका पैसा 1-2 महीने में सैंक्शन होता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्राउड फंडिंग का बचता है, जो हम लोग आजकल देखते हैं वेबसाइट वगैरह पे बहुत ऐड आता है
1: जी।
2: क्राउड फंडिंग से भी लेके लोग सर्जरीज कराते हैं, और अगर आप अपने में समर्थ है तो आप वैसे भी करा सकते हैं किसी भी अस्पताल में। फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, टीपीए है, आप उनसे भी जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह कि आज के टाइम में जितना हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, कोई भी

0: उनका खुद ऐसे फंड्स में अप्लाई कर देते हैं या ऐसी जगह से ताकि उनके जो बच्चे का ट्रीटमेंट है वो आराम से हो सके। चलिए, बहुत अहम चूंकि सवाल था और आपका जो उत्तर है वो उससे भी काफी ज्यादा अहम है, हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल है कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसको दिल संबंधित कोई बीमारी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पेरेंट्स उस दौरान ऐसी बीमारियों में देखभाल के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी बात है, इस पे हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: इसमें जैसे अगर आपके बच्चे का छोटा छेद है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, तो उनको तो हम कहते हैं कि आप इसको नॉर्मल जिंदगी जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं रहते हैं एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह, कि इसको आप बताइए नहीं कि इसके दिल में कुछ है, और वो उम्र के साथ धीरे धीरे भर जाता है। अगर दिल में ऐसी कोई दिक्कत है जो अपने आप नहीं ठीक हो सकती दवाइयों से या फिर अपने आप उम्र के साथ नहीं ठीक हो सकती है, तो उनमें कुछ हम लोग उनको बोलते हैं कुछ आप कुछ एहतियात बरतिए जब तक कि आपका ऑपरेशन का समय नहीं हो रहा है, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं हो जा रहा है। जैसे इसमें आपको सर्दी से बहुत बचाना होता है क्योंकि ऐसे बच्चों को निमोनिया बहुत जल्दी होता है, जकड़न बहुत जल्दी होती है, तो आपको सर्दी से बचाना है। छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आप उसको जाके एक बार डॉक्टर को दिखा के उनसे आप दवाई लीजिए प्रॉपर, क्योंकि वो इन्फेक्शन हार्ट के अंदर दिल के अंदर जा सकता है और फिर आपका बीमारी बढ़ सकता है। या ऐसे बच्चों का क्योंकि वजन नहीं बढ़ता है तो उन लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना होता है, ज्यादा दूध पिलाना होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको खाना देना होता है, जो हम लोग बोलते हैं फोर्टिफिकेशन करना होता है, घी वगैरह अधिक देना होता है थोड़ा सा, ताकि उनका वजन बढ़ सके। बाकी अगर मैं सबको राय देता हूं कि अगर आपके बच्चे के दिल में छेद है और आपको लगता है बच्चे कोई दिक्कत हो, जाके डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनसे जरूर सलाह लें, अपने आप से दवाई और लोकल अनट्रेन डॉक्टर्स या अनट्रेन प्रोफेशनल से दवाई ना लें
0: जी।
1: और ऑपरेशन के बाद में हम लोग का कुछ 6 से 8 महीने का टाइम होता है जिसमें एहतियात बरतना होता है। यही सारे एहतियात होते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि भाई किसी का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसका जो टाका लगा है टाका पक सकता है, तो आपको कुछ उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन से बचाना होता है और साफ सफाई रखनी होती है, इतना केयर करना होता है, बाकी 6-8 महीने में बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है
0: जी। तो आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि जैसे मान लीजिए जुकाम होता है, कोल्ड होता है, सर्दी खांसी, उससे बचाना होता है, दूसरी बात इन्फेक्शन होने से बचाना होता है, जिसको लेकर के आप लोग रिकमेंड करते हैं कि साफ सफाई रखें। बच्चे को अगर दिल संबंधित बीमारी है, अगर मान लीजिए कोई बड़ी दिक्कत है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे की एक्टिविटी को लिमिटेड कराते हैं कि बहुत ज्यादा दिल पे जोर ना करें ताकि हार्ट को इतना पंप करने की जरूरत पड़े। बिल्कुल बेशक, तो ये बहुत अच्छी सावधानियां हैं जिनको रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, दो तरीके होते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को करने को। सबसे आसान तरीका होता है कि भाई मुझे दिक्कत थी, मैं आपके पास आया, आपने मुझे दवाएं लिख दी कि आप साहब इसको 1 महीने से 2 महीने खाइए और आप सही हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दवा तो नहीं होगी, इसकी सर्जरी ही करना पड़ेगा। इसको लेकर के बताइए, क्या ये जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं क्या सिर्फ दवाओं से सही हो सकती हैं या कुछ केसेस में ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी होती ही है?
1: देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको छेद और वाल्व का दिक्कत देखना पड़ेगा कि ये छोटा मोटा है या फिर ज्यादा है। छोटे मोटे को हम लोग खुद ही मना कर देते कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और बहुत बार तो कोई दवाइयों की भी जरूरत नहीं होती, और जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो वो छेद ठीक हो सकता है। अगर बच्चे को दिक्कत हो रही, जैसे एक इसमें बहुत साफ लक्षण है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, मतलब आपने हर तरह से बच्चे को दूध पिला लिया, खाना खिला लिया, उसके बाद भी अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो अगर किसी भी दिल के छेद वाले बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसको ऑपरेशन कराना है। या फिर अगर आपके बच्चे नीलापन आता है तो फिर वैसे बच्चों को ऑपरेशन कराना होता है। हाँ, ये है कि हम लोग कभी कभी थोड़ा सा डीले करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग को सब कुछ देखना होता है कि इस समय बच्चे के इस समय जो स्थिति है, उसका वजन जो है, उसकी सेहत जो है, क्या इसमें ऑपरेशन का खतरा ज्यादा है या हम लोग वेट करेंगे तो खतरा ज्यादा है। तो वो हम लोग हर बच्चे का अपने अपने लेवल पे उसको एनालाइज करके और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या हम इस बच्चे को अभी जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए या इसको हम लोग कुछ दिन वेट करा सकते हैं, कुछ दिन रोक सकते हैं। क्योंकि भाई अगर बच्चे की सेहत अच्छी होगी, थोड़ा तंदुरुस्त होगा, वजन ज्यादा होगा, तो उसको वो ऑपरेशन झेलने की क्षमता भी शरीर के अंदर होती है, क्योंकि ये छोटा ऑपरेशन तो है नहीं भाई, आपका बड़ा ऑपरेशन होना है, तो वो शरीर में क्षमता होनी चाहिए उतना दर्द झेलने का। इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है हम लोग को
0: जी। तो पहली चीज तो आपने कहा कि अगर छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उसमें दवाओं से भी काम चलता है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि बड़ा ही नेचुरली बात है और ये खुद ब खुद चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन जहां मामला थोड़ा सा गंभीर होता है, वहां पे सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करने से पहले आप ये देखते हैं कि बच्चे की बॉडी उस लायक है, इस ऑपरेशन को झेल पाएगी या नहीं पाएगी, या शायद जल्दी करना होगा, नहीं तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप ट्रीटमेंट करते हैं जी।
1: अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि एक लोगों की बहुत धारणा होती है कि अरे बच्चा भी बहुत छोटा है, अभी कहां ऑपरेशन करेंगे, या थोड़ा 6 महीने का हो जाता है ऑपरेशन कराएंगे, 2 साल का हो जाता है ऑपरेशन कराएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग को अगर जरूरत होती है तो हम लोग 1 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन करते हैं, और अगर जरूरत नहीं होती तो हम लोग 20-20 साल तक भी ऑपरेशन टालते हैं। तो वो बच्चे की सेहत के ऊपर है और बच्चे की कौन सी बीमारी है। बहुत ऐसा नहीं कि दिल में छेद मतलब छेद हो गया, एक ही बहुत जो बीमारियां होती है बहुत प्रकार की होती है, 50-60 तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन आम जनता उसको सब चीज़ को दिल में छेद कहती है। तो हर चीज़ को सिंपल भाषा में समझाने के लोगों को दिल में छेद कह दिया जाता है, पर बीमारियां बहुत तरह की होती हैं। तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको

0: के एक या दो दिन के अंदर ऑपरेशन की जरूरत होती है, उनको भी हम लोग करते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग डिले भी करते हैं ऑपरेशन को। तो ये कहना बहुत गलत है कि 5 किलो का हो जाएगा तब ऑपरेशन होता है, नहीं, 6 महीने का हो जाएगा तब ऑपरेशन करेंगे, नहीं, वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर है कि उसको ऑपरेशन कब लगेगा।
1: एग्जैक्टली, ये बहुत ही अहम बात आपने बताई है हमारे श्रोताओं को, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जब जरूरत होती है तभी ऑपरेशन करना होता है, और डॉक्टर्स का काम ही यही होता है कि उनको ये पता होता है कि भाई टेस्ट करने के बाद बच्चे को कब ऑपरेशन करना है या कितना दिन कितने साल टालना है। आपने ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि 20-20 साल आप टालते रह जाते हैं, और कुछ का ऐसा भी होता है कि भाई बच्चा एक ही दिन का है, बहुत छोटा है, चूंकि उसकी जान बचानी है तो हो सकता है आपको एक ही दिन में वो ऑपरेशन करना होगा। बिल्कुल, और हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपकी। इसके बाद अब चूंकि वही वापस से थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न है, क्या इस ऑपरेशन के बाद अगर मान ली बच्चे का कोई ऑपरेशन होता है तो क्या पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं?
0: अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है, उसमें कोई कमी नहीं है, ऑपरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ऐसे बच्चे नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हम लोग के पास फॉलोअप में ऐसे बच्चे हैं जिनको 15-15 साल हो गया है ऑपरेशन को, और आज देख के कोई बता नहीं सकता कि इनका कभी दिल का ऑपरेशन हुआ था। अगर माँ बाप बच्चे को ना बताए कि बेटा तुम्हारे दिल का ऑपरेशन हुआ था जब तुम 6 महीने के थे, तो बच्चे को भी नहीं मालूम होगा उसके दिल का ऑपरेशन हुआ था।
1: एग्जैक्टली, मतलब यहाँ भी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम करती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पेरेंटिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या बताना जरूरी है और किन बातों को ना ही बताया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। अच्छा, चूंकि हार्ट डिजीज की डॉक्टर साहब बात हो रही है, और देखने में आता था कि पहले जब लोग काफी ओल्ड होते थे तो उनको हार्ट अटैक होता था, फिर उसके बाद देखने में आया कि भाई अब जवान लोगों को भी बहुत तेजी से हार्ट अटैक आता है, लेकिन अब तो इधर ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो इनके कुछ रीजन होंगे, तो क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में हार्ट अटैक जैसी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है?
0: देखिए, इसमें 2-3 बातें मेन हैं। एक तो अपना हम लोग का जो खान पान है, रहन सहन है, थोड़ा सा तो खराब हुआ है पहले कंपेयर में। हम लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, व्यायाम कम करते हैं, तो इसलिए जो यंग पॉपुलेशन है हमारा, जो 20 साल 25 साल 30 साल में भी हम लोग को बहुत सारे हार्ट अटैक की बीमारियां देखने को मिलती हैं। हार्ट अटैक जो होता है बड़ों में वो होता है क्योंकि जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और नसें ब्लॉक होती हैं आपका क्योंकि उसमें तेल और फैट जो होता है, फैट जमने लगता है तो नसें ब्लॉक होने लगती हैं। तो ये चीज हम लोगों को अब 30 इयर्स 35 इयर्स 25 इयर्स में भी देखने को मिला है, यहाँ तक कि 3 नसें जो मेन होती हैं तीनों में ब्लॉकेज हम लोग को देखने को मिलता है। ये तो अपने में हो गया जो थोड़ा सा बड़े 20 साल 25 साल जवान लोगों में
1: जी।
0: बच्चों की एकदम बात करें तो बहुत छोटे बच्चों में, जो स्कूल गोइंग बच्चों हैं, उन बच्चे हैं, उनमें भी हार्ट अटैक होता है, पर इसमें होता क्या है कि कई बार जो बच्चे, अगर उसको कोई दिक्कत हुई है, सपोज जैसे कि अगर स्कूल में कोई बच्चा बेहोश हुआ और खुदा ना खास्ता उसकी मौत हुई कहीं ले जाते में, अस्पताल ले जाते में, तो एक हम लोग अक्सर लिख देते हैं अस्पताल में कि उसको कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना,
1: कार्डियक अरेस्ट जी।
0: तो कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक ये दोनों सेम नहीं होता है।
1: ओके।
0: हार्ट अटैक एक बीमारी होती है, कार्डियक भाई कोई भी जीव अगर मर रहा है तो उसका दिल तो बंद होगा ना।
1: एग्जैक्टली।
0: तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक हार्ट, अरेस्ट मतलब बंद, तो वो मरने के पहले कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आप उसको हार्ट अटैक का नाम कह देना वो अलग चीज हो गई, हार्ट अटैक हो गया कि भाई उसको बीमारी थी दिल की।
1: Exactly.
0: तो एक ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि जब आपको बीमारी का पता नहीं होता है तो हम लोग को उसमें लिखना पड़ता है कार्डियक अरेस्ट कॉज ऑफ डेथ में, तो फिर उसको मीडिया कर देती हार्ट अटैक, तो वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है एक तरह से। और दूसरा, बच्चों में हार्ट अटैक ऐसा नहीं कोई नई चीज है, ये पहले भी होता था। अगर आपको याद हो गोंडा में बहुत साल पहले एक हम लोगों ने एक स्कूल में हुआ था ऐसा इंसिडेंट की रेस के दौरान एक बच्चा बेहोश हो गया था और फिर जब तक अस्पताल पहुंचा तो वो एक्सपायर हो गया
1: जी।
0: तो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा गया? कार्डियक अरेस्ट। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट हुआ सब जगह? कि उसका दिल फेल हो गया।
1: एग्जैक्टली।
0: तो इसमें जो कहते हैं कार्डियक अरेस्ट का रीजन क्या हो सकता है, भाई अगर उसको झटका आया है, झटका मतलब कि दिमाग की कोई बीमारी है, उससे वो गिरा, फिर उसका हार्ट बंद हुआ और उसका कॉज ऑफ डेथ हो गया कार्डियक अरेस्ट। उसको अगर निमोनिया था, कोई जकड़न था कूल में, फिर उससे बेहोश हुआ, उससे उसकी मौत हुई, तो भी उसका कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। दूसरा, जो जेन्युइन जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो भी होते थे। जो हम लोग का एक अमेरिका का स्टडी है जिसमें उन्होंने 15 साल तक एक जिले में देखा, तो उन्होंने ये पाया कि हर जिले में, 15 साल की स्टडी है, ये लंबी स्टडी है, कि हर जिले में एक हार्ट अटैक होता है ओवर द स्पैन ऑफ 15 इयर्स। तो अगर इंडिया में 750 जिले हैं और हर जिले में एक हार्ट अटैक होना है साल में, तो 750 केस तो वैसे ही होने हैं इंडिया में हर साल। तो पहले ये था, कोविड के पहले जब हम लोग इतना ज्यादा फोन नहीं देखते थे, इतना इंटरनेट पेनिट्रेशन हम लोग के पास में नहीं था, घर घर में आपके हाथ में एक न्यूज का माध्यम नहीं था आपके हाथ में, तो आपको नहीं पता चलता था। आप भी देखिए, जैसे मैंने भी एक डेटा कलेक्ट किया था पिछले 10 सालों का, तो एक केस अहमदाबाद में था, एक चेन्नई में था, एक कोची में था, एक अपना लखनऊ में था, एक कहीं जम्मू की साइड में कहीं था। तो अब अगर आप आज से 15 साल पहले जब हम लोग छोटे थे
1: जी,
0: तो हमको लखनऊ के अलावा और कहीं का नहीं पता चलता।
1: एग्जैक्टली exactly.
0: लेकिन आज के टाइम में कहीं भी कुछ भी होता आपको तुरंत पता चलता। और फिर प्लस गूगल का और सर्च इंजन का जो अपना वो है कि अगर आपने एक न्यूज वैसी देख ली तो आपको फिर सारी न्यूज वही आती रहेगी,
1: एल्गोरिदम।
0: तो वो एल्गोरिदम आपको सारे वही न्यूज दिखाता रहेगा बार बार। तो आपको लगा बाप रे कितना हार्ट अटैक हुए जा रहा है, ऐसा लग रहा है लोग गिरे जा रहे हैं यहाँ वहाँ, पर वैसा नहीं है। थोड़ा सा बायसिंग उसमें भी हम लोग का न्यूज एल्गोरिदम से जो हो जाता है
1: जी।
0: ये कोई नई चीज नहीं है और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, तब भी होता था, बस हमको पता नहीं चलता था। और थोड़ा सा जो यंग एज में जो बड़े लोग हैं उनमें थोड़ा तो हार्ट अटैक इंसिडेंस बढ़ा है हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से।
1: ओके, तो मतलब सीधी सी बात अगर हम बताएं तो लाइफ स्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। जो आपने कहा कि बिगड़ती लाइफ स्टाइल है उससे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर देखी जा रही है। छोटे बच्चों को लेकर के अगर इसको देखा जाए तो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको मद्देनजर रखते हुए?
0: ये चीज हम लोग सबको बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को कोई दिल में दिक्कत है या मान लीजिए नहीं भी दिक्कत है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि बच्चे को कभी भी आपको फोर्स नहीं करना है। वो अपने सामर्थ्य से जो भी एक्सरसाइज कर सके जितना कर सके, और अगर आपको उसको मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कल तक वो अपना नॉर्मल करता था, सडनली एक दिन बोला बेटा 10 किलोमीटर भागना शुरू कर दो। वैसे नहीं होता, आपको ग्रेजुअली बिल्डअप करना है ताकि उसके बॉडी का स्टेमिना धीरे धीरे बढ़े, उसके मसल्स बने धीरे धीरे। आप सडनली अगर किसी को अचानक से एक दिन बोल देंगे जाओ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भागो, तो नॉर्मल आदमी कोई भी होगा वो थक के गिर जाएगा। किसी को भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को भी जो है अपना हार्ट फेल हो सकता है उसका। तो ग्रेजुअल एक्सरसाइज बिल्डअप बहुत जरूरी है, फोर्स नहीं करना है, और बच्चों को जो है उनके अपने सामर्थ्य और अपने स्टेमिना के हिसाब से एक्सरसाइज कराना है। तो इसमें जैसे कुछ जिन बच्चों के दिल में छेद होता है उनका थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टेमिना कम होता है, तो इसलिए मैं अपना जब प्रिस्क्रिप्शन देता तो कई लोग मेरे को बोलते थे, कल परसों एक बच्चा मेरे पास आया था, तो उसके पिताजी कह रहे थे कि इसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका दिल में छेद है, तो वो कुछ आपका फिटनेस मांग रहे हैं। तो उसमें फिटनेस में हम लोग लिखते हैं कि स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन इसको कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज मतलब जो बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वाला कि बाकी 4 बच्चे भाग रहे हैं उनके बराबर भागो,
1: exactly.
0: वो उससे नहीं कराना है। वो जितना अपना समर्थ से कर सके करेगा, जब वो थक जाएगा अपना बैठ जाएगा, उसको फोर्स नहीं करना है किसी एक्सरसाइज exactly. के लिए। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया कि ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस जो है वो करा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को लेकर के स्पेशली फोर्स नहीं करनी है, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। और आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं आम बच्चों के मुकाबले ऐसे बच्चे जिनको दिल में छेद होता है या दिल से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उनका स्टेमिना कम होता है, तो अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि जिन बच्चों को शुरुआत से ही मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम होती है, दिल में छेद जैसी प्रॉब्लम, तो क्या इसका खाने पीने के दौरान भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
0: तो इसमें खान पान में जिन बच्चों के दिल में दिक्कतें होती हैं उनके साथ में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनका वजन कम होता है, उनका वजन धीरे बढ़ता है, जो भी खाना वो लोग खाते हैं वो उतना जल्दी शरीर पे नहीं लगता है, तो हम लोग को थोड़ा सा अधिक कैलोरी उनको देनी होती है, थोड़ा सा अधिक प्रोटीन देना होता है ताकि उनका वेट गेन हो सके। और क्योंकि जब वेट गेन होगा तभी बच्चे की मांसपेशी बढ़ेगी, जब मांसपेशी बढ़ेगी तभी वो छेद बंद होगा, जब तक मांसपेशी बढ़ेगी नहीं वो छेद अपने आप नहीं बंद होने वाला है। ये मैं जैसे मैं अपने मरीजों में भी ये कहता हूँ सबको कि उनको मैं लिख के देता हूँ कि इसका वजन इतना है, इसका कम से कम इतना ml दूध तो आपको पिलाना ही पिलाना है, नहीं पिलाएंगे तो वजन नहीं बढ़ने वाला है, वो मैं टारगेट देता हूँ उनको। फिर जब उतना दूध पीने से उनका थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, 1-2 हफ्ते में वो आते हैं, तो फिर उनका टारगेट रिवाइज किया जाता है कि अब इतना ml देना है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए किसी का तीसरा बच्चा इसके दिल के में छेद है, बाकी 2 बच्चे नॉर्मल थे, तो उसको उन बच्चों की आदत है जो अपना 300 ml 400 ml पी के भी वजन अच्छे से बढ़ा लेते हैं, अच्छे से खेलते हैं, चलते हैं, दौड़ते सब करते हैं, तो वो अपनी मेमोरी में या अपने घर वालों को उसको लगेगा कि इसको भी तो हम काम भर का पिला ही रहे हैं, इसको भी तो हम 300 ml पिला रहे हैं, इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो चीज फिर मुझे समझानी पड़ती है कि नहीं, इसका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये क्योंकि इस बच्चे के दिल में होल है, ये उतना कैपेसिटी से अपना वजन नहीं बढ़ा सकता है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालना होता है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होता है। तो उनमें मैं उनका कैलोरी का टारगेट, प्रोटीन का टारगेट वो बना के देता हूँ, और फिर उस हिसाब से वो लोग उसको दूध पिलाते हैं। जिन बच्चों का वजन बढ़ जाता है तो उनका हो सकता है अच्छे छोटा भी हो जाए, और अगर इतना करने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है तो फिर हो सकता है कि इस बच्चे को सर्जरी की जरूरत है।
1: ओके, तो ये एक बहुत जरूरी जानकारी आपने दी कि डाइट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और स्पेशली जिन बच्चों को दिल में छेद संबंधी बीमारियां होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो स्टेमिना होता है एक तो वो कम होता है, दूसरी बात है कि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ताकि और बच्चों के मुकाबले वो भी धीरे धीरे करके रिकवर करे, लेकिन अगर उसके बावजूद चीजें नहीं हो रही होती तो कहीं ना कहीं फिर एक ऑप्शन आता है सर्जरी का, वो बचता है और वो कराया जाता है। क्योंकि अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ हैं डॉक्टर साहब, तो आखिरी प्रश्न जस्ट हम आपसे ऐसे ही जानना चाहेंगे कि क्या बच्चों को व्यायाम जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, दिल संबंधी कोई भी बीमारियां हैं, तो ये आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं और किस तरह की एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा अवॉइड करें अगर ऐसा कोई बच्चा है तो।
0: इसका बहुत सिंपल ट्रिक होता है जो पहले ही बताया मैंने, जितना बच्चा अपनी समर्थ से कर सके उसको उतना ही कराना चाहिए, फोर्स नहीं करना है आपको। क्योंकि जब भी आप फोर्स करेंगे, जब भी आप जबरदस्ती करेंगे बच्चे के साथ में, तो उसके दिल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है। तो अगर किसी का दिल पहले से वीक है तो वो उतना लोड नहीं ले सकता है, तो फिर उसको दिक्कतें होती हैं, उसकी सांस फूलेगी, उसको हो सकता है भर्ती भी कराना पड़ जाए। बच्चे को प्यार से जितना तुम्हारा समर्थ है, जितना बच्चे का समर्थ है, उस हिसाब से एक्सरसाइज कराइए।
1: ओके, मतलब ये बहुत सिंपल से आपने बता दिया कि भाई जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना स्टैमिना उतना करेगा। एक सवाल और आता है कि मान लीजिए बच्चा कोई टीनेजर हो गया है और उसको भी दिल संबंधित कोई बीमारी है, तो जो जिम जाने का आजकल कल्चर है काफी ज्यादा है, और जिम में इवन ये भी देखा गया कि लोग बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हुए सच में कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद खत्म हुए हैं, तो स्पेशली जिनको दिक्कत है दिल संबंधित बीमारी ऐसे टीनेजर बच्चों के, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
0: हम लोगों ने जितना भी इसमें देखा है इंसिडेंस, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि वो जो भी युवा जो भी एक्सरसाइज कर रहा था, वो हमेशा अपने को दिखाने के लिए या तो बहुत हैवी वेट्स कर रहे थे, या बहुत फास्ट रनिंग कर रहे थे, या किसी से कम्पीट कर रहे थे। तो इसमें भी हमारा वही फंडा आता है कि आपको किसी से कम्पीट नहीं करना। भाई आपके हर्ट में अगर दिक्कत है, आपको पता है आपके हर्ट में दिक्कत है, तो आप फिर अपनी बॉडी को क्यों एक्स्ट्रा फोर्स कर रहे हैं कि उसको, भाई अगर किसी भी उस पर आप ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो रस्सी टूटेगी।
1: एग्जैक्टली।
0: तो अगर आपकी रस्सी पहले ही कमजोर है तो उस पर आप क्यों उतना भार दे रहे हैं? तो कभी भी कंपेयर नहीं करना है, आप अपने हिसाब से, अपने समझ से, अपने स्टेमिना के हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए।
1: बिल्कुल। तो जैसे मैं अपने शो में बोलता हूँ कि भाई कंपैरिजन, चूंकि मैं बाकी चीजों को लेकर के बोलता हूँ, कभी भी नहीं करना चाहिए पढ़ाई को लेकर के, ना बच्चे से किसी को कराना चाहिए, ना खुद से कभी इस तरह कंपैरिजन खुद का करना चाहिए किसी और से, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हैं, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अपनी स्किल सेट है, सब कुछ आपका अपना एक इंडिविजुअलिटी है। एंड चूंकि अब एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से आपको है पूछने के लिए कि डॉक्टर अभिनव अग्रवाल का लाइफ मंत्र क्या है, अगर कुछ शब्दों में बताना चाहे तो हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं।
0: मैं अपने घर में भी ये बोलता हूँ, अपने अपने फैमिली में भी और अपने पेशेंट से भी, कि खुश रहना चाहिए। भाई आप कम कमा रहे हो पर आप खुश हो तो इट्स वेल एनफ। अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और खुश नहीं हो, तो फिर क्या फायदा उस पैसे का और उस मेहनत का। तो खुश रहना चाहिए। जैसे मेरे बच्चों में भी कई बार होता है, मेरी वाइफ कहती है कि जो है इसको ये करा वो करो, देखो ये गंदा कर रही है, मतलब खुश रहने दो ना उसे, ठीक है थोड़ा गंदगी कर रही, खुश तो है। क्योंकि हम अपने बच्चों को खुश रहना सिखा देना, तो उससे ज्यादा कुछ आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई, क्योंकि देखिए आप आज के टाइम में फाइनली इतना साइकेट्री की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? लोग अपना बड़ा बड़ा कंपनी बना लिया, हजारों करोड़ कंपनी बना ली है, तो भी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। कोई अपना फैमिली से दुखी है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, कोई अपने वर्क प्लेस में दुखी है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, फाइनली खुश नहीं है। तो अगर, और ये हमेशा से इंडियन कल्चर में हमेशा रहा है, इंडियन कल्चर में कभी भी पैसे को और पावर को वेटेज नहीं दिया है, उन्होंने ज्ञान को और आपके, आप कितने अपने में संतुष्ट रहते हैं उसको इंडियन कल्चर हमेशा से फोकस किया है। तो आपको अपने में संतुष्ट रहना सीखना है और अपने में खुश रहना सीखना है।
1: क्या बात है। तो भाई चूंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना है कि आप जिस तरह स्ट्रेस कर रहे हैं खुशी को लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है, और एक पेरेंट होने के नाते आप बच्चों के लिए भी यही सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने कहा कि आपका भी लाइफ मंत्र है कि आप खुश रहते हैं और बच्चों के लिए भी आप सोचते हैं कि खुश रहें, और मेरी तरफ से एक एडवाइस अपने श्रोताओं को कि अगर आपकी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसका नाम खुशी रख लिए, वैसे भी आप खुश रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टू यू, इतना कीमती चूंकि आपने वक्त निकाला, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमको टाइम दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल लास्ट, जाने से पहले, आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में, जो कि इस पूरे मंडल देवी पाटन मंडल का पहला FM और गोंडा का भी पहला FM है। क्योंकि आप बतौर पीडियाट्रिक्स, आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे FMs हैं, लेकिन गोंडा का चूंकि ये पहला FM है, तो क्या लगता है आपको कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है?
0: देखिए क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं की है, तो मैं उस टाइम गोंडा में रहा जब गोंडा में कुछ भी नहीं था, तो हम लोग को तब भी FM की कमी खलती थी। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से लखनऊ जाते थे तो घाघरा क्रॉस करने के बाद में FM का सिग्नल था, हम लोग वेट करते थे कि भैया सिग्नल आ जाए तो हम लोग FM सुनना शुरू करें।
1: एग्जैक्टली।
0: आज ये फैसिलिटी अगर गोंडा में अवेलेबल है, और प्लस FM का रोल एंटरटेन से ज्यादा इंफॉर्मेशन में होता है कि आप घर घर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, जो बाकी लोग जाके मतलब पर्सनली बताएं तो हो सकता है उनको हजारों साल लग जाए वो सारे घर कवर करने में।
1: एग्जैक्टली।
0: तो जैसे जो मैंने ही आज जो इन्फॉर्मेशन बताई है, आप अगर उसको गोंडा में कुछ नहीं तो आराम से 1-2 हज़ार घर में तो पहुंचा ही दिए होंगे। अगर मैं अपने से कोशिश भी करूँ एक एक घर जाने का तो मेरे को 10 साल लग जाएंगे कोशिश करने में। तो इसीलिए FM एंटरटेनमेंट का माध्यम तो है ही, लेकिन वो एक जरूरी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेटिव शो जरूर होना चाहिए FM के ऊपर, और जिसमें आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफकोर्स हमें आप लोगों की विशेष चाहिए, और जिस तरह से हम एक इनिशिएटिव लेकर स्टार्ट करे हुए हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, यही है कि अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए, अपने देश के लिए हम वैल्यू ऐड कर पाए और जो बेहतर चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचा पाए, और शायद उसी कड़ी में हम लगातार कार्यरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम एक बार वापस से अपने श्रोताओं को बता दें कि आज के इस स्पेशल गोधली प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आए और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सरलता और सहजता के साथ में आंसर दिया।
0: चलो थैंक यू, इट वॉज माई अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि मेरे को यहाँ पे आने का अवसर मिला।
1: थैंक यू सो मच। और अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि कल वापस से हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ में, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से जानने को मिलेंगे, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने को मिलेगा। सो फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा वाला FM रेडियो 99.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा, शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
15: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
14: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
15: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
14: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
15: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
16: अरे सुना?
17: क्या?
16: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
17: वाओ!
16: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

किसी को गलियां भाती हैं तो कोई किसी गली में पैर नहीं रखना चाहता, और किसी को घर से निकलते ही दूसरी गली में उसके प्यार का पता मिल जाता है। वैसे गलियां जो है ना, हम किसी ना किसी मुकाम को ढूंढ लेते हैं। तो गली गली शोर है, और आप सभी को पता है कि इंडिया में आजकल इलेक्शन का जोर है और इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। और भाई, अपने हीरो विजय को देख के आपके अंदर तो बड़ी खुशी होगी कि आपके विजय जी जीत गए हैं, पर मुझे इस बात का मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग वो लग रहा है कि मतलब इस बार के रिज़ल्ट काफ़ी अलग रहे, मतलब जैसे लोगों ने उम्मीदें की थी उससे अलग। तो देखिए, रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि अगर आप कुछ बदलाव अपने लेवल पे नहीं ला सकते तो आप सिस्टम तो ज़रूर बदल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप अगर चाहें और हम अगर चाहें तो दुनिया में हमारे आयाम बदल सकते हैं, और उन आयाम को बदलने के लिए बस एक सोच काफ़ी है। तो सोच बदलने के लिए अगर आपको कोई भी ज़रिया नहीं मिलता तो सिर्फ आप ट्यून करिए ज्ञान सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो देखिए, हर जन्म की बात करते हैं तो हर जन्म में हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, और जन्म जन्म जन्म साथ चलना मेरे। पर एक गाना है जिसे सुन के हमेशा से एनर्जी आती है, हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम चलते, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो ये गाना कहीं ना कहीं कई सारे गानों की कॉम्बिनेशन है। तो आज कॉम्बिनेशन वाला दिन है, यानी कि अंताक्षरी वाला दिन है। आप सभी का स्वागत है आपकी आरजे बीना के साथ आपके शो गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला में। कई सारी बातें इधर उधर की घुमाते हुए करते हुए मैं पहुंच चुकी हूं जैसे कि अंताक्षरी में। अंताक्षरी में क्या होता है, यूजुअली आप लोग क्या करते हैं कि टू द पॉइंट बात करते हैं, पर अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, आपकी वाली अंताक्षरी की, जिसमें ना सिर्फ आप गाने गाते हैं बल्कि अपने जज्बातों का भी इजहार करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आज है 6 मई, और 6 मई में आपने एंट्री मारे, कुछ घंटे बिता दिए हैं, और अभी हो रहे हैं 6:13 शाम के। और आज जैसा कहते हैं ना कि गर्मी ने एहसास दिला दिया कि नहीं नहीं भाई, आप जो कहते हैं ना कि डिलेमा में चले गए थे ना कि हाँ ठंडी आ गई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी अभी भी वैसी की वैसी है, बस मौसम बदल रहा है, रंग बदल रहा है, पर जन्म अभी वही चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज का जो वेदर रहा वो काफ़ी अलग रहा कल के हिसाब से, कल काफ़ी ठंडा सा मौसम था, पर आज जो है वो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग है। सो आज स्पेशल डे है उन लोगों के लिए जो लोग खाने पीने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी कि ये फोकस करता है आपकी हेल्थ एजुकेशन को, आपकी बॉडी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड को। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या मतलब, कोई अपनी हेल्थ को लेकर नेगेटिव रहता है, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं मस्त रहूं, लेकिन एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड, हाँ भाई एटीट्यूड वही है जो आप अपनी हेल्थ को लेके अनकंसर्न रहते हैं, मतलब कि समोसे ठूसते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम डाइट पे हैं, जी हाँ। तो अपनी हेल्थ को लेके आपको सजग होना है, यही आज के दिन का उद्देश्य है। और कई बार हम लोग चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, नेग्लेक्ट भी करते हैं, और मेंटली कभी कभी हम लोग फिट नहीं होते तब भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपको अपनी बिजी लाइफ से छोटा सा ब्रेक लेना है और अपने डाइट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना है, ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर खाने पीने में

आप बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम करिए भाई, खाना पीना सब कुछ चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ भाई, चाय भी पियो समोसा भी खाओ, लेकिन रोज़ नहीं, महीने में एक बार समोसा खा लो और कभी बर्गर खा लो। मतलब फ्रीक्वेंटली आपको नहीं खाना है कि हर हफ्ते समोसे चल रहे हैं, हर हफ्ते कुछ लोग तो हर दिन खाते हैं, क्या पता नहीं मतलब इम्यून सिस्टम क्या है। मैं तो बारिश ना हो तो मैं समोसे ना खाऊं, तो मेरे लिए बारिश इक्वल टू समोसा होता है। अब आप ये मत कहिए कि रोज़ बारिश होगी तो रोज़ खाएंगे, नहीं, बारिश के मौसम में एक बार खाने का मन करता है। एंड आई नो दैट आप लोग का भी मन करता ही होगा, नो डाउट। तो हाँ, बारिश की बात कर ली, और अब आज मतलब आज मैं भी मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा सा बंगाली टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, क्या करें, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट इतना बढ़िया सा रहा, अलग सा रहा, मतलब बढ़िया क्या अलग रहा। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है कैसे करती है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन चेंज जो है वो थोड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो कपड़ों को बदल के हम चेंज अपनी ज़िंदगी में ले आए, चाहे वो सोच को बदल के ले आए, लेकिन चेंज ज़रूरी है। तो आज नेशनल बेवरेज डे है, यानी कि आज आपको अपनी फेवरेट ड्रिंक भी यूटिलाइज करनी चाहिए। मैंने तो भाई अपनी फेवरेट ड्रिंक यानी कि मैंगो शेक पी लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ मुझे सत्तू का शरबत भी बहुत पसंद है, तो वो भी मैं सुबह ही पी के आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है सुबह, मतलब जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। बेसिकली आज हेल्थ के लेके भी एक कह सकते हैं अवेयरनेस डे है, वैसे ही ड्रिंक की बात हो रही है तो मैं भी हेल्थ कॉन्शियस ड्रिंक की बात करूँगी। सुबह के टाइम क्या होता है, मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल जो बिजी होता है, टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, तो मैं अपने लिए एक मतलब शेक बना के तैयार रखती हूँ, आप सत्तू शेक बोल सकते हो उसे। क्या करती हूँ, सत्तू का पाउडर लेती हूँ, 2-3 चम्मच ग्लास में डाला, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला, नींबू का थोड़ा सा रस डाला, पानी डाला ठंडा सा, मतलब ठंडा क्या एवरेज ही डाला, उसके बाद उसमें पुदीना की पत्ती वगैरह जो भी जो अवेलेबल है टाइम के अकॉर्डिंग फटाक से डाला, घुमाया उसको अच्छे से, स्टिर किया, फिर उसको कंज्यूम कर लिया। तो पहले चीज़ तो मैं हाइड्रेटेड रहती हूँ, दूसरी चीज़ सत्तू जो है चने का होता है वो हमारे अंदर प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करता है, मज़ा आ जाता है कुल मिला के। तो अगर आपको भी कोई हेल्दी ड्रिंक की तरफ जाना है तो आप सुबह इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, या चिया सीड की ड्रिंक बना के पी सकते हो, 1 चम्मच चिया सीड शाम को भिगो दो, सुबह उठा के पी लो, कुछ भी नहीं करना है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। तो आप चाहे जैसे चाहे वैसे थोड़ा सा मतलब सुबह के लिए अपना जो पेट है उसको खाली मत छोड़ें। रात को आपको बहुत ओवर खाना नहीं खाना है, लेकिन सुबह आपको पेट को अपने खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपके पेट में मतलब क्या होता है, एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब मतलब इकट्ठा होता है, और उसके बाद कुछ खाने पीने का मन करता है। तो ये तो ज्ञान की बातें होगी, ज्ञान की बातों के साथ मैं थोड़ी म्यूजिकल शाम की भी शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि आज है अंताक्षरी, तो अंताक्षरी तो शुरू होगी लेकिन आपके वाले और हमारे वाले अंदाज में। तो सुनने वालों और सुनाने वालों फटाफट से जाग जाओ और अपनी टीम को तैयार कर लो, क्योंकि लड़के और लड़कियों की टीम में आज होने वाला है मजान, और हम खेलने वाले अंताक्षरी पूरे शाम। क्या बात है, शायरी बन गई। तो शायरी को भी आगे जज्बातों के साथ जारी रखेंगे, और आज ना सिर्फ गाने ही आप गाएंगे बल्कि आज क्यों ना आपके अंदर जो छुपा बैठा कवि है उसको जिंदा कर दिया जाए। मतलब आप तो जिंदा ऑलरेडी है, लेकिन कवि जो सो गया है काफी दिनों से, उसको जगाने का टाइम आ गया, और आज की शाम कवि स्पेशल अंताक्षरी के नाम। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक, एंड आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट आरजे बीना। तो चलिए हम भी करते हैं चलते चलते प्यार और जन्म बदल के आते हैं। वैसे मैं तो जन्म के बदलने में विश्वास नहीं रखती, बस कपड़े बदल लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ, और बस हमारा चेंज हो गया। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

चलते चलते मिलना क्यों है, मिलना तो साथ साथ ही है, क्योंकि आज आपके साथ जज्बातों वाली बात है। बातों से याद आया कि क्या आपने अपनी फेवरेट बेवरेज एंजॉय की। अगर नहीं की तो यार एक ग्लास पानी तो पी लो, पानी का भी एक स्वाद है। आज मैंने हाल ही में एक मतलब ऐसे में रील देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि एक इंसान पानी बनाना सिखा रहा था। भाई पानी की भी रेसिपी देखे लोग फेमस हो सकते हैं, ये मुझे आज अभी इसी वक्त पता चला। ये कैसे पॉसिबल है यार, हाउ इट इज पॉसिबल, एंड मतलब क्या बताऊं, लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इनको ही कहेगा कि भाई आज मैंने ऑक्सीजन का पेड़ लगाया और ऑक्सीजन बनानी शुरू की अपनी किचन में। भाई ऑक्सीजन प्लांट अभी बना रहे हैं और अभी हम लोग इतने आगे नहीं पहुंचे कि ऑक्सीजन हार लैब में हम लोग ऑक्सीजन बनाने वाले बैक्टीरिया और प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं, पर हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते, वैसे ही पानी भी हम लोग नहीं बना सकते। भाई लोग पानी बनाने की रेसिपी दे रहे हैं, पानी को थोड़ा ठंडा करें, गर्म करें, फिर उसको उबाले, ये बन के तैयार हो गया पानी। तो आप लोग भी ऐसी पानी की रेसिपी तो नहीं किसी को बेच रहे हैं और सामने वाले को तो आप लोग के साथ आज की शाम जो है ना फर्स्ट क्लास है, और इस फर्स्ट क्लास गाने के साथ आज की शाम को फर्स्ट क्लास बनाते हैं। और आप लोगों से आते ही मैं क्वेश्चन जो है ना वो आपके कानों में भेज देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो गाना अभी सुना ना फर्स्ट क्लास वाला, ये किस फर्स्ट क्लास मूवी का है? फर्स्ट क्लास तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मूवी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, वन टाइम है। तो बताइए कौन सी वन टाइम मूवी का ये वन टाइम नहीं मल्टीपल टाइम सुनने वाला गाना आप सुन रहे थे। और आप सभी के साथ जैसा कि मैंने आपको अनाउंस कर दिया, और मेरे साथ बहुत सारे हमारे बॉयज़ टीम के लड़के, मतलब बॉयज़ टीम के लड़के मेम्बर्स दिख रहे हैं जो कि अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने आ चुके हैं। बंटी गुर्जर जी फ्रॉम राजस्थान, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? एंड हमारे साथ सबलू सामत बोरी वाली मुंबई से सुन रहे हैं, तो मुंबई वालों और राजस्थान वालों सब एक साथ आ जाओ और अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी स्टेट की लैंग्वेज में एक शायरी लिख के जाओ। हाँ, पर लिखना हिंदी में, मतलब उसका भले मराठी में या राजस्थानी भाषा में हो, पर हाँ अपने अपने स्टेट की कुछ क्वालिटी अपनी शायरी में ज़रूर बर्खास्त कर देना। और चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट क्लास वाले गाने से। लड़कियों की टीम से भी कोई आ जाए और हम बस शुरुआत कर दें हमारे आज के अंताक्षरी वाले शाम की

यस। और बंडी जी ने आंसर गेस करने की कोशिश की और आंसर लिखा है पहली पहली बार मोहब्बत की है, मोहब्बत से है ये गाना। ना ना ना, बिल्कुल भी गलत आंसर दिया है आपने। और आंसर है कलंक। आपने कलंक मूवी देखी होगी जिसमें भाई एक साथ कई सारे हीरो हीरोइन ऐसे तिरकते दिखते हैं, मुझको तो केमिस्ट्री नहीं इन लोगों की समझ में आई। मूवी ठीक है, वन टाइम है, देख के आपको मज़ा आएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आया। हाँ, इसमें आपको माधुरी दीक्षित दिख जाएंगी, संजय दत्त दिख जाएंगे, वरुण धवन इसमें मुझे पहली बार बहुत सीरियस टाइप के दिखे, नहीं हर मूवी में मुझे थोड़े फनी लुक में दिखते हैं, बस हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखे हैं। और आपकी भाई फेवरेट फेवरेट वाली हीरोइन यानी कि हाँ जिसको देख के आपके दिल धड़क उठते हैं, आलिया यानी कि आलिया दिख जाएंगी, आलिया भट्ट। वरुण धवन के साथ साथ आपको दिख जाएंगे कियारा आडवाणी एंड यस बहुत सारे एक्टर्स एक साथ इसमें घमासान करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन मज़ा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, पर हाँ अगर आपने अभी तक नहीं देखी मूवी तो एक बार देख सकते हैं। चलिए एक साथ मैंने आपको एक मूवी के बारे में बता दिया, और अगर आपका मन कर रहा है कुछ वन टाइम वाला देखने का तो यू कैन एंजॉय दिस। तो चलिए आगे बात करते करते मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे साथ बंटी जी ने लिखा है कि जेठरी बाता न्यारी है, अरे जठेरी बाता न्यारी है, जठेरी रीत प्यारी है, जठेरी बाता न्यारी है, जठेरी रीत प्यारी है, मारो राजस्थान संगड़ा देश सू भारी है। का बात है, का बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। एंड यस, बहुत मीठी भाषा है राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, और ऐसे महाराष्ट्र की, यूपी बिहार की, सबकी भाषा में मिठास है। जब प्रेम से कोई भी भाषा बोली जाती है ना, मिठास आ जाती है। बाकी तो अगर आप चीनी खा के भी चीखे मार रहे हो तो चीनी की भी मिठास कड़वाहट में बदल जाती है, तो आप सब जानते हो। एंड यस, आज ही जो सुपर डुपर म्यूज़िकल शाम है उसमें आप सभी का स्वागत कर रही हूँ, और आज हम खेलने वाले अंताक्षरी, और तो तैयार हो चुके हैं गाने गुनगुनाने के लिए, दिल खोल के हंसने और मुस्कुराने के लिए, और नॉस्टैल्जिया की जो सैर है वो मैं आज आपको करा ही दूंगी। कुछ ऐसे पुराने बजा के गाने जिनको सुन के आपके दिल की धड़कने कहेंगे वार जो भी ना। आज की प्लेलिस्ट एकदम सुपर सुपर सुपर थी। एंड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नियम बहुत सिंपल से हैं। गाना जो है पहला जो भी होगा, जो भी टीम स्टार्ट करेगी वो मेरे गाने को सुन लेगी ध्यान से, जिस गाने से मैं एंड करूँगी, मैं गाना गाऊँगी, जो लेटर जिस पे एंड करूँगी, लेटर की बात करी, वो अक्षर की बात नहीं करूँ, वर्ड की बात नहीं करूँ, लेटर। जैसे मैंने गाना गाया, तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, हाँ से आपको गाना है, ठीक है, वैसे कोई वर्ड नहीं लेना आपको, हाँ से गाना है। तो ऐसे ही मैं गाना गाऊँगी और इसका आखिरी अक्षर आप लोग ले लेंगे, और उसी के बाद आपकी अंताक्षरी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं सेकंड राउंड की बात बता दूं, सेकंड राउंड में मैं आपको दूंगी एक वर्ड, यानी कि एक वर्ड दूंगी और उससे आपको एक कविता या शायरी सुनानी होगी, ठीक है। और वैसे ही दूसरे की जैसे टीम ए ने अपनी मतलब शायरी सुना दी प्यार से, तो उनकी शायरी से मैं एक वर्ड लूंगी जो दूसरी टीम को दूंगी, वर्ड मैं ही दूंगी, आप अपनी मर्जी से वर्ड नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको अपना फेवरेट नंबर यानी कि आपके दिल का जो कहते हैं ना कनेक्शन वाला नंबर, वो तो पता ही होगा, 6393 31 64 29, हर चीज़ का कनेक्शन नंबर होता है। वैसे ही हमारा भी नंबर है जिसको आप लोग हमेशा से याद करके रखते हैं, 6393 31 64 29। तो आर यू रेडी, फटाफट से यस टाइप करिए, फिर इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आपके साथ आज की शाम की। और आज की शाम होगी सुरीली और साथ ही साथ मज़ेदार, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गाने गाना तो हम लोग को हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन गाने अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग गाए जाएं या किसी बाउंडेशन के अकॉर्डिंग गाए जाएं, उन गानों का मज़ा कुछ और हो जाता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसी तरह से मैं आप लोग को ले चलती हूँ आज अंताक्षरी की दुनिया में, बहुत आगे, लेकिन आज नए अंदाज में आगे चलेंगे। और लड़कियों की टीम से यस टाइप आ जाए और लड़कों की टीम से यस टाइप आ जाए, मैं गाना सुना देती हूँ और आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपका नंबर, आपका फेवरेट नंबर जो आपको हमेशा से याद भी हो गया। बहुत सारे लिसनर ऐसे भी हैं जिनको अपना नंबर भले ना याद हो, लेकिन हाँ ये नंबर ज़रूर याद है। तो फटाफट से आप अपना नंबर डायल करेंगे और हमारे साथ तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे बात करने के लिए बिना किसी इफ़ एंड बट के। तो चलिए इंतज़ार करते हैं आपके यस टाइप का, और तब तक के लिए मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ, गौर फरमाइएगा, क्योंकि अंताक्षरी के साथ साथ कविता स्पेशल अंताक्षरी भी आज होगी। तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के अंदर एनर्जी भर उठे, मतलब ऐसी भरे कि वो उड़ती हुई दिखे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की तरह, जिसने भी साइंस पढ़ी होगी। मैं साइंस से हूँ तो मेरी साइंस निकल ही जाती है हर जगह, आप सभी को पता है। फिलहाल चलिए आप लोग को सुनाती हूँ प्यारी सी कविता
जिसको सुन के आपका भी मन कहेगा ओ मेरी परनीता बन जा तू मेरी कविता। सो ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और फरमाइएगा अर्ज क्या है कि अक्षरों की ये महफिल सजी है आज शाम, अक्षरों की ये महफिल सजी है आज शाम, गानों की बारिश में भीगेंगे आज हम शाम। कभी माँ से मोहब्बत गुनगुनाएंगे हम, कभी सर से सजेगा कोई प्यारा सा संगम। ध्यान से सुनिएगा, कभी माँ से मोहब्बत गुनगुनाएंगे हम, कभी सर से सजेगा कोई प्यारा सा संगम, का से कभी कोई कहानी निकल जाएगी, रा से रिश्तों की मिठास मुस्कुराएगी। ये सिर्फ खेल नहीं यादों का खजाना है मेरे दोस्त, ये सिर्फ खेल नहीं यादों का खजाना है, हर गीत में छुपा एक अपना अफसाना है। कभी हंसी कभी आंसू कभी दिल की बात, कभी हंसी कभी आंसू कभी दिल की बात। और कहते हैं ना कि अंताक्षरी में मिलती है हर एक एहसास को सौगात। तो चलिए दोस्तों, सुरों का जो आज़ाद करने का समय आ चुका है तो आज़ाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुरों को आज़ाद करते हैं, हर अक्षर में एक नया गीत आबाद करते हैं। आप गुनगुनाइए, हम साथ निभाएंगे इस म्यूज़िकल सफ़र को, यादगार हम बनाएंगे। तो मज़ा आया कि नहीं आया ना? तो इरशाद कौन लिखेगा? मैं लिखूँगी? नहीं नहीं, मैं तो गाऊँगी आप लोग के साथ और आपके साथ गुनगुनाऊँगी कि आज की रात सुरों से शुरू हो रही है लेकिन गाने में थोड़ी मनमानी हो रही है। कोई सुर में है तो कोई बेसुरा गाएगा, कोई सुर में तो कोई बेसुरा गाएगा, फिर भी हर कोई खुद को लता या रफ़ी बताएगा। माँ से मम्मी का फेवरेट गाना भी आ जाएगा, पा से पापा का पुराना ज़माना छा जाएगा, का से कोई काला चश्मा लगा लेगा और ब से कोई बेसुरा होकर भी गा लेगा। गलत लिरिक्स से यहाँ सही माने जाएंगे, गलत लिरिक्स

गुड इवनिंग मनी, कैसे हैं आप? और कहते हैं कि जब म्यूजिक का एक दौर बीतता है तो दूसरा दौर आता है। कहते हैं म्यूजिक का एक दौर बीतता है तो दूसरा दौर आता है, लेकिन किसने कहा कि पुराना दौर हमेशा के लिए चला जाता है। पुराना दौर जब भी आता है वो नए दौर को पुराना कर जाता है। जी हाँ, म्यूज़िक में एक अलग सा नशा है। अगर पुराने म्यूज़िक को आप किसी भी दौर में सुन लें, आपको ऐसा लगता है आप जी उठे हैं। तो वो जी उठने वाले आज गाने मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा पुराने होंगे पर अगर आपकी प्लेलिस्ट में वो आज ऐड हो जाएंगे तो आपके नए गानों को भी बीट कर देंगे। सो गुड इवनिंग मनी एंड गुड इवनिंग सबलू जी। लिखते हैं कि यार, वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़, और ज़िंदगी बस इतनी खींचतान में बीत जाती है, फिर ना जाने अपने मन में घमंड क्यों लाते हैं लोग। इन्हीं लोगों से सुनते हैं कि घमंड रावण को चूर क्या था, तो हम इंसान हैं। हाँ, घमंड तो रावण का भी चूर हो गया था, हम तो इंसान हैं। और यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ईगो की जब बात होती है तो हर इंसान अपनी अपनी जगह एक घेरा बना लेता है, और वो घेरा जब भी टूटता है तो सही कहीं ना कहीं अहंकार के जो कहते हैं ना, धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो आज का गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसको सुन के आपको आखिरी लेटर सुनना है और सबसे पहले कॉल करना है, तो आपको गाना सुना देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कहीं आपका गाना छूट गया तो आप अधूरे रह जाएंगे और आपका गाना अधूरा रह जाएगा। और एक नॉस्टैल्जिया वाला गाना मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, अपने प्लेलिस्ट में आज जोड़ के लाई हूँ, जो काफ़ी पुराना है और आप लोग भी गेस नहीं कर पाएंगे किसकी आवाज़ में। फिलहाल के लिए आप अपनी अंताक्षरी को कंटिन्यू करने के लिए गाना ध्यान से सुनिए कि आपको कौन से लेटर से गाना गाना है। गाना है, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुझको बता, शर्मो हया के पर्दे हटा के करनी है हमको खता। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। सो बता लास्ट वर्ड है, अब आप सोच लीजिए कौन सा लेटर से आपको गाना गाना है और मैं सुना देती हूँ वो प्यारा सा गाना, जिसको सुन के मैं अपनी प्लेलिस्ट को बार बार अपडेट करने की कोशिश करती हूँ, जिससे पुराने गाने मेरी प्लेलिस्ट में आ जाएं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आपके साथ।

तो लिसनर्स, कल से आपको गाना सुनाना था। और अच्छा ये बताइए, इस दुहाही गाने को आप कितने पॉइंट्स देने चाहते हैं 10 में से? और दूसरा गाना भी आपका बहुत अंडररेटेड रहा है, लेकिन सुनने के बाद दिल को बड़ा सुकून से मिलता है। इस गाने को सुनने के बाद आपके दिल को कितना सुकून मिला, आपके पॉइंट्स बताएंगे। आउट ऑफ 10 आप कितना पॉइंट देंगे? मैं इस गाने को 10 में से 9 पॉइंट्स देना चाहूँगी।

0: एंड यस, अब अगला गाना जो कि अगेन अंडररेटेड रहा है, लोगों ने बहुत कम सुना है, लेकिन अब जो भी सुनते हैं तो वो इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट के टॉप, मतलब टॉप 10 गानों में रखते हैं। तो चलिए, अगला गाना भी बहुत पुराना, बहुत अंडररेटेड, मैंने, मुझे लगता है क्लास 3rd या 4th में रही होंगी तब सुना था, लेकिन तब से लेके आज तक ये गाना मेरा फेवरेट रहा है। अब आज आपको सुनने के बाद आपका फेवरेट बनता है कि नहीं, ये तो आप लोग चैट रूम में बताएंगे। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम कुणाल गांजावाला, चन्ना वे घर।
1: आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: अरे सुना?
5: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
0: तो वापस से स्वागत है आप सभी का इस सुरीली सी शाम में। सुरीली तो है लेकिन आपके सुरों से नहीं, मेरी प्लेलिस्ट से। और मेरी प्लेलिस्ट के गानों ने आप लोग को भी बिल्कुल सुरमई कर दिया ना। वो गाना सुना आपने, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के भर गई। क्या है, मैं इस गाने को भी जल्दी से सुनाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। गुड इवनिंग आरके श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? और लड़कों की टीम से भाई लड़के ही लड़के दिखाई दे रहे हैं, लड़कियों की टीम से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई सुनाई दे रहा है। क्या लगता है आपको, लड़कियों की टीम से कोई भी प्रेजेंट अपनी लगाने वाला है या फिर सब हार के आज जाने वाली हैं? फिलहाल लड़कियों की टीम से कोई हो या ना हो, आरजेबी ना इज देयर, तो फिक्र काहे की डेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, गाना मैंने आप लोग को सुनाने के लिए एक सोचा हुआ था। बहुत ही पुराना सा गाना है। इस गाने को सुन के ना हमेशा मेरी मतलब बचपन की यादें एकदम तरोताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं, एक सुनने क्या मेरे सुनने से पहले कॉल आ गया, चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
6: हेलो,
0: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
6: मीरा तिवारी, मैं कुड़ासन से।
0: मीरा तिवारी बात कर रही है कुड़ासन से। तो आपने सुना अंताक्षरी चल रही है, आपको पता है आपको किस लेटर से गाना गाना है?
6: ता से।
0: ता से, वाह। तो ता से आप कौन सा गाना सुनाएंगे?
6: मैं

0: क्या बात है मीरा जी, आप गा रही हैं? क्योंकि टीम से सबसे पहला कॉल आपका आया है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने पहली बार कॉल किया, इसके लिए मैं आपको आपकी पसंद का गाना भी सुनाऊंगी। कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी?
1: यही वाला गाना सुनना चाहेंगे जो
0: तेरी
1: अभी मेरी
0: मेरी
1: बेटी ने दिया।
0: तेरी मेरी। ओके, थैंक यू सो मच मीरा जी, थैंक यू सो मच। सो लड़कियों की टीम से मीरा तिवारी जी ने कॉल करके अपना, जो कहते हैं ना, कि कोटा पूरा कर दिया, और इनको इनकी पसंद का गाना भी सुना दिया जाएगा। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयाना हो पाए। ए से गाने के लिए लड़के हो जाएं तैयार, और अगर नहीं हो पाए हैं तैयार तो फटाफट से हार मानने के लिए भी हो जाए तैयार। तो चलिए ये गाना मैं सुना भी देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोग को एक गाना सुनाने का वादा किया था कि सुरमई अखियों में एक नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे। और बड़ा प्यारा सा गाना है, इस गाने को मैं पहले सुना देती हूँ और लड़कियों की टीम को भाई पॉइंट तो दे दूँ। लड़कियों की टीम ने अपनी प्रेजेंस लगा के अपनी टीम को, यानी कि टीम ए को पॉइंट दिला दिए हैं अच्छे खासे। और आज मैंने टीम ए, यानी कि मतलब टीम ए अभी सबसे पहले जो आएंगे उनको 30 पॉइंट्स देने का, जो कहते हैं ना, वादा कर दिया है। तो शुरुआत 30 पॉइंट से इस बार हो रही है, तो 30 पॉइंट लड़कियों की टीम को मिल चुके हैं। और दूसरा कॉल आ चुका है, देखते हैं किसका कॉल है, आवाज़ सुनते हैं हम लोग। हेलो,
2: नमस्कार सुसंध्या मैम।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? और आपका स्वागत है सबलू सामत जी, आपकी आवाज़ पहचान गई मैं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और
2: मैं तो

0: बहुत ही अच्छा हुआ। और आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी बिल्कुल ठीक है। ए से आपको गाना सुनाना है सबलू जी।
0: ए
1: ए जी
0: वाई है ना?
1: हाँ, ए ए से एडी जो होता है उससे गाना सुनाना है
0: जी।

0: हैं सभी जी।
1: क्या बात है, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। और इसी के साथ भ लेटर आपने उछाल दिया है लड़कियों की टीम पे, थैंक यू सो मच। तो सबलू जी ने आके अपने लड़कों की टीम की इलाज बचा ली है। और हरके जी लिखते हैं दतौली मिल के पास पड़ता है जो, ओ यस यू आर राइट, दतौली आंधी चल रहा है क्या? दतौली में आंधी चल रही है कि नहीं चल रही है तो नहीं पता, लेकिन अगला कॉल आ गया, चलिए सुनते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो,
2: हेलो,
1: गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं? आपकी आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गया आपके अंदाज से।
2: जी मैं ठीक हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, तो आपको भ से गाना सुनाना है, भ से भालू।
2: भोली भाली लड़की,
1: ओहो,
2: खोल तेरी दिल की प्यार वाली खिड़की, बस इतना ही गाऊंगी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, इतना ही खाइए। और देखिए खिड़की मत खोलिए, एक खिड़की आपकी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी
2: है। मच्छर आ जाएगा, मच्छर आ जाएगी
1: खिड़की से। हाँ, हाँ, मच्छर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो कौन सा लेटर आपने लास्ट में दिया? भोली भाली लड़की, खोल तेरी खिड़की, हो हाँ हाँ दिया आपने। ओके, तो हाँ से लड़कों की टीम को गाना गाना है क्या भाई? मतलब आप लोग एकदम बैक टू बैक गा रहे हैं, मतलब मैंने गाने का नाम क्या लिया, आप लोग तो मतलब गाने के लिए एकदम फुल फॉर्म में आ गए। और चलिए फॉर्म की जब बात करते हैं तो मैं आपको सुनाने वाली थी एक गाना, बहुत प्यारा सा गाना, मुझे बहुत पसंद है, सुन के बताइएगा कैसा है। बचपन में ये गाना मुझे मेरे पापा सुनाते थे और मैं इसको सुनती थी और सोती थी इसको सुन के। और लड़कों की टीम को हाथ से गाना है ये याद रखिएगा।

0: तो मैं गाना आगे सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कॉल आ गया, आवाज सुन लेते हैं किसकी। हेलो
1: जी,
0: वापस से सबलू जी, आपकी आवाज का स्वागत है और आपको हर से गाना सुनाना है।
1: हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की ना जुदा होंगे हम। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम।
0: मां से क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो लड़कों की टीम भी भाई आज फॉर्म में है और माँ से गाना सुनाने के लिए लड़कियों को लेटर दे दिया गया है। तो लड़कियों, माँ से गाना आपको याद है तो फटाफट से रेडी हो जाइए, और तब तक के लिए मैं अपना गाना पूरा कर लेती हूँ। और हाँ, मैं आप लोग को बताना ही भूल गई कि ये जो राउंड है, इस गाने के गाने के बाद हम एक और मतलब लेटर एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद आप लोग को मैं बता देती हूँ कि इसके बाद आप लोग नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट कर जाएंगे एक म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। पहले आवाज़ सुनते हैं अगली किसकी। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम?
2: अनु पांडे।
0: अनु, वैसे मैंने आपकी आवाज़ को पहचान लिया था, मैंने सोचा कि देखूं गेस कराऊं, ऐसा तो नहीं अनु की बहन बोल रही है। गुड इवनिंग, कैसे है?
2: नहीं, अनु ही थी।
0: तो अनु, आपको गाना सुनाना है मां से।
2: हाँ
0: मां से।
2: मुझे एक से है।

0: क्या बात है, निशानी तो आपके प्यार की वैसे मेरे पास कोई निशानी नहीं है। अगर आप ये आपने दी नहीं, आप कई बार से क्या कहते हैं गुजिया खिलाने वाली हैं, लेकिन कोई निशानी आपने भेजी नहीं, तो इंतजार रहेगा।
1: नहीं मैम, नहीं, आपके पास है निशानी। अगर आपका दिल मेरे पास है तो आखिर कैसे चल रहे हो? तो जाहिर सी बात है मेरा दिल आपके पास है।
0: ऑफ कोर्स, ना दिखने वाली निशानी। थैंक यू सो मच। तो भाई हमारी प्यारी लिसनर अनु ने गाना सुना दिया, एंड यस वी हैव 90 पॉइंट्स विद गर्ल्स एंड बॉयज़ की टीम में 60 पॉइंट्स है। और तेरे प्यार की निशानी न से गाना गाना है हमारे लड़कों की टीम को। लड़कों मतलब नाम में ही लड़ाई आ जाता है, लड़ते रहते हैं हमेशा इधर उधर चौराहों पे। तो चलिए गाना कंटिन्यू करती हूँ। मुखड़ा सुनाया अब अंतरे की बारी।

0: कई बार क्या होता है कि आँखों में सपने बहुत होते हैं पर उन सपनों को एक्सप्रेस करने के लिए कोई अपना नहीं होता जिससे हम अपने सपने को बता सकें, फिर वो सपना बस सपना ही बन के रह जाता है। और सपने को अगर हम पूरा कर लें तो सच में वो सपना साकार हो जाता है और सब तक पहुँच जाता है। तो अपने सपनों को छुपा के रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो,
1: नमस्ते। मैं
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मैं निशा।
0: निशा, गुड इवनिंग निशा। लेकिन अभी ये लड़कों की बारी है, लड़कों की टीम से गाने का मन है तो गा दीजिए।
1: क्या सुनाना है?
0: ना से सुनाना है, लड़कों की टीम में हो जाएंगी फिर आप। ना से ला, नहीं ला, नहीं ना ना ना से, ना से नींद,
1: ना से
0: ना, ना से नाव, नाव
1: ना, ना ना से।
0: जी जी जी, ना से
1: ना ना करते मैम। सुनिए
0: जी, बताइए
1: जी मैम। मगर ना से आता है तो मैम मुझे थोड़ा सा आता है,
0: थोड़ा सा आता है। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, आप लड़कों की टीम से गा रही हैं।
1: मैं सुनाने जा रही हूँ।
0: जी जी, सुनाइए।
1: ना करते प्यार है मैं मर गई मर गई, अरे तूने किया एक बार है मैं मर गई मर गई।
0: ओह क्या बात है, बहुत अच्छा गाना सुनाया। और निशा ने ना से गाना सुना के लड़कों की टीम को पॉइंट दिलाया। क्या बात है, लड़कों की मतलब क्या कहते हैं कि आज टीम में बहुत ज़्यादा मेंबर दिख रहे हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी लड़कों की टीम में जा रही हैं। ऐसा क्या जादू किया है? चलिए कोई भी जादू हो, फिलहाल हम सुर में आँखों में थोड़ा काजल लगा के इस गाने को आप तक पहुँचा देते हैं। और गाना बहुत ही प्यारा है और वैसे ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोचूं सुना ही दूं। एक स्टैंजा तो सुनाऊंगी और उसके बाद ही आगे आप लोग को जाने दूंगी।

करारी रूं। तो जिसको नींद ना आ रही हो या जिसको सुलाने का आपका मन हो प्यार से, उसे आप ये गाना गा के सुना सकते हैं। हाँ, वो सोएगा तो नहीं, लेकिन हाँ आपके प्यार में ज़रूर पड़ जाएगा। फ़िलहाल वो गाना जिसकी फरमाइश एक प्यारी सी बच्ची ने स्टार्टिंग में की थी, मीरा जी की बेटी की। तो चलिए सुन लेते हैं गाना तेरी मेरी। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, इस गाने के बाद हम लोग सेकेंड राउंड की शुरुआत करेंगे। सेकेंड राउंड जिसमें आपको मैं कुछ शब्द दूंगी और उन शब्द से आपको शायरी सुनानी होगी। जी हाँ, शायरी या कविता, ठीक है। शब्द मेरे होंगे, शायरी आपकी होगी और पॉइंट आपके।

0: सर्दी की वो धूप के जैसे गर्मी की शाम है। बिल्कुल, जब कोई गर्मी में एसी जैसा लगे और सर्दी की कोई धूप जैसा लगे तो समझ लो आपको किसी से प्यार हो गया। एंड यस, गुड इवनिंग अगेन। अनिल जी हमारे साथ हैं और जैसे कि अंताक्षरी का फर्स्ट राउंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे राउंड की ओर हम लोग चलते हैं। लेकिन चलने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस राउंड में आपको दिए जाएंगे शब्द और शब्द से आपको सुनानी होगी शायरी और उसी शायरी की आपकी टीम को मिल जाएंगे पॉइंट। तो शब्द मैं पहला जो देना चाहती हूँ काफ़ी आसान सा दूंगी, राह। पहला शब्द क्या है? राह। राह मतलब कि रास्ता होता है, लेकिन आपकी शायरी में राह आना चाहिए ना कि रास्ता। तो चैटरूम में भी मैं आप लोग को वर्ड दे देती हूँ कि किस शब्द से आपको शायरी अपनी सुनानी है। शब्द है राह और इस राह से आपको एक कविता या शायरी लिख भेजनी है या सुना देनी है। वैसे लिख नहीं भेजनी है, सुनानी है आपको, और जिसकी टीम सबसे पहले सुनाएगी उसकी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। इस बार मैं लड़के और लड़कियों को मौका अलग अलग नहीं दे रही हूँ, इस बार पहले आओ पहले पाओ यानी कि पहले नंबर डायल करो और अपनी टीम को 50 पॉइंट्स दिला जाओ। पहले राउंड में आपको 30 पॉइंट्स हर गाने के लिए मिल रहा था और इस बार आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स एक शायरी के। तो चलिए देखते हैं किसकी टीम कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। और हाँ भाई, मैंने तो आपको गाना सुना दिया था, आप लोगों को गाना कैसा लगा बताया नहीं आप लोगों ने। और भाई ये देखिए, क्या मतलब सोचा क्या कि कॉल तुरंत आ गया। गुड इवनिंग, कैसे हैं? शुभ संध्या सुरेश जी, स्वागत है आपका।
1: तो क्या गीत में नहीं गा सकते?
0: राह से आपको शायरी सुनानी है वैसे तो।
1: सारी नहीं सुना पाए, गीत सुना सकते हैं।
0: चलिए सुना दीजिए, गीत ही सुना दिए, गीत भी कविता ही होता है। चलिए।
1: राह गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, राह गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी जगमगाए करती कहीं खो गया किनारा, राह गर्दिशों में हर दम कोई दिल से खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल से खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम से जीते मैं कदम कदम से हारा, राह गर्दिशों में हर दम ये हमारी बदनसीबी, क्यों नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो जो क्या है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, राह गर्दिशों में हर दम।
0: क्या बात है, क्या बात है सुरेश जी। आपको ये पता है कि ये एक कविता है जिसको शकील बदायूं जी ने लिखा है, आपको पता है ये? शकील बदायूं जी एक बहुत बड़े कवि थे, हमारे उत्तर प्रदेश बदायूं के ही रहने वाले थे और उन्हीं की लिखी ये कविता है जिसे गीत का रूप दिया गया। और इन्होंने ये गाना भी लिखा है, तेरे ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये भी एक कविता ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुरेश जी ने एक कविता सुनाई, अनजाने में ये गाना निकल गई और इसी के साथ इनकी टीम को पॉइंट भी मिल गया। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। और मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले शकील बदायूं जी हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जिन्हें उठा उठा के हमने बॉलीवुड में गाने बना दिए और जिसमें से एक गाना भी आपने सुना। और अगला जो वर्ड मैं देने वाली हूँ, चलिए पहले कॉल उठा लेती हूँ, कौन है हमारे साथ? हेलो।
2: हेलो।
0: सो लड़कियों की टीम से कॉल आया है और मैं शब्द जो देने वाली हूँ वो शब्द है गम। गम से कविता सुनानी है आपको।
2: मैम अभी तो आपने राह दिया था,
0: तो राह से आके एक राहगीर चले गए, अब आपकी बारी है गम से आपको कविता सुनाने, गम से,
2: गम से,
0: गम गोंद फेविकोल वाला नहीं, गम अब आपके दिमाग में सोच रही होंगी कि फेविकोल दी होती तो मैं फट से गाना गा देती, नहीं तो कोई कविता सुना देती, पर क्या
2: एक में।
0: गम से
2: तुम मिलो ना मिलो, मिलने का कोई गम नहीं, तुम पास से जो गुजर जाओ ये भी कोई गम नहीं। मैं आपको, आपकी यादें मुझको हमेशा आती हैं, आपकी यादें भी किसी से कम नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद, क्या कहने, और इसी की तो जरूरत थी, और ये भी किसी से कम नहीं, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ लड़कियों की टीम को भी मिल जाते हैं 50 पॉइंट्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया खेल रहे पंडित आशीष शुक्ला, शुभ संध्या, कैसे हैं आप। और अगला शब्द सुन के आप हो जाइए बेकरार, क्योंकि बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए, अब को हमारी कसम लौट आइए। अगला जो शब्द है, चलिए कॉलर के साथ ही हम शब्द देते हैं, कॉल आ चुका है और शब्द मैं देना चाहती हूँ। हेलो, पहले आवाज़ सुन लेती, कौन है? हेलो,
3: शुभ संध्या बीना जी।
0: ओह शुभ संध्या, आवाज़ सुनते ही मेरे कानों में, मैंने कहा क्या सुना मैंने, कौन लिसनर हैं जो आके भी ना आए जैसे दिखते हैं। अनूप जी कैसे हैं, क्या हाल है?
3: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या थोड़ी सी उदासी लग रही है आपकी आवाज़ में, क्या बात है, परेशानी?
3: नहीं नहीं कुछ नहीं, बस लिटिल लिटिल थोड़ा बहुत लगा रहता है ना हमेशा।
0: हाँ, लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत, पर ये थोड़ा रहे तो सही है, लेकिन बहुत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आपके लिटिल लिटिल परेशानी को दूर करते हुए आपको शब्द देते हैं, दे दें
3: जी।
0: पुकार, आपकी कविता में पुकार आना चाहिए।
3: पुकार,
0: पुकार, वो पुकार संजो पुकार वाला पुकार नहीं,
3: नहीं नहीं वो तो गंदा वाला पुकार
0: गंदा वाला पुकार। अच्छा, मतलब मैंने बड़ा सुना पुकार मिलता है, मैंने कभी किसी दुकान पे तो नहीं देखा पुकार, इतना बढ़िया संजोग पुकार खाते हैं, संजोग भी बंद हो गया संजोग से, पुकार नहीं देखा मुझे कभी, पुकार बिकता था कभी पहले? अनूप जी,
3: जी
0: जी, कभी आपने पुकार खाया है?
3: नहीं नहीं ठीक, आई डोंट लाइक,
0: मतलब आप लाइक, लाइक मीन्स आपने टेस्ट किया है?
3: आई डोंट लाइक, मुझे मतलब बहुत गंदा, मतलब लोग उसको मुंह में इतना देर तक भरे कैसे रहते हैं।
0: वाह क्या बात आपने बताई, लेकिन क्या करें, जानने के बाद भी भरे रहते हैं, देखने के बाद भी खाते हैं, और अंजाम तक खाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए पुकार से आप क्या सुनाएंगे।
3: उन्हीं रास्तों पे जिन पर कभी पुकारा था तुमको, मुझे रोक रोक कर पूछा तेरा हम सफर कहाँ है।
0: वाह वाह वाह, क्या कह गए आप, क्या कहने, क्या कहने, एक बार फिर से मुकर्रर।
3: उन्हीं रास्तों पर जिन पर कभी पुकारा था तुम्हें, मुझे रोक रोक कर पूछा तेरा हम सफर कहाँ है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, आते ही मतलब तहलका मचा दिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये आपकी पंक्तियाँ हैं।
3: मैम मुझे मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा गबड़ घुसेड़ किया, इधर का उधर उधर का उधर, क्या बन गया।
0: हाँ कुछ बना दिया फाइनली
3: कुछ बना दिया जी,
0: मैंने अंताक्षरी शुरू करने
3: के तुरंत बनाना था, क्योंकि अब अभी और कोई शब्द मिलता तो शायद आसानी हो जाती, लेकिन पुकार सब थोड़ा सा दिक्कत था,
0: पर दिक्कत को दूर कर दिया आपने, क्या
3: दिक्कत को दूर कर दिया,
0: पर बढ़िया सुनाया। तो भाई आज लड़के और लड़कियों की टीम को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने लिरिक्स की मिस्टेक भी की, बहुत सारे लोगों ने शायरी भी तुरंत बना दी, और इसी बात पे मैंने आज एक शायरी आप लोग को एक कविता सुनाई थी कि आज की शाम बड़ी सुहानी है लेकिन गाने में होगी थोड़ी मनमानी है, कोई सुर में गाएगा तो कोई बेसुरा गाएगा, फिर भी खुद को लथा रफ़ी बताएगा, माँ से मम्मी के फेवरेट गाने बजाएगा और पा से पापा का पुराना ज़माना बुलाएगा, और क से काला चश्मा लगा लेगा कोई और ब से बेसुरा गाना गा देगा कोई, गलत लिरिक्स भी यहाँ पे मानी जाएगी। ये वाली लाइन मुझे याद आ रही है कि गलत लिरिक्स भी आज यहाँ मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दिल से गाने गाने की बारी आएगी, कभी गाना बीच में भूल जाएंगे तो कभी कभी हंसते हुए नया गाना बनाएंगे, और वैसे ही आज हंसते हुए आपने एक नई शायरी बना दी अनूप जी, क्या बात है। तो चलिए अगला शब्द मैं आप लोग को पहले दे देती हूँ, अगला शब्द जो है वो है खुशी। आपको गाना सुनाना है, मतलब गाना नहीं शायरी सुनानी है खुशी से, लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों को कुछ सुना देती हूँ अलग सा, और इस गाने को सुन के बताइए कैसा लग रहा है आपको ये गाना, और मैं इंतज़ार करती हूँ खुशी से कविता सुनाने के लिए कौन आ रहा है।

0: तो ये आखिरी शब्द से देखते हैं कविता कौन सुना रहा है सबसे पहले। हेलो
1: हेलो।
0: ओके अनु जी, खुशी
1: जी मैम, जिंदगी में कभी किसी से प्यार न करना, हो जाए तो इनकार न करना, 2 दिन आएंगे खुशी से मिलने, 3रे दिन बोलेंगे मेरा इंतजार न करना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन हर कोई खुशी से आता है, लेकिन जब साथ निभाने की बारी आती है ना, सब गम के चादर उड़ा के चले जाते हैं। एनीवे आपने बहुत सही टाइम पे अपनी टीम को सपोर्ट किया और इसी के साथ पॉइंट अपने नाम किया। थैंक यू सो मच। लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम बराबरी पे चल रही है। एंड यस, दिस इज द लास्ट टाइम। और अब मैं आपको बता देती हूँ, उस गाने के बाद आप लोग को सुनाना है एक स्लोगन अपनी फेवरेट IPL टीम पे, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जीतेगा भाई जीतेगा मेरा, ये क्या कहते हैं, रॉयल गेम चेंजर जीतेगा, ऐसे करके आपको एक स्लोगन बनाना है, जिसका स्लोगन सबसे पहले, जिस टीम ने जितने ज़्यादा स्लोगन बताए उसकी टीम जीत जाएगी फाइनली। और मैं आपको टाइम दूंगी आज इस गाने के बाद, और इस गाने को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन है जो अपनी टीम को जिताने के लिए फटाफट से स्लोगन बनाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी कलम और अपनी फेवरेट टीम को पहले से डिसाइड कर लेना, आपकी IPL में कौन सी फेवरेट टीम है, और उसके बाद आपको अपनी टीम के लिए उस स्लोगन को सही समय पे सुनाना है। अगर आप नहीं सुना पाए तो भाई फिर आपकी टीम हार जाएगी। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, और इस गाने के बाद शुरू कर देते हैं आपका नेक्स्ट राउंड।

इस गाने में भी अलग नॉस्टैल्जिया है। सुनने के बाद मन करता है बार बार लूप पे सुनो, पर क्या करें, ये तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और एक गाना रिपीट करने का तो कोई चांस नहीं बनता। हाँ, तुरंत तो नहीं हो सकता, पर क्या करें, मन में तो रिपीट करते रहेंगे।

0: वैसे इतना ब्यूटीफुल सा गाना सुनने के बाद अब मन कर रहा है ना कि आगे भी सुनते रहें, लेकिन अब इन गानों को सुनने का थोड़ा टाइम ओवर सा हो गया है, और इस ओवर से टाइम में मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लास्ट टाइम अपनी जो जीत है वो बना के जाएं। तो सबसे पहले कौन अपनी टीम के लिए स्लोगन सुनाने वाला है? एंड भाई अगर स्लोगन की बात करें तो सबके पास अपनी अपनी टीम का कोई ना कोई स्लोगन तो होता ही, और सबसे पहले एक कॉल आ चुका है, चलिए सुनते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
1: हेलो
0: अनूप जी, ओके
1: जी,
0: कौन सी टीम आपकी फेवरेट है पहले तो यही बता दीजिए मुझे।
1: चेन्नई सुपर किंग्स।
0: ओहो चेन्नई सुपर किंग्स, ओके। तो अपनी टीम के लिए अगर आपको आपकी टीम जीतने वाली है, सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी टीम को बूस्ट अप करना है, स्लोगन बोलने हैं, तो क्या स्लोगन होगा आपका?
1: मैं बोलूंगा धोनी की समझदारी और जडेजा की

0: मिलेगा, और अभी तक कॉल सिर्फ एक आया है और एक टीम को पॉइंट मिल चुका है। और अगर आपको अपनी टीम को जिताना है तो फटाफट से आईपीएल की तरह बिना सोचे समझे आती हुई बॉल पे छक्का मारना है और अपनी टीम को 100 पॉइंट दिला देने हैं। चलिए देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स दिला पाता है। और मैं तो भाई मुंबई इंडियंस की दीवानी हूँ, लेकिन लेकिन लेकिन क्या करें, मुंबई इंडियंस कभी कभी डिसअपॉइंट कर देते, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक है जान तब तक गुनगुनाएंगे, मुंबई इंडियंस के साथ हम मुस्कुराएंगे। क्या स्लोगन बनाया है, देखिए मैं हूँ एकदम पक्की वाली मतलब कह सकते हैं कि फ़ैन आईपीएल की, तो आप लोग बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। और एक गाना यार मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, सच्ची बता रही हूँ, उस गाने को सुन के ना तो मेरे भाव एकदम भर भर से जाते हैं। चलिए देखते हैं किसका कॉल आया। हेलो
1: हेलो
0: हेलो ओहो अनु, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? आपकी आईपीएल में कौन सी टीम फेवरेट है?
1: मेरी टीम तो ना पूछो पर खिलाड़ी जरूर पूछ लो।
0: तो आप कौन सा स्लोगन लेके आई हैं, कौन सी टीम के लिए स्लोगन लाई हैं?
1: मैं तो लाई हूँ मुंबई इंडियन के लिए।
0: ओहो मेरी फेवरेट, चलिए सुना दीजिए।
1: क्योंकि वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी है।
0: यस ऑफ कोर्स, यही यही एक रीजन है कि मुंबई इंडियंस मेरी भी फेवरेट है। तो चलिए सुनाइए फटाक से।
1: रोहित की रफ्तार, रोहित की रफ्तार, पांड्या की दहाड़, बुमराह की ये धार, मुंबई इंडियन इस बार फिर से है तैयार।
0: वाओ क्या कहने, क्या कहने, अब लग रहा है कि बराबरी की टक्कर हो रही है। मुझे लगा लड़कियों की तरफ से कोई स्लोगन ही नहीं सुनाएगा, मेरी वैसी हो जाएगी, लेकिन नहीं, लड़कियों में भी तो एनर्जी भरमार है, लड़कियां क्रिकेट के मैदान में बिल्कुल स्टार है।
1: ऐसा नहीं हो सकता मैम, क्रिकेट की बात हो और हम ना आए, हमको सुनाए ना।
0: मैंने कहा
1: तो बात अलग है,
0: लड़कियां बिल्कुल क्रिकेट मैदान में भी बिल्कुल स्टार हैं, स्टार हैं, स्टार हैं, क्या बात है। तो चलिए अनु ने आके भी सुना दिया है स्लोगन, और इसी के साथ स्लो नहीं होना है आपको अपनी गन के साथ, तो बिल्कुल स्लोगन को तेज गन से चलाइए और अपनी पॉइंट्स को अपने तक पहुंचाइए। लास्ट स्लोगन का इंतजार और देखते हैं किसकी टीम है तैयार। और अगर आपकी टीम ने सुना दिया स्लोगन तो आपकी टीम आज हो जाएगी विजय पथ पे आगे। तो चलिए अगला कॉल सुनते हैं किसका है। हेलो
2: हेलो मैम, धोनी सर के लिए चार लाइनें और
0: हैं। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है।
2: अनहोनी को होनी कर दो, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, शिवम जड्डू और धोनी।
0: वाओ जडेजा को जड्डू, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, सो स्वीट, सो एनर्जेटिक, क्या बात है, इसको टैलेंट बोलते हैं, इसको टैलेंट बोलते हैं, क्या कहने, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ भाई अनूप जी ने अपनी टीम को भाई विजय करा दिया है 390 पॉइंट्स लड़कों के। और मैंने कहा था ये लास्ट कॉल डिसाइड करेगा कौन सी टीम जीतेगी, फिलहाल लड़कियों की टीम ने भी कोई कम नहीं खेला है, लेकिन हाँ थोड़ा स्लो खेला, इसीलिए स्लो गन में स्लो हो गई। और देखिए लास्ट तक बराबरी में आप लोगों ने फुल एनर्जी के साथ खेला, इसके लिए मैं आप लोग को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मस्त खेला, सुपर खेला, जबरदस्त खेला, और इसके साथ मेरे दिल को जीत लिया आप लोगों ने, क्या कहना, क्या कहना। और लग रहा है कि आप लोग आईपीएल देख देख के ना एकदम क्या बताऊँ, आईपीएल के दीवाने हो गए हैं। और इसी के साथ मैं अपना फेवरेट गाना सुनाते हुए लड़कों की टीम को देना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग लेट में भी आते हैं और बहुत ज़बरदस्त खेल के जाते हैं, रियली आप मेरे मन में लड़कों की टीम के लिए थोड़ा ज़्यादा ही अप्रिसिएशन आ गया है, क्योंकि सबके सब जो है ना मौका देख के एकदम बढ़िया सा चौका लगाते हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बॉयज़ टीम, एंड स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया और अपनी आवाज़ में कुछ बेहतरीन सा सुनाया। और भाई जीते हैं, भाई जीते हैं, लड़के आज जीते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपनी आवाज़ में हम लोग को लुभाते हैं, जीते हैं भाई जीते हैं। ग्यानजी 9.6 FM पे आज शाम यानी कि 6 मई की शाम 7:45 मैं अनाउंस करती हूँ कि लड़कों की टीम ने अपनी ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली है। तो चलिए चलते हुए एक गाना आपका फेवरेट वाला और मेरा फेवरेट वाला गाना बजा के जाऊँगी। अच्छा जैसा मैंने कहा था कि आज मैं आपको नॉस्टेल्जिया वाले गाने सुना रही हूँ, वो गाने जिन्होंने हमारे बचपन को स्वीट नहीं सुरीला बना दिया था और सुरीला होने के साथ साथ मेमोरेबल भी बना दिया था। तो ये सोना महापात्रा की आवाज़ में गाना है, आप लोगों ने शायद सुना हो, लेकिन सच्ची में ये गाना जब बजता था ना तो हम लोग कूदने लगते थे, मतलब जैसे कहते हैं ना एनर्जी आ जाती थी। तो आप लोग भी ये बताइए, अगर आपने ये गाना सुन के अपने घरों के बिस्तरों पर कूद कूद के गद्दे बिठा दिए तो बताइए ये गाना आपके बचपन का है या नहीं।

तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, आ जावे जावे जा। सो गुड इवनिंग, बाय बाय अगेन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, म्यूजिकल शाम के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल शाम को 6 बजे लाइव हो जाइए आरजेबीना के साथ अपना फेवरेट शो सुनने के लिए। गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला नॉन स्टॉप आपके साथ।

तो भाई जो जो लोग जहाँ जहाँ से हैं वो फटाफट से आ जाएं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी पे। और ये पहला डिमांडेड सॉन्ग मैं आप लोग के लिए प्ले करके जा रही हूँ है फरमाई संतोष कुमार जी की, जो हमें सुन रहे हैं गिलौली गोंडा से।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, यूं बातें ना कर हमसे आदत हो जाएगी, यूं बातें ना कर हमसे आदत हो जाएगी, अगर बातें चलती रही तो आफत हो जाएगी। इश्क से भरोसा कब का उठ गया है अपना, इश्क से भरोसा कब का उठ गया है अपना, अब दोबारा इश्क हुआ तो कयामत हो जाएगी। बहुत उम्दा, बहुत ही प्यारी सी लाइंस थी ये द ग्रेट सेन साहब की तरफ से। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा जज्बातों से भरा हुआ गाना टटोल लीजिए, उस फरमाइशी गीत को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जैसे भी चांद आप लगाना चाहते हैं। कितने ये आज नहीं कहूंगी, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस यही कहूंगी कि आप अगर खुशियों के चांद लगाना चाहते हैं तो आज की महफिल में लगा सकते हैं, दुख के चांद लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, एक्साइटमेंट के हों, चाहे नर्वसनेस के हों, चाहे मोटिवेशन के हों, चाहे इंस्पिरेशन के हों, चाहे जैसे भी कोई भी इमोशन हो, हर एक इमोशन के आप चांद तारे इस महफिल में आज बिल्कुल सजा सकते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम विशाल बेदर्दी, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, आर के श्रीवास्तव जी गोंडा से, द ग्रेट सेन साहब राजस्थान से, कायनात मींस आकांक्षा स्टे ट्यून्ड, पंडित आशीष शुक्ला आपका भी स्वागत है, आशु मिश्रा जी लखनऊ से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आपका भी स्वागत है, और इस्तकबाल है आवाज विकास गोंडा से रवि और धर्मेंद्र मोहन, आवाज विकास गोंडा से आपका भी स्वागत है, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, एवरीवन स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले आज महफिल में बहुत दिनों बाद मुझे कोई दिखा है और आप सोच रहे होंगे आखिर कौन, अरे हमारे दिल के जो बहुत करीब रहते हैं पंडित आशीष शुक्ला फ्रॉम गोंडा स्टे ट्यून्ड, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हमारे पास में जो पहली फरमाइश है दोस्तों वो है आरके श्रीवास्तव की गोंडा से, उनको सुनना है गाना आजा सनम मधुर चांदनी में, तो एंजॉय करते हैं नरगिस जी का ये वाला गाना लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में आरके श्रीवास्तव की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खुशियों भरी, दुखियों भरी, उदासियों भरी, एक्साइटमेंट भरी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

संदेश हमारे पास में आई थी। आर के श्रीवास्तव जी की तरफ से जो की है गोंडा से, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम दीपांशी तिवारी, आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है कायनात की, और कायनात जी की आकांक्षा है कि उनको सुनना है गाना जीत मूवी का, दिल का क्या करें साहिब। सो आकांक्षा जी, आई मीन स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, हमने एंजॉय किया है कायनात की फरमाइश पर ये वाला गाना, और पूरे कायनात पे छा गई है ये फरमाइश। सो कविता जी की आवाज़ में हमने एंजॉय किया है ये 90s का सुपर डुपर हिट गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सेन साहब की। द ग्रेट सेन साहब को राजस्थान से सुनना है गाना आज मेरी जिंदगी में। सो खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी का ये गाना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज में हम एंजॉय करते हैं द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सेन साहब की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो बाबुल सुप्रियो और अलका यामिनी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। सो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश आई थी हमारे पास में राजस्थान से द ग्रेट सेन साहब की, और उनको सुनना है गाना, उनको सुनना था गाना आज मेरी जिंदगी में। और अगली फरमाइश हमारे पास में है पंडित आशीष शुक्ला की, और पंडित आशीष शुक्ला को सुनना है गाना छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। तो एंजॉय करते हैं ये 90s का सुपर डुपर हिट गाना एकदम रिवाइव वर्जन में, सिर्फ और सिर्फ पंडित आशीष शुक्ला की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

मजेदार निकला, शैला बाबू तो कैसा दिलदार निकला। हमने एंजॉय किया है ये रोमांटिक गाना, सुपर डुपर डुपर हिट गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे पंडित आशीष शुक्ला की फरमाइश पर, जो कि हैं गोंडा से। सो चलिए चलते हैं ना, बढ़ते हैं ना हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की, लखनऊ से। और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना, दिल ने ये कहा है दिल से और मोहब्बत हो गई है तुमसे। हाँ हाँ, सो एंजॉय करते हैं धड़कन का सदाबहार नगमा, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में, हमारी आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई थी आशा मिश्रा जी की तरफ से जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। और रवि को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना एक और एक ग्यारह। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम का ये वाला गाना, संजू बाबा और गोविंदा आला वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, सुमित पांडे आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम उदालक शर्मा फ्रॉम मनकापुर, स्टे ट्यून्ड।

0: So, ये फरमाइश हमारे पास में आई थी आवाज विकास गोंडा से रवि की। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। तो एक और एक 11 आप लोग को कैसे लगा जरूर बताना, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि एक और एक कितना होगा तो मैं 11 नहीं कहने जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले जवाब तो 2 ही दूंगी, फिर उसके बाद में 11 बोल दूंगी, है ना। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना, ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। अब जिंदगी में कोई आना तो सिर्फ और सिर्फ सुकून लेके आना, और सब कुछ तो भगवान का दिया रखा ही हुआ है। आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से बस सुकून दे दो, सुकून आ रहा है। I love this song.
1: I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

एंजॉय किया है मिश्रा फेकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है हम किसी से कम नहीं मूवी का गाना, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में, आए दूल्हे राजा। तो एंजॉय करते हैं ये शादियों के सीजन वाला गाना हमारे तड़कते भड़कते और बहुत ही अतरंगी से सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो हम किसी से कम नहीं मूवी का ये गाना अलका याग्निक जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है तुमसा नहीं देखा मूवी का गाना सर पर टोपी लाल। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। लेकिन उसके पहले द ग्रेट सेन साहब का कहना है कि सबकी असलियत से वाकिफ है हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। सो ऐसा है क्या? सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश मींस जग्गू दादा की फरमाइश। और इसके पहले दोस्तों हमें ज्वाइन किया है मुमताज अंसारी जी ने गोंडा से और निब्बर जी ने रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। स्टे ट्यून्ड सर पे टोपी लाल। हाँ एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग।

सर पे टोपी लाल हमने एंजॉय किया है। तुम सा नहीं देखा मूवी का ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की और धर्मेंद्र मोहन को सुनना है गाना तेरा गुरूर तोड़ूंगा। सो एंजॉय करते हैं शेर दिल का ये गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

गुरूर तोड़ूंगा और जरूर तोड़ूंगा। हमने एंजॉय किया है शेर दिल का ये गाना, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की गोंडा से। एंजॉय करेंगे प्रबल मिश्रा की फरमाइश और उस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक, और 9 बजे फटाक से आपकी आरजे सिंपल आएगी। खाते रहिएगा पीते रहिएगा पेट फुल करके, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो पेट पूजा करके आना फिर 9 से 9:30 तक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, बस एंटरटेनमेंट होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम नागेश्वर धाकड़ और मनीष शर्मा खोरासा गोंडा से, आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

0: Will you
1: dance with me?

0: रहने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नव गठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
6: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमने गीत सुना है, हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो फाइनली फिर से बताना कि ब्रेक के बाद में आना कैसा लग रहा है। और मैं तो ब्रेक के बाद में आती हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी से भर के आती हूँ, कहती आप लोगों से हूँ कि पेट भर के आना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाते आप लोग हो, पेट मेरा भरता है। इसी तरह मुमताज अंसारी जी का भी कुछ कहना है इश्क प्यार मोहब्बत पर। मुमताज अंसारी जी ने अर्ज किया है कि मोहब्बत यही है अकीदत यही है, मोहब्बत यही है अकीदत यही है, उन्हें देख लेना इबादत यही है, तेरी जुस्तजू में जो गुम मेरी हसरत, तेरी जुस्तजू में जो गुम मेरी हसरत, खुदा की कसम मेरी हसरत तू ही है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, और उनको सुनना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में प्यार का मौसम का गाना, तुम बिन जाऊं कहां। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड नगमा अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

दिन जाऊं कहां। मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नगमा प्यार का मौसम मूवी का। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुमित पांडे की। सुमित पांडे को सुनना है गाना, बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आहा अच्छा।

बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना। हमने एंजॉय किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सुमित पांडे की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज़ अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज़ अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, और हम भी जिसको प्यार करेंगे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें चाहे ना करें, लेकिन जिसे प्यार करेंगे वो हमें ज़िंदगी भर याद करेंगे। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज़ अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से, और इसमें आवाज थी मोहम्मद अजीज जी की और अनुराधा जी की। सो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम कमल नयन जी, आपका स्वागत और इस्तकबाल है। एंजॉय करते हैं मनीष शर्मा की फरमाइश, जो की है खुरासा गोंडा से। मनीष शर्मा, ये मेरी प्लेलिस्ट का गाना है, आई लव धन्नो सॉन्ग।

कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। और सच में अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला और ना कोई रोने वाली जनाबे अली, आपका क्या होगा। मैं इसीलिए तो बहुत खुश रहती हूँ दोस्तों। जो लोग इधर उधर, आगे कोई है, पीछे कोई है, दाएं कोई है, बाएं कोई है, ऊपर कोई है, नीचे कोई है, ये दिखते रहते हैं ना, वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग यही सोचते हैं कि ना कोई रोने वाला और ना कोई रोने वाली जनाबे अली, हाँ उनके तो मज़े ही मज़े होते हैं। जो यही सोचते हैं कि ना हमारे आगे कोई है ना पीछे कोई है, बस हमें अकेले चलते रहना है और जिसका रास्ते में साथ जहाँ तक मिल जाए वहाँ तक मस्ती करते चलना है, फिर उसके बाद में फिर चला जाता हूँ किसी की धुन में, किसी की धुन में नहीं और सिर्फ अपनी धुन में। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना गली गली में बात चली तो जीने नहीं दूंगा मूवी का ये वाला गाना। एंजॉय करते हैं निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

तो गली गली में बात चली, हमने इंजॉय किया है उषा मंगेशकर का ये वाला गाना जीने नहीं दूंगा मूवी का। उषा और आशा जी का ये गाना सिर्फ और सिर्फ निब्बर जी की फरमाइश पर, जो कि हैरानी बाजार सोनार गली गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश दोस्तों। तो अगली और आखिरी फरमाइश इंजॉय करेंगे, ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और उनको सुनना है गाना दो धारी तलवार। सो इंजॉय करते हैं ये वाला गाना, इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि सुकून की तलाश में दौड़ती हुई कूदती हुई फांती हुई आंधी तूफान में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के पास में तो जरूर आएगी। सो चलती हूँ दोस्तों, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से मेरे लिए बे इंतहा बेतहाशा प्यार आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से लव यू ऑल। बस प्यार दिखता है कहीं से भी आए कहीं भी जाए, बस प्यार ही मिलता रहे हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलेंगे कल फिर।

0: मैं उसकी शादी में आई हूँ। अच्छा?
1: उसकी शादी मुझसे हो रही है।
0: What?
1: तुम्हें उठे के? ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया? और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
2: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, remember?
1: ब्रेकअप? अभी तीन दिन पहले तक तो तुम मुझे बड़े सेंटी एसएमएस भेज रही थी, आई मिस यू वाले।
2: तुमने रिप्लाई किया? नहीं ना, बस आई गॉट ओवर यू।
1: गॉट ओवर यू? तीन दिन में गॉट ओवर यू?
2: सी, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है, वी आर फ्री, सो लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स, ओके?
3: रिया, कम, लेट्स दिस।
2: कम ऑन।
1: रिया, नाम भी बदल लिया?
4: भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? डांसिंग भाई सब डांसिंग, आओ ना, लोनली लोनली करो।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए
6: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, शाम का सलाम कबूल करें। आप कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज तो भाई शुभ बुधवार है, आज तो दिन आपका है। और आज के दिन जो हमारे श्रोता हैं वही बनते हैं वक्ता, और हम तो आज श्रोता होकर रहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ नीना जी जुड़ी हैं, आदाब करते हैं आपको। द ग्रेट सेन साहब है भाई, प्रणाम है आपको। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नेहा जी बहुत ही भाई खूबसूरत आवाज़, नमस्कार मनुसर जी। जी हाँ, आपको भी नमस्कार। कैसी हैं आप? आदाब। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और जी ये सन्नो जी कोई है भाई, तो चलिए भाई आपको भी प्रणाम करते हैं। और अब देखते हैं कि आज के इस महफिल की शुरुआत कौन करता है। फिलहाल जगजीत सिंह से हमने शुरुआत कर दी है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब देखते हैं कि वो घना साया बनकर कौन आता है। जी हाँ हाँ जी हाँ, द ग्रेट सेन साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जो है वो 63 93 31 64 29 पर कॉल कीजिए और यही बोलिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मतलब हमको लगता है आपने एक दिन कहा था कि हम भी सोच रहे हैं कि वक्ता बन जाए, तो बहुत बेहतरीन बात होगी ये। और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। विशाल बेदर्दी हमारे साथ है भाई, मनुष्य जी प्रणाम। जी हाँ, विशाल बेदर्दी, क्या भाई ऐसा नाम आपने रख लिया, तखल्लुस रखा, अपना उपनाम रखा बेदर्दी, क्या बात है। तो भाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, नेहा जी से हम तो सोच रहे हैं कि आज शुरुआत ही कर दें, कि नीना जी जो उनकी गुरु हैं, उन्होंने उस्ताद हैं, उन्होंने कहा है कि सर जी आज नेहा जी से ही गाना सुनिए। तो बिल्कुल वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे जी। तो देखते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कौन करता है, क्योंकि आधारशिला रखना, कार्यक्रम की नींव रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, किसी भी रास्ते का पहला कदम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब पहला कदम उठ जाता है तो उसके पश्चात फिर कदमों को उठने में दिक्कत नहीं होती, फिर तो लगातार जी हाँ एक के बाद एक स्वर हमको सुनने को मिलते हैं। जी हाँ, राजेश सिंह जी हैं माजी नगर से, सर नमस्ते। जी हाँ, हम सोचते हैं कि राजेश सिंह जी, इतनी प्यारी मुस्कान है आपकी, और ये गर्मी में भी जाड़े वाली फीलिंग लिए आपकी ये प्यारी सी फोटो है, क्या मुस्कुराहट है चेहरे पर आपके, और ब्लेजर का रंग तो माशाल्लाह क्या कहना, और जिस कलर की ब्लेजर है लगभग लगभग उसी कलर से मिलती हुई आपकी कैप भी है। तो फिलहाल हमारे पास श्रोता आ चुके हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ, तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार,
1: अस्मिता बात कर रही
0: हूँ। अस्मिता जी कैसी हैं आप? हाँ भाई, हमारे गुना की सजा घोषाल है, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक हूँ,
0: बस बस आप सभी का आशीर्वाद स्नेह
1: जी। तो मैं सुनाऊँ आपको कुछ?
0: अरे मतलब इसी इंतजार में हम बैठे हैं और आप कहती हैं कि सुनाए, आज लोग सुनेंगे ही। तो
1: ठीक है, मैं शुरू करती हूँ फिर।
0: जी जी बिल्कुल, शुरू करें आप।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, और आपके लिए जानती है कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। राजेश ने लिखा है कि नाइस सॉन्ग, और सनोज ने पूछा है कौन है। जी हाँ, ये हमारी अस्मिता जी हैं द ग्रेट सेवन साहब ने लिखा है वाओ, बहुत सारे स्टार्स दिए हैं आपको। और मनीष शर्मा ने पूछा है कौन है, जी हाँ अस्मिता जी हैं। फिर लिखा है आवाज़ में दम है, और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए राजेश सिंह जी ने दिया है मालवे नगर से, उन्होंने कहा है डुप्लीकेट लता जी हैं।
0: थैंक यू सो मच,
1: क्या बात है, और सुपर सुपर सुपर, ये द ग्रेट सेवन साहब का कहना है भाई। और श्री तेज नारायण शुक्ल जी जो अपने आप में एक व्यक्तित्व, उन्होंने कहा है बेहतरीन शुरुआत, आशीर्वाद बेटा। बहुत सारे लोगों ने देखी आपको, कितनी सारी दुआएं और कितना सारा आशीर्वाद आपको मिला।
0: थैंक यू, आप सभी को थैंक यू, बहुत आप सबका आशीर्वाद बस रहे।
1: हाँ, आप हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहें, और आपके आवाज की मिठास यूं ही कायम रहे।
0: थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। तो आप है हमारी गोंडा की श्रेया घोषाल।
0: थैंक यू सो मच सर, ये तो बहुत ज्यादा
1: नहीं, हमारे गोंडा के किशोर कुमार जी हैं, हमारे गोंडा के वर्साटाइल सिंगर हैं कुछ
0: जी,
1: तो आप
0: मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ ये।
1: हाँ, ये मतलब हाँ
0: बड़ी खुशी की बात होगी।
1: नहीं, ये आप डिजर्व करती हैं।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई नरेंद्र कुमार जी ने लिख दिया है, जी हाँ नाइस जी, और हम ये चाहते हैं, जी हाँ मजा ही आ गया, क्या बात है, रेगिस्तान बिल्कुल मजा आया। और भाई मनीष शर्मा जी की भी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, ऐसा हमने सुना है कि मनीष शर्मा जी गाते भी अच्छा हैं और नाचते भी अच्छा हैं। तो फिलहाल डांस तो हम यहाँ देख सकते नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ सुन सकते हैं। तो भाई मनीष शर्मा जी 63 93 31 64 29 ये आपका नंबर है, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि भाई कुछ आप गुनगुनाएँ। द ग्रेट सेवन साहब से भी गुजारिश है, श्री तेज नारायण शुक्ला से भी हमारी हमारा करबद्ध निवेदन है कि उनकी कविता, उन्होंने हमको पिछली बार कोरोना पर कविता सुनाई थी, और देखते हैं फिर हमारे साथ कौन जुड़ चुका है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: दर्द कुमार जी, क्या बात है, क्या हाल चाल है सुरेश कुमार जी आपका?
2: ठीक है भैया, और अपना सुनाओ।
1: बस आपकी आवाज पड़ जाती है तो हम जान लेते हैं कि आप ही हैं।
2: अभी अभी हमने मोबाइल उठाया है तो सुना तुमका जुड़ाव है, प्रोग्राम पेश कर देंगे।
1: जी जी, मतलब एक बच्ची ने बहुत खूबसूरत गाया आशिकी टू का गीत, और अब आप दर्द कुमार जी हमारे सामने हैं, तो अब देखते हैं क्या है आपके खजाने में आज खास।
2: अरे चलो, मौका मिल गया तो एक गीत तो सुना ही देख रहा हूँ
1: जी,
2: और बाकी आप कहेंगे तो वो भी सुना देंगे। अरे चलो
1: जी।
2: तुम बिन जाऊँ कहाँ, तुम बिन जाऊँ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर क्या सनम, तुमको क्या खके, तुम देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के तुम बिन जाऊँ कहाँ, तुम बिन जाऊँ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न कर क्या सनम, तुमको चाह के तुम बिन अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल पर जहाँ छाओ हमारी बस गई महफिल महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है दिल तुमको चाह के तुम बिन जाऊँ कहाँ तुम बिन जाऊँ कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के
1: क्या बात है भाई क्या बात है बहुत शानदार तुम बिन जाऊं कहां दुनिया में आके और ये गजल हमने कल सुनाई भी थी कल बहुत
2: ताजा हो गया
1: ताजा हो गया अरे ताजा हो गया कि एकदम हरा हो गया
2: क्या बात है सर।
1: अच्छा आपसे एक निवेदन है कि वो जो आज कल में ढल गया उसका आखिरी स्टैंजा अगर आप सुना देते तो बहुत अच्छा होता है।
2: अच्छा इसी वक्त?
1: हाँ इसी वक्त सुना दीजिए फिर पता नहीं फोन लगे।
2: ठीक ठीक ठीक।
1: यार दीपांशी जी हमारे साथ है, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज दीपांशी जी से भी हम लोग सुनने वाले हैं बहुत कुछ, तो वो अंतिम स्टैंजा उसका।
2: अच्छा

0: ये फ़ोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया भाई। और ये कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? जी भाई, दीपांशी भाई ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए हैं, क्या बात है। और भाई दीपांशी जी की आवाज़ भी काफ़ी खूबसूरत है और माशाल्लाह नज़र न लगे। और हम चाहेंगे कि भाई इस महफिल में वो शरीक हो गई हैं, तो फिर शरीक हो जाए कायदे से। तो उनके भी कंठ से निकला हुआ गीत आपको कहीं ना कहीं एक सूफियाना अंदाज की तरफ लेकर जाता है। जी हाँ, तो द ग्रेट सेन साहब भाई और श्री तेज नारायण शुक्ल जी भाई, मनी शर्मा जी, मनी शर्मा जी गाते बहुत अच्छा। सूची जिसका अपना सपना मनी मनी, और मनी जी नहीं गाएंगे तो बताइए आज की महफिल में कौन गाएगा? ये महफिल ये आपकी है। फिलहाल चलिए चलते हैं एक प्यारी सी गज़ल की ओर, और अगर आपका फ़ोन इस बीच आता है तो इस गज़ल को यहीं रोक कर आपकी आवाज़ की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है आप अपना दूरभाष क्रमांक एक बार पुनः नोट कर लें, 6393316429, 63-93-31-64-29 यह आपका अपना ही नंबर है। जी बिल्कुल, इसे डायल करते रहें और कुछ न कुछ सुनाते रहें। तुम बिन जाऊं कहां दुनिया में आके, और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका फोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया।
1: नहीं, वो आपने कहा कि पार्टी जी से आगे इनका नंबर तो हमने कहा।
0: नहीं नहीं नहीं, वो आखिरी स्टंजा आपसे सुनना है भाई।
1: अच्छा, तो और कोई अभी उनका फोन है तो नहीं?
0: हम
1: सुना सकते हैं।
0: हाँ, वो स्टैंजा लास्ट वाला स्टैंजा।
1: अच्छा अच्छा, हाँ दोबारा मौका मिले या ना मिले।
0: जी
1: तो शुरू करते हैं।
0: जी
1: कर बिछड़ गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भर सौ कर बिछर गया सो गया चमन चमन सो गई कली कली सो गए सब मगर सो गई गली गली सो गया चमन चमन सो गई कली कली सो गए सब नगर सो गई गली गली नींद कह रही चल तो भी सो जा सो गई रंग भरी कर गया तम है बुझा बुझा सद बोझ सांस पर जी रहे हैं सिर्फ कर की आस पर
0: भाई क्या बढ़िया गाया। हेलो,
2: हाँ जी सर नमस्कार।
0: अरे हाँ जी सर नमस्कार, ये आवाज़ तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे गहरे महासागर की अर्थात प्रशांत महासागर की है।
2: जी जी जी बिल्कुल सर, सही पहचाना
0: जी। कैसे हैं आप?
2: बस बस सर बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आज सर थोड़ी व्यस्तता की वजह से जो है आपसे कई बार फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अभी दरअसल हम बहराई से तुरंत घर पहुंचे हैं अभी बाई ट्रेन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हमने कहा कि आज सर प्रोग्राम है आपका तो लाइए एक बार।
0: अरे
2: फोन करते,
0: सौभाग्य हमारा सौभाग्य।
2: चलो सर आज एक गाना हम सुनाते हैं आपको, उदित नारायण जी का ही गाया हुआ।
0: हाँ क्या बात है, तो आप गोंडा के उदित नारायण है भी भाई।
2: स्टार्ट करते हैं सर।
0: जी जी।
2: हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो,

ओ जुल्फों को गिरा के पलकों को झुकाना सीखा है कहाँ से ये जादू चलाना। ओ

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, ये बताइए, बहुत शानदार गाया आपने। इसमें शादी विवाह का मौसम है,
0: थैंक यू सर।
1: कहीं कुछ बीता हुआ समय तो नहीं याद आ गया? मतलब इतना रोमांटिक होके आपने गाया, मतलब तबीयत एकदम प्रसन्न हो गई हमारी, मतलब लग रहा था कि सचित्र वर्णन हो रहा है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आज सही बताएं तो हम ढंग से इसको गा नहीं पाए, कुछ लिरिक्स भी मैं बीच में भूल गया।
1: नहीं, लिरिक्स आपकी एकदम सही थी और गाया भी आपने बहुत शानदार।
0: जी, बाकी ऐसा था कि मैं तुरंत पहुंचा, हमने कहा सर को पहले फोन लगाते हैं क्योंकि कई बार से आपके प्रोग्राम में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने कहा एक जो है सर व्यस्तता ज्यादा है इस समय, इसी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्रिपरेशन बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की सर।
1: नहीं, बहुत शानदार कोशिश की आपकी। और आपकी बिटिया रानी कहाँ है
0: सर? वो तो आज सो गई।
1: अच्छा, क्या बात है भाई, हमने एक बाल कलाकार को आज सुला दिया है। बहुत तरह की था, मैंने भी प्यार किया है।
0: जी जी सर। नहीं सर, इसका जो है या गाना, मुझे इसके सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी जी है भी।
0: और एक मैं इसके और एक लाइन आपको सुना देना चाहता हूँ।
1: जी
0: हो, मुबारक हो तुमको।

0: जो को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। जी सर, मैं अगली बार आपको ढंग से सुनाऊंगा, मैं इसमें तो कुछ भूल रहा हूँ।
1: कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी।
0: जी जी जी
1: हाँ, लेकिन हम यही कहेंगे आपसे कि सदा खुश रहे आप, दुआ है हमारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, हमारी छोटी सी बाल कलाकार खुश रहे।
0: बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फारिज
1: जी, प्रणाम आपको।
0: प्रणाम प्रणाम सर।
1: जी हाँ, दीपांशी लिखते हैं, ये कौन है? जी हाँ, ये प्रशांत जी हैं, और भाई मुकेश यादव लिखते हैं गुड इवनिंग, और देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
2: सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप
2: मनीष शर्मा सर बोल रहे हैं।
1: जी मनीष शर्मा जी, पहली बार आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छा सर, अपना बताइए।
1: जी आशीर्वाद आपका। तो भाई आपकी आवाज अच्छी है, तो कुछ आप गुनगुनाएंगे आज?
2: सर आप हमारा नाम ले रहे थे तो हमने कहा भाई फोन तो दिलाना पड़ेगा।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे बात भी करना चाहते थे, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में देखा था, आपकी आवाज नहीं सुनी थी, तो हमने कहा भाई मनीष शर्मा जी की आवाज भी सुन लेते हैं कुछ गुनगुनाते हुए।
2: सर जी आज तो हम नहीं गुनगुना पाएंगे, आप आज हम मतलब आज हमको आप गाना सुना दीजिए एक।
1: जी जी,
2: मेरा बहुत फेवरेट है सर, प्लीज सर गा दीजिए थोड़ा सा।
1: अच्छा, कौन सा गाना है आपका?
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
1: हाँ ये तो बात है, लेकिन बहुत जल्दी आएगी, इसकी हम शुभकामना करते हैं, ऊपर से प्रार्थना करते हैं।
2: सर जी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप।
1: अच्छा, मतलब हम गुनगुना दें?
2: जी सर, बहुत बहुत मेहरबानी होगी।
1: अब दो लाइन हमको आती है, कहिए दो लाइन आपको सुना दें।
2: जी सर सुना दीजिए।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत

0: जी हाँ आप,
1: क्या बात है, जबरदस्त।
0: अरे जबरदस्त नहीं, हम गुनगुनाते हैं, गाते तो ये लोग हैं जो भी लोग गा रहे हैं।
1: नहीं सर, इतनी अच्छी आवाज है आपकी कि सब लिसनर फैले आपके आगे।
0: अरे ऐसा मत कहिए आप, नहीं तो समझ लीजिए कि हम हमको शर्मसार होना पड़ेगा।
1: और सर बताइए, आप कांटेक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं आप मुझे, मैं बहुत दिन से मांग
0: जी
1: रहा हूं।
0: जी मैं बिल्कुल आपको इसके बाद कॉल करता हूँ
1: जी सर।
0: जी
1: थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
0: जी हाँ बिल्कुल हेलो, कहाँ, नमस्कार
2: नमस्कार
0: जी,
2: हेलो
0: जी हाँ मैं बोल रहा हूँ।
2: अरे सर जी, नजर झुका के आपका अदब और एहतराम करता हूँ।
0: अरे क्या बताए, क्या नाम है, आपकी आवाज पहचान गए, आपके नाम की बहुत प्रसिद्ध कवि जो है वो एक्ट्रेस हुआ करती थी किसी जमाने में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुमताज जी हैं।
2: जी सर
0: जी,
2: नजर झुका के आपका अदब एहतराम करता हूँ, हाय नाम आपका मनु सर, मैं आपको सलाम करता हूँ।
0: जी और इधर से भी मैं आपका सलाम कबूल करता हूँ।
2: जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी
0: जी।
2: सर थोड़ा गुनगुनाना चाहते हैं
0: जी,
2: इजाजत है
0: जी? अरे बिल्कुल साहब।
2: तो सर फिल्म शाम का गाना सुनाते हैं आपको। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज़।

0: मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं, जाने वफा पास तेरे दौड़ के आऊं। बेकरारी है जाने क्यों सनम, आंखें खुली नींद में है हम, हर घड़ी बस तेरा अब तो है इंतजार। आँखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। जी सर,
1: बात है भाई, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। मोहब्बत में बहुत गम है, मोहब्बत में है कितने गम, ये हम बतला नहीं सकते। ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते।
0: मगर जमाने के हिसाब से सर कुछ कहना चाहते
1: हैं। जी कहिए।
0: मोहब्बत करेंगे तो रोते रहेंगे,
1: हाँ,
0: और अश्कों से दामन को अपने हम भिगोते रहेंगे।
1: भिगोते रहेंगे,
0: भिगोते रहेंगे सर,
1: बहुत भिगोते रहेंगे, लेकिन फिर भी अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे और मोहब्बत करते रहेंगे।
0: जी सर,
1: जी बिल्कुल। खुदा करे कि आपकी मोहब्बत न रुके और ना आपके अश्क रुके, क्योंकि कहा जाता है गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे।
0: जी सर,
1: तो क्या बात है भाई, बहुत पसंदीदा गीत है और नागेश्वर धाकर जी का बहुत ही प्यारा गीत है। लगा क्या बात है, मेरा फेवरेट सॉन्ग आंखों में नींद न दिल में करार।
0: जी
1: जी, अच्छा
0: ठीक है सर,
1: ओके।
0: अब अगले को मौका दे दीजिए।
1: जी फी अमान अल्लाह,
0: चलिए, अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। जी हाँ, क्या बात है, दीपा जी ने वहां लिख दिया, आंखों में नींद न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। क्या क्या बात है भाई, और वास्तव में कुछ ऐसा ही होता है, मतलब जब तलक रज्जगा नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, थोड़ा मेरे करीब और जाओ, आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। जी हाँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: हाँ शुभ संध्या मनु जी।
1: अरे चरण स्पर्श, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप श्री तेज नारायण जी बोल रहे हैं।
2: जी जी जी
1: जी जी, चरण स्पर्श।
2: अरे आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद
1: जी,
2: क्योंकि बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था
1: जी,
2: तो बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया
1: जी,
2: तो मैं थोड़ा सा मैं एक कविता ही सुनाऊंगा आज, और उसको मैंने थोड़ा पहले आधा लिखा था, उसको पूरा किया है।
1: क्या बात है,
2: और इस पर मैं थोड़ी आप मतलब आपसे भी प्लस अगर श्रोता गण जो सम्मानित हैं वो अगर टिप्पणी देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
1: जी बिल्कुल।
2: इसमें जीवन क्रम का है कि युवावस्था से मतलब लास्ट तक भाई लिखा है मैंने, तो मैं सुना रहा हूँ
1: जी।
2: अतीत की परछाइयाँ जैसे कि शायर की रुबाइयाँ।
1: क्या बात है
2: जी। अतीत की परछाइयाँ जैसे कि शायर की रुबाइयाँ, बनते बिगड़ते चेहरे, कभी अच्छाइयाँ तो कभी बुराइयाँ ही बुराइयाँ।
1: क्या बात है।
2: कभी कभी खुशियों का मेला तो कभी उदासी के पहरे, तो कभी खुद में अकेला जी, कभी लोगों का हुजूम तो कभी अपने में ही गुम। कभी हौले से कोई पीठ थपथपाता है तो कभी अपना दरवाजा ही अपने मुंह पर बंद हो जाता
1: है। हाय हाय हाय, क्या बात है
2: जी। बेगाने से अपने टूटते रहने के बाद भी सतरंगी सपने।
1: क्या बात है
2: जी। बेपरवाहियां, नादानियां, शैतानियां, जेब खाली लेकिन मुट्ठी में दुनिया जी। जीवन की तपती दोपहरी, सुहानी शाम जैसी, निराशा कुंठा हताशा तेरी ऐसी की तैसी।
1: क्या बात कही आपने, क्या बात कही, तेरी ऐसी की तैसी, क्या बिठाला
2: जी, धन्यवाद। बेखुदी में बढ़ते कदम, कोई और नहीं, हम सिर्फ हम ही हम, सिर्फ हम ही हम।
1: क्या बात
2: जी। अब ये दूसरा दौर। अचानक एक अजब सी मदहोशी छा गई, ये देखो अपने जीवन की शाम आ गई। अब दिन सोने के चांदी की रातें, अब दिन सोने के चांदी की रातें, मधोशियां सरगोशियां बातें और सिर्फ बातें।
1: क्या बात?
2: इस समय की जी जी जी समय की रफ्तार, समय की रफ्तार, नन्हे कदमों की आहट, खुशियां जिम्मेदारियां दुश्वारियां आशंका बेचैनी करवट दर करवट।
1: क्या बात है?
2: अब इसके बाद का क्रम है कि अब रातें रुलाती हैं। अब रातें रुलाती हैं, दिन डराता है, थकान बेचैनी कमजोरी बीमारी, कभी उम्मीदें तो कभी लाचारी। हम और तुम सिर्फ हम और तुम अपने में गुम, सन्नाटा अकेलापन उम्मीदें हताशा, उदासियां उबासियां परेशानियां हैरानियां, कमजोर सांसें आंखों में जल, सिर्फ करुणा की भाषा।
1: क्या क्या बात है
2: जी। अब क्लाइमेक्स ये है कि शांति सुकून आनंद परम आनंद, क्रंदन चीत्कार सरगोशियां सरगोशियां, अलविदा जिंदगी, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: क्या क्या क्या भाई, बहुत बहुत सारगर्भित, बहुत सारगर्भित, मतलब इतने सुंदर पंक्तियां, मतलब जिंदगी को आपने चंद पंक्तियों में ऐसा रख दिया कि से लगता है कि हम सभी का चरित्र उभर कर सामने आ गया।
2: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत, मतलब वास्तव में आपकी लेखनी में वास्तव में माँ शारदे साक्षात विराजमान है।
2: अरे धन्यवाद मनु जी, जब आप लोगों की
1: यही
2: है कि जी जी हौसला अफजाई है, ये सुनाता रहता हूँ और भी मंचों पे सुनाता हूँ
1: जी।
2: वैसे मतलब आप चूंकि मुझे बहुत ही लगता है कि आप लगातार मतलब आपका भी कुछ ऐसा ही है मिजाज, और आप तो लगातार इस तरह के बहुत सारे शायरों को और कवियों को सुनते रहते हैं, तो इसलिए आपके सामने जरूर पढ़ने की कोशिश करता
1: हूं। नहीं नहीं, अरे प्रभु हम तो आपसे सीखते हैं और आपके पग धूलि की भी बराबर हो जाए तो।
2: अब ऐसा मत कहिए, बस आप वो बहुत आशीर्वाद है, आप बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है
1: कि आप अपना आशीर्वाद, आपकी चरण धूलि हमारे सर पर बनी रहे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है।
2: अरे बहुत बहुत
1: जी। तो हमने सुना श्री तेज नारायण शुक्ल जी को, भाई क्या बात है, जिंदगी की सच्चाइयां उन्होंने बयां कर दी। और जी हाँ भाई, अपने श्रोताओं से कई निवेदन है कि जो पल हमारे पास बचे हैं वे बहुत खास हैं, बिना समय जाया किए हुए भाई अपने समय का सदुपयोग के लिए। दीपाजी जी ने लिखे का वाह क्या बात है भाई, नागेश्वर धाकर जी उपस्थित हैं, दूर के दीदार की वो बेबसी ही ठीक थी, यूँ बिछड़ने से भला तू अजनबी ही ठीक थी। क्या बात है, मोहब्बत क्या चीज़ जब तक पता नहीं चलता, बेवफाई में दिल नहीं टूटता। क्या बात है, और दिल टूटता है तो एक बात का एहसास तो होता है कि दिल है, उनका क्या टूटेगा साहब जिनके पास है ही नहीं। और जी हाँ, अब चलते हैं अपने नए श्रोता की ओर। नागेश धाकर जी, थोड़ा इश्क लिखा थोड़ा प्यार लिखा, तुम्हारा नाम बार बार लिखा, इश्क कर बैठी कलम भी तुझसे दीवानी सी आई, उससे उसने तेरा ही नाम लिखा। जी हाँ भाई, दीपांशु जी और नरेंद्र ने कविता को बताया कि बहुत ही सुंदर कविता, वास्तव में सारगर्भित, हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी, इन तीनों का संगम आपने इलाहाबाद में देखा होगा, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। लेकिन आज हमने श्री तेज नारायण शुक्ल जी की कविताओं में संगम देखा, और देखते हैं कौन है हमारे साथ।
3: नंबर की जांच कर ली
1: जी, ये नंबर की जांच करने को बता रहा है। हेलो हेलो जी हाँ, तो जो भाई जो पल शेष है वो निसंदेह बहुत विशेष है, और देखते हैं भाई अब हमारे साथ ये कौन आ रहे हैं? हेलो।
4: अरे सर गुड इवनिंग।
1: अरे चरण स्पर्श, चरण स्पर्श गोंडा के किशोर कुमार जी।
4: खुश नहीं, खुश रहिए। अरे भाई इधर थोड़ा बीमारी से बहुत पीड़ित थे।
1: तो क्या हो गया?
4: तो पिछली बार इसीलिए तो हम कह रहे थे, हमें सर्वाइकल हमें बहुत परेशान किए था। तो अभी आज से तो मैं गाड़ी चलाना शुरू किया हूँ, वीक बेल्ट वगैरह लगा के।
1: अच्छा।
4: तो हाँ, तो हमने कहा चलाओ, भी याद आया। तो चूंकि हम एफएम सुनते भी नहीं है, क्योंकि हमारे आईडी को पता नहीं कोई डिस्टर्ब करता रहता है, वो हमेशा हट जाता है। हमने कहा इसे बंद कर दो।
1: हमने हम आपको बताया कि जो आपकी फोटो लगी हुई है वो आपकी रियल आईडी है, आपका कोई नाम लेकर के अगर आता है तो हम लोग जान जाते हैं।
4: नहीं, नाम नहीं, मेरी फोटो भी कॉपी की गई है और आपको तो सब बताया था एक दिन। तो बड़ी थोड़ा इस सबसे मन कीजिए, आपका फालतू की चीजों में मत उलझो, थोड़ा अपनी दुनिया में अलग मस्त रहते हैं।
1: देखिए ऐसा तो है कि मैं एक बार आपको बताऊं कि हाथी कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, वो अपनी मस्त चाल चलता है। और आपसे यही अनुरोध है कि आप उसी मस्त चाल में चलिए।
4: नहीं अब हम देखिए ऐसा कि वो बार बार डिस्टर्ब हो जाता है तो चैट बॉक्स में कुछ लुक नहीं पाते, तो हमने कहा इसको डिलीट ही कर दो। तो आपके जो है अभी हमको याद आया, तो ये नंबर हमें याद था, हमारे उसमें फीड है
1: जी,
4: इसीलिए आपको चैट बॉक्स में हमारा कहीं नाम नहीं लिखा होगा।
1: नहीं नहीं मतलब
4: चलिए, तो हमने कहा कि अब आपका प्रोग्राम है तो हमने कहा चलो थोड़ा तकलीफ तो है लेकिन चलिए गाइडलाइन सुनाते हैं।
1: नहीं हम आपको एक चीज बताएं, कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि वो चीलर के डर से कोई कथरी नहीं छोड़ देता है। तो
4: नहीं ऐसा है, देखिए हमारा थोड़ा सिद्धांत दूसरा है। अब मैं किसी पसंद रचड़े में नहीं पहुँचना चाहता।
1: जी जी नहीं नहीं,
4: हालांकि ऐसा है कि आपका जो ये एफएम है इससे मेरा बड़ा दिल लगाव था। आज तक एक भी कोई ऐसा वो नहीं होगा आपका आरजे जिसको मैंने ओबलाइज न किया हो, और दिल से करता था। ये नहीं कि मैं फालतू के बोल पाते, तो वो सब चलता रहता है। चलिए खैर वो सब आगे की बात है।
1: जी जी।
4: और प्रोग्राम बढ़ाया जाए।
1: जी जी बिल्कुल, आपके गोंडा के किशोर कुमार की आप प्रतीक्षा है।
4: अरे नहीं सर, काहे आप कहिए कि आना बंद कर दे क्या?
1: अरे नहीं,
4: अरे
1: आप आना बंद कर देंगे तो हम भी आना बंद कर देंगे, फिर सोचिए।
4: एक लाइन में सुना देता हूँ, फिर हमको ज्यादा ठीक से खींचने से दिक्कत होती है। अभी
1: जी
4: अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, गड़बड़ाएगा जरूर आज। चौखियों में भूला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार।

0: कैसे कटे तन्हाई सुन शहर में जैसे बजन लगे शहनाई आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो उतरे कभी ना जो खुमार है प्यार है छोटियों में घोला जाए फूलों का सवाल।
1: क्या बात है भाई, कौन कह सकता है कि आपको सर्वाइकल है?
0: नहीं
1: एकदम नहीं है भाई, बहुत सारे संदेश मिल गए। और नागेश्वर लिखते हैं ये तो मुझे भी लग रहा था कि आर के सर जी के नाम से कोई दूसरा है। जी हाँ बिल्कुल। और नेहाज ने भाई बहुत तारीफ कर दी है, बहुत खूब आर के सर। और नीना जी ने भी आपको भाई स्टार दे दिए हैं।
0: चलिए
1: जी जी,
0: बड़ा गंभीर गाना है
1: जी।
0: कैसे कैसे भेद छुपाए कैसे कैसे भेद छुपाए हाथों की

0: पाओ दर्द। सॉरी मनोज जी, भूल गए तुम लाइन। हम
1: कितना नहीं, वो पहला स्टेशन जी कितना मधुर कितना।
0: चलिए मैं इसको सुना
1: जी। हाँ, पूरा गाना सुना। आपको एक गीत और सुनाना है, इससे पहले की याद तू आए।
0: हाँ जी,
1: इससे पहले की याद तू आए हमारी प्रार्थना थी आपसे।
0: हाँ आपने कहा था लेकिन वो भूल गए हम कौन सा गाना है।
1: हाँ नहीं तो आप कहीं लिख लीजिए ताकि अगले बुधवार को आप
0: एक लाइन आप उस पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ओके चलिए ठीक
1: है।
0: दूसरे को मौका।
1: जी जी जी, चलो ओके,
0: खुश रहिए।
1: जी और हमारे साथ भाई, जी हाँ लगता है नेहा जी के साथ ही कार्यक्रम की अब समाप्ति करेंगे। भाई अनिल जी और नेहा जी ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ हमको भी सुननी बाकी है। ठीक है, समय अभाव है, थोड़ा समय हम बढ़ाते हैं अपना भाई। और जी अरे नेहा जी, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊँ जाऊँ ने हमारा दम निकाला है। अरे भाई गुड नाइट कहने का अधिकार आपको नहीं है, ये अधिकार हमको है। जी हाँ तो फिर भाई प्रतीक्षा है, हमारे पास 3 मिनट शेष हैं और हम चाहते हैं कि इस शेष समय को बहुत विशेष बना लें। कुछ सुन लें अनिल बनर्जी जी से और कुछ सुन लें हम नेहा जी से। तो भाई आपसे अनुरोध है, कलबद्ध निवेदन है, इल्तिजा है, अगर हमारी प्रार्थना आप दोनों लोग सुन रहे हो और अगर स्वीकार हो तो भाई 63-93-31-64-29 आपकी प्रतीक्षा में। हालांकि सामान्यतः हमने ये देखा है कि भाई ये गोंडा के किशोर कुमार जी आर के श्रीवास्तव जी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन नहीं, मुझको लगता है कि आज किसी और के साथ समाप्त होगा और देखते हैं कि यह आवाज़ कहाँ तक जाने वाली है। तो नेहा जी वो मन्ना डे का भी गीत बहुत अच्छा गाती है, रफ़ी जी को तो खैर बहुत अच्छा गाती है। बहरहाल हमारे और गोरखपुर से अनिल बनर्जी जी, भाई उनका फ़ोन कई बार आया लेकिन कई बार व्यस्त बताया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाई आप सोचते हैं और जी हाँ देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: जी, आदाब।
1: अरे आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
2: जी हम भी ठीक
1: है। जी
2: बहुत लेट हो जाता है हमको, थोड़ा बिजी हो जाते हैं इस टाइम से बच्चे।
1: कोई बात नहीं, आप होम मेकर हैं और होम मेकर को थोड़ा देर थोड़ी देर लगती है।
2: जी
1: जी तो शुरू करते हैं।
2: जी जी एक मिनट।

0: हेलो
1: जी
0: जी जी चल शुरू करते हैं
1: जी।
0: तू आता है सीन

मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बातें हैं क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर, मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ।

जब मुझे मिला सपने हुए से तेरे, आंसू में आते नहीं

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, शाम बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी शुक्रिया।
1: अच्छा, फी अमान अल्लाह।
0: जी अल्लाह हाफिज़।
1: जी, दुआओं में याद रखिएगा।
0: बिल्कुल।
1: जी हाँ भाई, धर्मेंद्र मोहन जी कहते हैं छोटे भाई को बुला दिया। अरे करे साहब, कैसे बुला सकते हैं आपको हम। बहुत बहुत प्रणाम। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हाजिर।
1: अरे दादा प्रणाम, क्या बात है, मतलब आज समापन आपसे होने वाला है।
2: खुश रहिए, टाइम तो हमारे खर्च से नहीं बचाऊंगा।
1: अरे नहीं, आपके लिए हम टाइम निकालेंगे साहब।
2: अच्छा, धन्यवाद।
1: क्या जी हाँ, आज आपसे समापन करेंगे। All is well, friends well. अंत भला तो
2: सुनिए। जो मैं जो जो गाना गाना चाह रहा था वो तो हमको लग रहा है कि आपके रफी साहब ने गा दिया।
1: अच्छा नहीं, वो दस कुमार हैं, आप तो रोमांटिक कुमार हैं।
2: नहीं ऐसा तो मैं आज डिफरेंट गाना गाना चाहता हूँ।
1: जी जी,
2: अमित कुमार जी का गाना।
1: जी
2: बड़े अच्छे।
1: अरे बालिका वधु, अरे क्या बात है। जी जी बिल्कुल।
2: तो क्या मैं शुरू करूं?
1: जी जी निसंदेह।
2: तो मैं शुरू करता हूं।

0: कर रहा हूँ सर।
1: जी जी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
0: एक बार चश्मा ले लीजिए, गाना कुछ अंतरा में भूल जाओ तो गड़बड़ा जाए।
2: बड़े अच्छे

कितने पास कितने दूर है चार सितारे, ओ माझी

0: शुभ रात्रि, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपके जैसे किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में ठीक 9:30 बजे, जिसका नाम है बाहर गज़ल। तब तक सुनते रहिए और रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: शनिवार का दिन हमेशा एक बोझ की तरह होता था। कॉलेज की भाग दौड़ और क्लासरूम के शोर शराबे से दूर उनका ये बड़ा सा फ्लैट रविवार को किसी भूत बंगले जैसा शांत और खामोश हो जाता था। उनके पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे और इकलौता बेटा कुणाल अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। कुणाल के पास अपनी माँ के लिए साल भर में एक बार आने का भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता था। आज भी सुमेधा अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी अगले हफ्ते के सेमिनार के नोट्स तैयार कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुमेधा ने अचरज से घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे, इस वक्त भला कौन आ सकता है। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और दरवाजा खोला। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गईं। वो उनके ही डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट ईयर का छात्र आर्यन था। आर्यन थोड़ा चंचल, बेहद आत्मविश्वासी और पढ़ाई में औसत लड़का था। नमस्ते मैम, इस तपती धूप में इस इलाके से गुजर रहा था तो अचानक याद आया कि आप यहीं रहती हैं। बस मन किया कि अपनी फेवरेट प्रोफेसर के साथ एक कप कॉफी पी ली जाए। आर्यन ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाते हुए कहा। सुमेधा को उसकी इस हरकत पर अजीब सी झुंझलाहट हुई। एक छात्र का यूं बिना बुलाए घर आ जाना उन्हें अनुशासनहीनता लगा। उन्होंने कुछ रूखेपन से कहा, देखो आर्यन, मैं अभी अपने सेमिनार के पेपर्स तैयार कर रही हूँ, मेरे पास फालतू गपशप या कॉफी पीने का बिल्कुल वक्त नहीं है। उन्होंने दरवाजा बंद करने का उपक्रम किया, लेकिन आर्यन कहां हार मानने वाला था। उसने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, अरे मैम, इतनी गर्मी में आप किचन में जाकर पसीने में तर हो, ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। आप आराम से अपने सेमिनार की तैयारी कीजिए, कॉफी मैं बनाऊंगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना प्रोफेसर सुमेधा अपने बड़े से फ्लैट में अकेले रहती थीं। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था, जिसके पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। एक दिन संडे की दोपहर उनका एक स्टूडेंट उनके घर आ गया। अब आगे आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे हाथ की बनी कोल्ड कॉफी पीकर आप सारे 5-स्टार होटल्स का स्वाद भूल जाएंगी। ये कहते हुए उसने अपनी नजर फ्लैट के अंदर घुमाई, मानो वो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि इतना बड़ा घर इतना शांत क्यों है। सुमेधा कुछ कह पाती उससे पहले ही आर्यन अपनी मर्जी से अंदर आ गया और सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। सुमेधा ठगी सी खड़ी रह गई। वो आमतौर पर बहुत सख्त मिजाज की महिला थी, लेकिन इस लड़के की बेबाकी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गईं, लेकिन उनका ध्यान अब पेपर्स में नहीं बल्कि किचन से आ रही बर्तनों की आवाजों पर था। कुछ ही मिनटों में आर्यन दो बड़े मग में झागदार कोल्ड कॉफी लेकर बाहर आया। उसने एक मग सुमेधा के सामने रखा और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सुमेधा ने झिझकते हुए एक घूंट लिया। सच में कॉफी बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो मैम, आप इस इतने बड़े घर में अकेले ही रहती हैं? आर्यन ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। अकेलेपन से मेरा कोई खास बैर नहीं है आर्यन, मेरा बेटा अमेरिका में है और मैं यहाँ अपने काम में खुश हूँ, सुमेधा ने अपने स्वर में गंभीरता लाते हुए कहा, ताकि आर्यन को अपनी हदों का एहसास रहे। पर आर्यन की आंखें दीवारों पर टंगी उन पुरानी तस्वीरों को पढ़ रही थीं, जिनमें सुमेधा अपने पति और छोटे कुणाल के साथ मुस्कुरा रही थी। आप झूठ अच्छा बोल लेती हैं मैम, पर आपकी ये तस्वीरें और घर का ये सन्नाटा कुछ और ही कहता है। मेरी माँ भी गांव में अकेले रहती है। जब मैं उन्हें छोड़कर शहर आ रहा था तो वो भी यही कहती थीं कि वो अकेली खुश रह लेंगी, पर मुझे पता है कि वो रोती हैं। आर्यन के इस वाक्य में इतनी गहराई थी कि सुमेधा का सख्त आवरण एक झटके में दरक गया। उस दिन के बाद से आर्यन का सुमेधा के घर आना जाना एक आम बात हो गई। कभी वो कोई असाइनमेंट चेक करवाने के बहाने आ जाता, तो कभी बारिश में भीगता हुआ पकौड़े खाने की फरमाइश लेकर पहुंच जाता। सुमेधा शुरू शुरू में उसे डांटती, अनुशासन का पाठ पढ़ाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी उसके आने का इंतजार करने लगी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना, सुमेधा प्रोफेसर थी और इंडिया में अकेले रहती थी क्योंकि उसके पति का निधन हो चुका था और उसका बेटा कुणाल अमेरिका में रहता था। इधर कुछ दिनों से उसका एक स्टूडेंट आर्यन उसके घर आने जाने लगा था और उसका आना सुमेधा को अच्छा लगने लगा था। अब आगे, घर में कोई तो था जो उनसे बहस करता था, जो उनके हाथ का खाना खाकर झूठी सच्ची तारीफें करता था, जो उनके घर के खराब पंखे और फ्यूज बल्ब बिना कहे बदल देता था। घर का वो सन्नाटा अब आर्यन की बेतुकी बातों और ठहाकों से टूट चुका था। दिवाली का त्योहार नजदीक था। सुमेधा इस बार बहुत खुश थी क्योंकि कुणाल ने वादा किया था कि वो इस दिवाली पर घर आएगा। सुमेधा ने पूरे घर की सफाई करवाई, कुणाल के पसंद के ढेरों पकवान बनाए और नए पर्दे लगाए। लेकिन दिवाली से ठीक दो दिन पहले कुणाल का फोन आया। सॉरी मॉम, कंपनी में एक बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ गया है, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना और खुश रहना। फोन कट गया। सुमेधा के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पैसे? क्या एक माँ की ममता और उसका इंतजार कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है? उस रात सुमेधा ने घर की एक भी लाइट नहीं जलाई। वो अंधेरे कमरे में बैठी बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुमेधा ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने आर्यन खड़ा था जिसके एक हाथ में दियों का बड़ा सा डिब्बा था और दूसरे हाथ में मिठाइयों का पैकेट। उसने शेरवानी पहन रखी थी। हैप्पी छोटी दिवाली मैम। ये क्या, आपने घर में अभी तक एक भी दिया नहीं जलाया और इतनी अच्छी सिल्क की साड़ी पहनकर आप अंधेरे में बैठी हैं? चलिए उठिए, मुझे रंगोली बनानी नहीं आती, वो आपको बनानी पड़ेगी, आर्यन ने अंदर आते हुए पूरे उत्साह से कहा। सुमेधा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। उन्होंने आर्यन को देखा और भावुक होकर बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्यों नहीं कर रहे आर्यन? मेरे जैसे एक उदास इंसान के पास क्यों आ गए? आर्यन ने दिए जमीन पर रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, क्योंकि मेरी असली पार्टी तो यहाँ है मैम, मेरी माँ गांव में अकेली है और आप यहाँ

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा के बेटे कुणाल के पास अपनी माँ के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। दिवाली पर भी वादा करके नहीं आया। इधर सुमेधा का छात्र आर्यन उसका खूब ख्याल रखता था और त्योहार भी उनके साथ मनाता था। अब आगे मुझे लगा अगर मैं आपके साथ दिवाली मनाऊंगा तो भगवान मेरी माँ के पास भी किसी न किसी को खुशियां देकर जरूर भेज देगा। और वैसे भी आपके हाथ के बने मालपुए खाए बिना मेरी दिवाली पूरी कैसे हो सकती है। उस दिवाली सुमेधा ने जितने दिए जलाए उनसे कहीं ज्यादा रोशनी उनके दिल में हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ कोख से नहीं जन्मते, कुछ रिश्ते रूह से जुड़ते हैं। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। आर्यन अब फाइनल ईयर में था। एक दिन कॉलेज जाते वक्त सुमेधा स्कूटी से फिसल गई। उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल वालों ने जब उनके बेटे कुणाल को अमेरिका फोन किया तो उसने चिंता तो बहुत जताई लेकिन फिर से अपनी मजबूरियों का रोना रोते हुए कहा कि वो तुरंत नहीं आ सकता। उसने कहा कि वो एक फुल टाइम नर्स का इंतजाम कर देगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बिस्तर पर पड़े होने पर उसका बेटा सिर्फ पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। सुमेधा अस्पताल के उस ठंडे कमरे में लेटी हुई शून्य में ताक रही थी। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और आर्यन हाफता हुआ अंदर आया। मैम ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि स्कूटी धीरे चलाया कीजिए पर आप सुनती कहाँ हैं? आर्यन की आंखों में गुस्सा और चिंता साफ छलक रही थी। उसने अपना बैग जमीन पर फेंका और सुमेधा के सिरहाने आकर खड़ा हो गया। अगले डेढ़ महीने तक आर्यन ने सुमेधा की वो सेवा की जो शायद कोई सगा बेटा भी नहीं कर पाता। वो सुबह उनके लिए दलिया बनाता, दिन में कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता और शाम को आकर सुमेधा को व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क में टहलाता। उसने सुमेधा के दवाइयों का अलार्म अपने फोन में लगा रखा था। सुमेधा उसे देखती और उनकी आंखें भर आती। वो सोचती कि जिस लड़के को उन्होंने अपने घर के दरवाजे से भगाना चाहा था आज वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है दिल का रिश्ता। अब तक आपने सुना सुमेधा का एक स्टूडेंट आर्यन रेगुलर उनके घर पर आने लगा, उन्हें अपने माँ के जैसा प्यार करता, उनके साथ त्योहार मनाता और उनका एक्सीडेंट होने पर एक बेटे से बढ़कर उनकी सेवा की। दूसरी ओर उनका खुद का बेटा कुणाल हर वक्त उनके पास आने में अपनी असमर्थता जता देता। अब आगे, जिस दिन सुमेधा के पैर का प्लास्टर कटा और वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, आर्यन उनके पास आया। मैम, मेरी जॉब लग गई है, अगले महीने मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है। सुमेधा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। वो आर्यन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, दिल्ली जाने से पहले एक काम कर दे, इस मकान के कागजात पर अपना नाम लिखवा ले। मेरे सगे बेटे ने तो मुझे पैसों से तौल दिया, पर तूने मुझे वो प्यार दिया है जो एक माँ को चाहिए होता है। तू अजनबी होकर भी मेरा अपना बन गया। आर्यन मुस्कुराया और उसने सुमेधा का हाथ चूम लिया। मैम, माँ की ममता और उनके आशीर्वाद के बदले जो कागजात मांगे, वो बेटा कैसा। अब मेरी वो माँ है जिसने मुझे शहर की इस भीड़ में एक घर दिया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर हर वीकेंड यहाँ आपके हाथ की वो कड़क चाय और मालपुए खाने जरूर आऊंगा। आखिर आपको भी तो मेरी कोल्ड कॉफी की आदत हो गई होगी ना। सुमेधा ने आर्यन को गले से लगा लिया। उनके सोने आंगन में अब हमेशा के लिए खुशियों के फूल खिल गए थे। खून का रिश्ता भले ही सात समुंदर पार था, लेकिन दिल का रिश्ता उनके सीने से लगा हुआ था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी दिल का रिश्ता। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सितारा कोई भी हो या कोई भी हो, आसमान में एक बुलंद पर पहुंचने वाला। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सितारे की जो कि हमारे बीच में ना होते हुए भी हमारी यादों में, हमारे जहन में, हमारे दिलों में आज तक वो राज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफी साहब जी की, जिनकी गायकी आज हमारे सभी के जहन में इस तरीके से बिल्कुल महफूज है जैसे हम कोई प्यारी सी एक चीज अपने पास में रखते हैं। पुरानी ही सही, लेकिन हम उसे इस तरीके से सजो के रखते हैं जैसे मानो हमने इसे आज जीवन साथ रखने का वादा लिया हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश और आज लेके आई हूँ भूले बिसरे गीत में मोहम्मद रफी जी की कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे गीत जो कि मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज ख्वाहिश की ये ख्वाहिश है कि आप सभी जो भी भूले बिसरे के गीत सुनते हैं, जिस भी आरजे की आप उन्हें सराहते हैं, प्यार करते हैं, मैं काफी दिनों से सोच रही थी इस बात को आप तक पहुंचाने की कि हम, हमारी पहचान, हमारी आवाज, हम जो भी प्रोग्राम लेकर के आते हैं, आपका प्यार, आपका सराहना हमारे सर आंखों पर। तो आइए फिर से एक प्रोग्राम, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसे आप सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि है भूले बिसरे गीत, शुरू करते हैं अपनी आरजी ख्वाहिश के साथ में। मोहम्मद रफी जी भारतीय संगीत जगत के सबसे पहले महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक थे, जिसे प्लेबैक सिंगर भी कहते हैं। उनकी आवाज में भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम मिला। वे इस तरह के गीतों, रोमांटिक, देशभक्ति, भजन, कव्वाली, गजल, कॉमेडी को बड़ी ही सहजता से गाते थे। उनके जीवन में गाना मानो इस तरीके से समाया हुआ था जैसे हम जीने के लिए खाते हैं या कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो थी कि हम जीने के लिए ही खाते हैं, और साथ साथ में उनकी गायकी को अगर कहा जाए तो जीने के लिए ही हम गाते हैं, और अगर जीवन साथ में है तो उसे सहजता से निभाना, उसे सहजता से पूर्ण रूप से देना, ये एक हर एक गायक की पहचान होती है। फिर उसमें मोहम्मद रफी साहब जी के बारे में हम और क्या ही बताएं। मोहम्मद रफी साहब जी के बारे में तमाम बातें हैं, मतलब कह सकते हैं कि इतनी बातें हैं, इतना कुछ आपको बताने के लिए है कि पूरी रात ही बीत जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उनके कुछ प्यारे से नगमे भी सुनाएंगे। आइए सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा मोहम्मद साहब की आवाज।

मोहम्मद रफी साहब का नाम मोहम्मद रफी साहब कैसे पड़ा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 में हुआ। कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर पंजाब भारत के वो निवासी थे। साथ ही साथ में पंजाबी उनकी ऐसी लैंग्वेज थी जो कि हर एक जिसे कहते हैं ना कि हम हमारी जुबा पे रहती है, तो वैसे ही वो उनकी जुबा पे रहती थी। पंजाब के रहने के बावजूद उनके गाए हुए गानों में कहीं भी आप हल्का सा भी टच कुछ नहीं पाएंगे। वही साफ सुथरी आवाज, साफ सुथरे हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए रफी साहब जी की बहुत सारी गायकी इस तरीके से हम सभी की लोकप्रिय हुई। बचपन से ही रफी जी को संगीत का शौक था। उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद अब्दुल वसीद खान, फिरोज निजामी और श्याम सुंदर से ली। पहला गीत उन्होंने 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। बॉलीवुड में उनका पहला गाना 1944 में फिल्म गांव की गोरी के लिए भी था। और साथ ही साथ जब वो पहली बार इंडस्ट्री में

ऐसे तेरी आंखों के सिवा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ऐसे गाने जब हम साथ में बैठते हैं अपनी महबूबा, अपने जाने मन और अपने सबसे दिल के करीब किसी इंसान के साथ में, तो हम इन गानों को जरूर से उनके साथ में लेते हैं। आइए एक प्यारा सा नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक अपने ही किसी चाहने वाले को हम डेडिकेट कर सकते हैं। आज ये ख्वाहिश की यही ख्वाहिश है।

वैसे तो हर एक इंसान को पुरस्कार और सम्मान की चाहत होती है, लेकिन रफी साहब कुछ ऐसे थे जिन्हें पुरस्कार और सम्मान के सिवा उन्हें अपने काम से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। ऐसी महफिल, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स होते थे जहाँ पर उन्हें स्पेशली सम्मान के लिए बुलाया जाता था, वे वहाँ पर

आते ही नहीं थे। उन्हें लगता था मेरा काम, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। अगर लोग उसे सराह रहे तो सम्मान भी आवाज का होना चाहिए, ना कि शरीर का, ना कि नाम का। मोहम्मद रफी को जानने के लिए मोहम्मद रफी की आवाज को जानना ये जरूरी था। मोहम्मद रफी को कई लोगों ने सिर्फ रफी के भी नाम से जाना है। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें हासिल हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें जमीन पर रहने की आदत थी, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री 1977 से में सम्मानित किया गया था। उनकी बहुत सारी ऐसी सम्मान वाले पुरस्कार आज भी उनके ही परिवार में सुशोभित हैं। यदि आपको लगता है कि हम किसी बुलंदी को छू सकते हैं बिना ही किसी पुरस्कार को प्राप्त किए बिना, आवाज में उनकी जो जादू है, शायद आज भी कई कैसेट्स में हम उनकी आवाज को छूते हैं, महसूस करते हैं, उनके गानों को, उनकी आवाज को, और साथ ही साथ उनके दिए गए इस प्यारे से अनमोल तोहफे को, जो कि हम सबके बीच में न रहकर भी मौजूद है। मोहम्मद रफी साहब का प्यारा सा गाना आइए सुनते हैं।

अपने सरल, विनम्र और धार्मिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज आज भी भारतीय संगीत में अमर है और नई पीढ़ियां उनसे आज प्रेरणा लेती हैं। उनके निधन के बाद भी उनका संगीत करोड़ों दिलों में जीवित है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो धार्मिक विचारों वाले भी थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था मानो कि इतना सरल, इतना स्वच्छ, इतना प्यारा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी ऐसी चीजें ईश्वर को भी प्यारी होती हैं कि वो चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे। रफी साहब बेहद सादगी पूर्ण और विनम्र व्यक्ति वाले थे। वे कभी किसी के बारे में बुरा न बोलते थे और न ही सोचते थे। धार्मिक रूप से वे बहुत आस्थावान मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया था। उन्हें खेलना, गाना, दोस्तों से मिलना और गरीबों की मदद करना बेहद पसंद था। वे किसी भी जरूरतमंद की मदद चुपचाप कर देते थे बिना किसी प्रचार के। कहते हैं ना कि अगर हम दान कर रहे हैं तो एक हाथ से दान करें और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। वो दान सबसे ऊपर का दान होता है। रफी साहब की इसी सादगी और विनम्र स्वभाव के कारण से वे हमेशा से सबके बीच और लोकप्रिय रहे, क्योंकि धार्मिक होने के साथ साथ वे सबसे मिलनसार भी थे। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी जब भी कभी वो किसी से मिलते थे तो मानो कि उनके लिए वो उस संगत, यानी कि जितने लोग उनसे मिलने आते थे, वही उनके लिए सब कुछ होता था। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये उनके लिए मात्र शब्द नहीं थे, उनमें समा जाना ही मोहम्मद रफी जी की आदत हुआ करती थी। जब भी किसी वो मददगार की मदद करते थे तो इस बात की चर्चा वे खुद से भी नहीं करते थे। इसका साफ मतलब है कि उन्हें बाहरी आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आइए उनके व्यक्तित्व और इस प्यारी सी सादगी के लिए एक प्यारा सा गाना उनकी ही आवाज में।

उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ काम किया। संगीतकार नौशाद साहब और रफी जी की जोड़ी को अमर माना जाता है। मधुबन में राधिका नाची ये इसका उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी गायकी का जो एक जोड़ी के नाम से जाना जाता है, वो ये जोड़ी आज भी अमर है। इस गाने के लिए हम सभी को कई चीजें याद आ जाती हैं। नौशाद साहब की इस जोड़ी को मेरा भी सलाम। आइए इस प्यारे से गाने को सुनते हैं, मधुबन में राधिका।

हर साल 31 जुलाई को संगीत प्रेमी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मुंबई में मोहम्मद रफी रोड और रवि मेंशन नाम से स्थान आज भी उनकी याद दिलाते हैं। उनके गाने आज भी नई पीढ़ी उतनी ही प्यार से सुनती है जितना उनके समय में सुना जाता था। इससे ये साफ झलकता है कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं और उनकी सारी की सारी कैसेट्स को, उनके दिए गए गानों को हम आज भी सुनते हैं। इस प्यारे से गाने को हम आप सभी के साथ में आइए सुनते हैं।

आइए जानते हैं मोहम्मद रफी साहब की कुछ खास बातें। रफी साहब की आवाज में एक अनोखी पवित्रता थी। वे किसी भी गीत को आस्था और आत्मा से गाते थे। यही कारण है कि आज भी उनके भक्ति गीत मंदिरों और घरों में गूंजते हैं। तो इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि वे धार्मिक होने के साथ साथ मिलनसार तो थे ही, और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को इस तरीके से हम भुला तो नहीं सकते हैं। उनकी ही याद का एक धार्मिक गाना जो कि मुझे याद आ गया है, आइए सुना देती हूँ आपको। ये प्यारा सा गाना सुन

हर किसी के जीवन में एक न एक दिन वह अंतिम समय आता ही है और रफी साहब जी का भी अंतिम समय आ ही गया। तारीख 31 जुलाई 1980, स्थान मुंबई, भारत। अचानक से हार्ट अटैक होने के कारण से उनकी मृत्यु 55 वर्ष में ही हो गई थी। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया था। उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। यह दिखाता है कि लोग उन्हें कितना प्यार करते थे। बिल्कुल, लोगों की भीड़ से यह जाहिर होता है कि ये लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। वो प्यार हम सब में बटा होता है और आखिरकार एक बहुत ही प्यारा सा सितारा हम सबको छोड़कर चला गया। और इसी तरीके से कहते हैं ना कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है तो उनकी यादें और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हम हमेशा से विरासत के रूप में याद करते हैं। कई ऐसे गाने हैं जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ में हम कई बार उनकी याद के रूप में ऐसे कई गाने सुनते हैं। आइए उनकी याद को और तरोताजा करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का भूले बिसरे गीत का सफर। ऐसे ही हम कई लेजेंडरी जो कि संगीतकार म्यूजिशियंस हम सभी के बारे में कभी ना कभी एक एक दिन कर लेकर के आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला एक सितारा कौन होगा। तब तक के लिए भूले बिसरे गीत सुनते रहिए आपकी अपनी आरजे ख्वाहिश के साथ। शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
3: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
6: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
8: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।